अपने दल के वयोवृद्ध सदस्य का कथन निषाद राज को जचा। बूढ़ा ठीक कह रहा है, मूर्ख होते हैं जो बिना विचारे जल्दी में काम करके बाद में पछताते हैं। अतः भरत का शील स्वभाव जानकर ही युद्ध अथवा मित्रता करना श्रेयस्कर होगा। पहले भरत से मिल लेना उचित समझकर निषाद राज ने कंद मूल फल इत्यादि मंगवाए और भेंट का सामान सजाकर उनसे मिलने चले। भरत के दल के निकट पहुंच निषाद राज वहां मुनिवर वशिष्ठ को देख दूर से ही अपना परिचय देकर दंडवत प्रणाम करते हैं। वो श्री राम के मित्र हैं ये सुनकर भरत रथ से उतर आते हैं और दंडवत पड़े निषाद राज को उठाकर अंक में भर लेते हैं। लगता है जैसे स्वयं लक्ष्मण से उनकी भेंट हो गई हो। भरत तथा निषाद का ये मिलन देख देवगण धन्य धन्य कह पुष्प वर्षा करने लगते हैं। जिसे इस लोक में अत्यंत तुच्छ और नीचा माना जाता है उसी निषाद को गले लगाकर भरत अत्यंत पुलकित हो जाते हैं। इस निषाद को तो श्री राम ने छाती से लगाकर जगत को पवित्र करने वाला बना दिया है।

0: नाम है परमेश्वर दयालु आत्मा जो सभी आध्यात्मिक सबसे अधिक आध्यात्मिक है उनका एक नाम है औरमजदा स्वर्ग न प्रभु वह प्रभु है महान शक्तिशाली बुद्धिमान सृष्टिकर्ता पालनहार रक्षक समर्थक धर्मी क्षमाशील सर्वशक्तिमान और न्याय के पवित्र दाता आमीन।
1: संपूर्ण संसार का एक ही ईश्वर है और वही सर्वत्र व्याप्त है। सिख धर्म की प्रार्थना।
2: नाम जपावे सुख तेरा दिता लिए मेरे राम राय मेरे राम राय क्यों राखे त्यों रहिए पार ब्रह्म परमेश्वर सत गुर अपे कर निहारा चरण तोड़ तेरी सेवक मांगे तेरे दर्शन को बलिहारा तुद पावे ता नाम जपावे सुख तेरा दिता लिए मेरे राम राय मेरे राम राय जो राखे त्यों रहिए मुकत पुगत जुगत तेरी सेवा जिस तू आप कराए वहा बेकुंठ जय कीर्तन तेरा तू आपे सर डालाए वहा बेकुंठ जय कीर्तन तेरा तू आपे सर डालाए सिमर सिमर सिमर नाम जीवा तन मन हो निहला चरण कमल तेरे तोय तोय पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला तुद पावे ता नाम जपावे सुख तेरा दिता लिए मेरे राम राय मेरे राम राय क्यों राखे त्यों रहिए मेरे राम राय मेरे राम राय क्यों राखे त्यों रहिए तुद पावे ता नाम जपावे सुख तेरा

भी जित तुम्हारे द्वारे आया। नानक को प्रभ हे कृपाला सतगुरु पूरा पाया। तुझ पावे ता नाम जपावे सुख तेरा दिता लिए। मेरे राम राय

0: राय ज्यों राखे त्यों रहिए, तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लिए।
1: गीता पाठ करने से ज्ञान के साथ साथ मन को भी शांति
0: श्री
1: मिलती है।
0: परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद् गीतायाः भक्ति योग नामनः द्वादशाध्यायस्य केषाञ्चन श्लोकानां पाठः प्रस्तुयते। अर्जुन उवाच, एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्य।

उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय।

0: अहिंसा आत्मिक बल का प्रतीक है। हिंसा त्याग कर हमें सत्य की राह पर चलना चाहिए। गांधी विचार।
1: Continue to ask God to give me the strength not to be angry with my accusers, but to be prepared even to die at their hands without wishing them ill. I claim that Hinduism is all inclusive. Religion can be defended only by the purity of its adherents and their good deeds, never by their quarrels with those of other faiths. For God-fearing men, all religions are good and equal. Only the followers of different religions quarrel with one another and thereby deny their respective religions. The essence of true religious teaching is that one should serve and befriend all. I learnt this in my mother's lap. Free India will be no Hindu Raj. It will be Indian Raj. Based not on the majority of any religious sect or community, but on the representatives of the whole people, without distinction of religion. Hindi Anuvad, Gandhi Vichar. मैं सभी धर्मों के महान संतों और पैगंबरों में विश्वास करता हूँ. मैं ईश्वर से निरंतर प्रार्थना करता रहूँगा कि वह मुझे सहनशीलता दें, ताकि मैं उनके प्रति क्रोध न रखूं जो मुझे गाली देते हैं, बल्कि उनका भी अहित ना सोचते हुए उनके ही हाथों मरने को तैयार रहूं. मैं दावा करता हूं कि हिंदुत्व सबका समावेश करने वाला है. धर्म की रक्षा उसके अनुयायियों के आचरण की पवित्रता एवं नेक कामों के द्वारा ही की जा सकती है. अन्य धर्मावलंबियों से झगड़ा करके कतई नहीं की जा सकती. भगवान से डरने वाले लोगों के लिए सब धर्म अच्छे और समान हैं. विभिन्न धर्मों के मानने वाले जब आपस में लड़ते हैं तो वे अपने अपने धर्म को ही नकारते हैं. सच्ची धार्मिक शिक्षा का सार यही है कि इंसान सबकी सेवा करें और सबके साथ मैत्री रखें. मैंने यह अपने माता की गोद में सीखा है. स्वतंत्र भारत हिंदू राज नहीं होगा, वह भारतीय राज होगा जो किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय के बहुमत पर आधारित नहीं होगा, अपितु धर्मों में किसी प्रकार के भेदभाव के बिना सभी लोगों के प्रतिवेशियों का राज होगा.
0: गंधर्व महाविद्यालय की प्रस्तुति बापू का प्रिय भजन.

माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का, भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राजघाट परिसर में बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पुष्प अर्पित करने के लिए आपके साथ हैं श्री मनोहर लाल।

बापू को नमन किया, पुष्प गुच्छ अर्पित किए, पुनः प्रणाम किया, नमन किया, पुष्प अर्पित किए और बापू की समाधि की परिक्रमा की। बापू कहा करते थे, आपकी मान्यताएं आपके विचार बन जाते हैं, आपके विचार आपके शब्द बन जाते हैं, आपके शब्द आपके कार्य बन जाते हैं और आपके कार्य आपकी आदत बन जाते हैं, आपकी आदतें आपके मूल्य बन जाते हैं और आपके मूल्य आपकी नियति बन जाते हैं। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने परिक्रमा की, नमन किया, अखंड ज्योति प्रज्वलित है उन्हें भी नमन किया। सभी को नमन करते हुए आगे बढ़ रही है। सर्वधर्म प्रार्थना सम्मिलित, सभी को उन्होंने नमन किया, सभी अतिथि गणों को नमन किया, प्रणाम किया, अभिवादन किया सभी का और अपना स्थान ग्रहण किया।

अरे बापू की प्रिय रामधुन। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने सभी को नमन किया, हाथ जोड़ा, अभिवादन किया और अतिथियों को भी नमन किया, हाथ जोड़ा, अभिवादन किया सभी का और राजघाट परिसर से प्रस्थान कर रही हैं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। राजघाट परिसर से प्रस्थान कर रही हैं।

0: पूज्य बापू का स्वप्न पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोना, राजघाट समाधि समिति द्वारा आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा का शुभारंभ बुद्धिस्ट प्रार्थना से और समापन रामधुन से हुआ। प्रार्थना सभा में हमारे साथ सम्मिलित होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब मैं प्रीति मोहन, कार्यक्रम अधिशासी सचिन कुमार, इंजीनियरिंग स्टाफ अशोक कुमार मिश्र, हेमराज मीना और कार्यक्रम के ओवरऑल इंचार्ज प्रमोद कुमार के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूं। नमस्कार।
1: अभी आप गांधी समाधि राजघाट से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती के अवसर पर आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा का सजीव प्रसारण सुन रहे थे। विवरण दे रही थी प्रीति मोहन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:30 होने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे उर्दू में समाचार।
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। आज बाबाए कौम महात्मा गांधी और साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को उनके योम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। गांधी जयंती के मौके पर मुल्क भर में खसूसी ग्राम सभाओं का इनेकाद किया जाएगा। शहरी हवाबाजी की वजारत ने एविएशन के सिक्योरिटी अमल को ज्यादा सहल और तेज रफ्तार बनाने की खातिर कई असलाहत शुरू की हैं। सऊदी अरब ने ओमान के उस मुआविन पायलट को मुत्तहिदा अरब इमारात के हवाले कर दिया है जिसने फ्लाई दुबई के तलबीब जाने वाले हवाई जहाज को गिराने की नाकाम कोशिश की थी। दिलेर भारतीय पायलट स्मित मच्छार को इलाज के लिए अबूजबी ले जाया गया है। भारत उनकी सेहत पर करीबी नजर रखे हुए है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि

यूक्रेन की लड़ाई का बाहमी तौर पर काबिले कबूल हल निकालने के लिए वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी के पास बहुत अच्छे नज़रियात हैं। और जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने ख्वातीन के रिकर्व तीर अंदाजी टीम मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। आज बाबाए कौम महात्मा गांधी को उनके 157वें योम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। इस मौके पर पूरे मुल्क और बैरून मुल्क भारतीय मिशनों में भी कई प्रोग्रामों का अहतमाम किया गया है। कौमी राजधानी में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का अहतमाम किया गया है।

0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह राजघाट पर महात्मा गांधी मेमोरियल पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया और फूल नजर किए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि अमन और अदम तशद्दुद का महात्मा गांधी का पैगाम दुनिया के कई हिस्सों में जंग और महाजाराई के माहौल में और भी ज्यादा इफादियत रखता है। गांधी जयंती के मौके पर अपने पैगाम में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बाबाए कौम को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि महात्मा गांधी की जिंदगी और उनकी नजरियात को दुनिया भर में बहुत एहतराम की नजर से देखा जाता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती के मौके पर कहा है कि महात्मा गांधी की पूरी जिंदगी सदाकत, अदम तशद्दुद, रवादारी और खिदमत का नमूना रही है। जनाब मोदी ने कहा कि बापू की तालीमात हर दौर में इंसानियत की राह दिखाती रहेंगी। जनाब मोदी ने ख्वाहिश जाहिर की कि महात्मा गांधी का लाफानी पैगाम हम वतनों को बेहतर समाज और विकसित भारत की जानिब पेशकदमी में रहनुमाई करता रहे। बाबाए कौम महात्मा गांधी का योम पैदाइश मनाने के लिए गुजरात में कई सरगर्मियों का अहतमाम किया गया है। रियासत के वजीर आला भूपेंद्र पटेल पोरबंदर में महात्मा गांधी की जाय पैदाइश कीर्ति मंदिर में एक दुआया जलसे में शिरकत करेंगे। इसी तरह अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में भी सभी मजहबों के दुआया जलसे का अहतमाम किया गया है। पूरी रियासत में बड़े पैमाने पर सफाई सुथराई की मुहिम भी चलाई जा रही है। इधर रियासती सरकार ने गांधी जयंती के मौके पर खादी और पॉली वस्त्र तैयार करने पर 30% की खसूसी मार्केट तरगीबी इमदाद का ऐलान किया है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: ये फैसला मुल्क के लिए खादी, फैशन के लिए खादी, वोकल फॉर लोकल और हर घर स्वदेशी के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नजरिए से मुताबिकत रखता है, जो 31 दिसंबर 2026 से नाफिज होंगे। इस माली तरगीब का फायदा सीधे गाहकों तक पहुंचेगा, जिन्हें सरकारी खादी फरोख्त मराकज पर खसूसी रियायत मिलेगी। आने वाले त्योहारों के सीजन के दौरान मकामी मसनूआत की फरोख की हौसला अफजाई के लिए गुजरात के बड़े शहरों में खसूसी खादी नुमाइश और फरोख्त मेलों का इनेकाद किया जा रहा है। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
0: आज गांधी जयंती के मौके पर पूरे मुल्क में खसूसी ग्राम सभाओं का इनेकाद किया जा रहा है। इनमें हुक्मरानी की बड़ी तब्दीली वाली असलाहत और इकदामात पर गौरखोज किया जाएगा, जिनका मकसद पंचायतों को मुस्तहकम बनाना, अवामी खिदमात में बेहतरी लाना और मुल्क के देही इलाकों में मेयार जिंदगी को बेहतर बनाना है। देही तरक्यात की वजारत ने कहा है कि इन खसूसी प्रोग्राम ग्राम सभाओं के साथ साथ अवामी मंसूबे की मुहिम 2026-27 सबकी योजना सबका विकास का भी आगाज किया जा रहा है। वजारत के मुताबिक मजकूरा मुहिम के तहत ग्राम पंचायतें लोगों की शमूलियत और शवाहिद पर मबनी मनसूबाबंदी के जरिए माली साल 2027-28 के लिए अपने अपने ग्राम पंचायत तरक्याती मंसूबे तैयार करेंगी। अवामी मंसूबे की मुहिम पर मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में 2018 से अमल दरामद किया जा रहा है, जिसके जरिए पंचायतों को जामे, मरबूत और शमूलियत वाले तरक्याती मंसूबे मुरतब करने में सहूलत होती है। 2,55,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें अपने अपने मंसूबे तैयार करके इन्हें ई ग्राम स्वराज पर अपलोड करती हैं। ग्राम सभा में होने वाले तबादले ख्याल से शहरियों और मुकामी नुमाइंदों को सरकार की अहम स्कीमों और इकदामात के फायदों और इनके नफाज का जायजा लेने का मौका मिलेगा। साथ ही वो मुकामी जरूरियात और किसी तरह की कमी की निशानदेही कर सकेंगे और अपने अपने गाँव की

0: तरक्की के लिए तरजीहात के बारे में गौर व फिक्र कर सकेंगे। आज ही साबिक वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री के 122वें योम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। वो उत्तर प्रदेश में 2 अक्टूबर 1904 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में पैदा हुए थे, जिसे पहले मुगलसराय के नाम से जाना जाता था। लाल बहादुर शास्त्री कम उम्र में ही मुल्क की जद्दोजहद आज़ादी में शामिल हो गए थे और उन्होंने 1921 में अदमताउन तहरीक में हिस्सा लिया। मुल्क की आज़ादी के बाद वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने से पहले शास्त्री जी उत्तर प्रदेश में कई अहम ओहदों पर फाइज रहे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुबह कौमी राजधानी में लाल बहादुर शास्त्री के मेमोरियल विजय घाट जाकर गुलहाय अकीदत नज़र किए। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने साबिक वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री को उनके योम पैदाइश पर विजय घाट जाकर खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अज़्म के साथ ये सफ़र आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नज़रिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की समत लगातार काम कर रही है। जामे तरक्की और समाजी एतबार से बाख्तियार बनाए जाने से इस पुख्ता अज़्म के ज़रिए लोगों की ज़िंदगी बदल रही है। अपनी खसूसी सीरीज़ के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि स्कीम के ज़रिए किस तरह इस नज़रिए को अमली शक्ल दी गई है। पेश एक रिपोर्ट।
1: रामेश्वरम में नव तामीर शुदा पामबन ब्रिज भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समंदरी पुल है, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता साल 6 अप्रैल को रामनवमी के पवित्र दिन किया था। अपनी तकरीर में उन्होंने कहा था कि ये रामेश्वरम की पवित्र धरती के लोगों को मुबारकबाद देने का मौका है।
2: द न्यू पामबन ब्रिज टू रामेश्वरम ब्रिंग्स टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशन टुगेदर। ए टाउन दैट इज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड is being connected by a 21st century engineering wonder. For many decades, there was a demand for this bridge. With your blessings, we got the privilege of completing this work. Pamban Bridge supports both ease of doing business and ease of travel.
1: इससे पहले तारीखी पामबन श्रीलंका तक तिजारती कनेक्टिविटी बढ़ाने के मकसद से तामीर किया गया था। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए मदुरई डिवीजन के रेलवे अफसर ने बताया कि पुल के ढांचे की हिफाजत के लिए सिर्फ 99 अप्रोच गर्डर्स की तामीर में ही 3000 टन से ज्यादा फौलाद का इस्तेमाल किया गया है। IIT मद्रास और IIT बॉम्बे के माहिरीन ने नवम्बर 2024 में इस डिजाइन की जाँच की। पामबन पुल उन बड़े समुद्री तूफानों में भी मजबूती से खड़ा रहा जिन्होंने धनुष कोड़ी को तबाह कर दिया था। न्यूज डेस्क रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। शहरी हवाबाजी की वजारत ने भारतीय हवाई अड्डों पर काम कर रहे लोगों के लिए हवाबाजी के हिफाजती तरीक़ेकार को आसान और सहल बनाने के लिए सिलसिलेवार इस्लाहात शुरू की हैं। नई दिल्ली में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS की ऑपरेशनल कारकर्दगी को बेहतर बनाने और कारोबार में आसानी से मुतालिक इस्लाहात के बारे में मीडिया को जानकारी फराहम करते हुए शहरी हवाबाजी के सेक्रेटरी समीर कुमार सिन्हा ने बताया कि इन तब्दीलियों का मकसद तरीक़ेकार को आसान बनाना और सिक्योरिटी के आला तरीन मेयार को बरकरार रखते हुए जवाबदेही पर मबनी हुक्मरानी की जानिब मुंतकली है। वजारत ने बताया कि BCAS ने सिक्योरिटी क्लियरेंस के तरीक़ेकार को आसान बनाया है। ये तरीक़ेकार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और दरख्वास्तों, दस्तावेजात दाखिल करने, डिजिटल जांच और वेरिफिकेशन, डिजिटल इजरा और चेहरे बायोमेट्रिक तस्दीक को मुमकिन बनाता है। ये सिस्टम सभी 169 हवाई अड्डों पर मुश्तरका प्लेटफॉर्म के तौर पर नाफिज किया जा रहा है। सऊदी अरब ने ओमान के उस मुआविन पायलट को मुत्तहिदा अरब इमारात के हवाले कर दिया है जिसने फ्लाई दुबई के तलबीब जाने वाले हवाई जहाज को गिराने की नाकाम कोशिश की थी। तफ्तीशकार मस्कूरा प्रवास के कॉकपिट में भारतीय पायलट स्मिथ मच्छार पर ओमान से ताल्लुक रखने वाले मुआविन पायलट के हमले के वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। इससे कबल सऊदी अरब के हुकाम ने इस वाक़े की इब्तदाई छानबीन की थी। मस्कूरा हवाई जहाज को बुध के रोज वहां के तबूक शहर में इमरजेंसी हालात में उतारा गया था। وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وہ فلائی دبئی پرواز کے بہادر بھارتی پائلٹ کیپٹن اسمت مچھار کی صحت پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے

0: वजारत ने एक बयान में कहा है कि सऊदी अरब में तबूक के एक अस्पताल में इब्तदाई इलाज मुआलजे के बाद कैप्टन स्मिथ को तिब्बी देखभाल और उनकी सेहतयाबी की खातिर अबूजबी ले जाया गया है। मुत्तहिद अरब अमारात में भारतीय सफीर ने अस्पताल में कैप्टन स्मिथ से मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। इससे कबल सफीर मौसूफ ने उनके अरकान खानदान से भी मुलाकात की थी और उनकी सेहतयाबी और खैरवाफियत के लिए हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया था। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन की लड़ाई का बाहमी तौर पर काबिल कबूल हल निकालने के लिए भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पास बहुत अच्छे नजरियात हैं। वल्दाई फोरम में इजहार ख्याल करते हुए जनाब पुतिन ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी उनके साथ बातचीत के दौरान जंग के खात्मे का मौजू बाकायदगी से उठाते रहे हैं और उन्होंने पुरअमन तस्फीये में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। सदर पुतिन ने भारत की सिफारती पोजीशन को गैर जानबदाराना करार देते हुए कहा कि वो मुखासिमत के खात्मे में गहरी दिलचस्पी रखता है। मिजोरम में कल सियालसुक के नज़दीक एक सड़क हादसे में 3 अफराद की मौत हो गई। इनमें पीआईबी इम्फाल के एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर एंगम पामे, डीडी न्यूज आइजोल के डायरेक्टर नामपी बो मारिनमई और सीबीसी आइजोल के एमटीएस एच लियानवाला शामिल हैं। ये लोग जिस कार में जा रहे थे वो खाई में जा गिरी। इत्तलात नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने सोगवार कुंभों से ताजियत का इजहार किया है। एशियाई खेलों में भारतीय ख्वातीन की रिकर्व तीरंदाजी टीम ने अपना पहला सोने का तमगा जीतकर तारीख रकम की है। भारतीय टीम ने आज खेले गए सनसनीखेज फाइनल मुकाबले में आलमी चैंपियन जनूबी कोरिया को 3 के मुकाबले 5 से शिकस्त दी। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से मगरबी बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व में 3 साल रॉयल बंगाल शेरनी की कामयाब मुंतकली। मगरबी बंगाल के पहले शेरों के तारुफ नो प्रोजेक्ट का आगाज है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रजवी।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के ज्यादातर उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को नुमाया तौर पर शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से फ्लाई दुबई वाकये में लोगों की जान बचाने वाले भारतीय पायलट की सताइश की खबर को नुमाया जगह दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारतीय पायलट स्मिथ मच्छार ने 9/11 जैसा सानहा होने से बचा लिया। इसी अखबार ने दिल्ली में आलूदगी पर काबू पाने के इकदाम के निफाज से मुतालिक खबर को खसूसी तौर पर जगह दी है। इसके तहत पीयूसी नहीं तो ईंधन नहीं का उसूल नाफिज किया जा रहा है और इसके निफाज के लिए दिल्ली के 500 पेट्रोल पंपों पर महकमे ट्रांसपोर्ट से मुंसलिक खुद कार सिस्टम लगाया गया है। वहीं दूसरे अखबार ने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में पिकनिक पर गए 8 तलबा की बुहरे अरब में डूबने से मौत की खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। यह हादसा जुमेरात के रोज रायगढ़ जिले के दीवे आगार में पेश आया।
0: खास खास खबरें एक बार फिर। आज बाबाए कौम महात्मा गांधी और साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को उनके योम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। गांधी जयंती के मौके पर मुल्क भर में खसूसी ग्राम सभाओं का इनेकाद किया जाएगा। शहरी हवाबाजी की वजारत ने एविएशन के सिक्योरिटी अमल को ज्यादा सहल और तेज रफ्तार बनाने की खातिर कई असलाहत शुरू की हैं। सऊदी अरब ने ओमान के उस मोमिन पायलट को मुत्तहिद अरब अमारात के हवाले कर दिया है जिसने फ्लाई दुबई के तल अबीब जाने वाले हवाई जहाज को गिराने की नाकाम कोशिश की थी। दिलेर भारतीय पायलट स्मिथ मच्छार को इलाज के लिए अबूजबी ले जाया गया है। भारत उनकी सेहत पर करीबी नजर रखे हुए है। और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन की लड़ाई का बाहमी तौर पर काबिल कबूल हल निकालने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पास बहुत अच्छे नजरियात हैं। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर सुबह के 8:45 और 15 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वर गंगा। स्वर गंगा के अंतर्गत शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित राजीव वर्मा का सितार वादन। सितार वादन पर आज आप सुनेंगे राग विभास।

0: अभी आपने सुना स्वर गंगा शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पंडित राजीव वर्मा से सितार पर राग विभास। आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर।
1: वाह, ये है मेरी प्यारी पपेट और मैं इसका पपेटियर। कम थोड़ा सा नियर, हाउ आर यू डियर। अरे क्यों बैठी है मुंह लटका कर, खेल का टाइम है। कुछ खो गया है क्या?
2: खो ही जाएगा, आने वाले समय में लोग मैप लगा कर ढूंढेंगे। फोन में रास्ता बताने वाली दीदी का काम बढ़ने वाला है।
1: अरे क्या खो गया है?
2: इस बोतल का पानी जो अब नहीं है, तूने अपनी साइकिल की सीट पर डाल दिया फिजूल में।
1: अरे सीट गर्म हो गई थी।
2: मुझे प्यास लगी है, अब मेरा दिमाग गर्म हो रहा है।
1: अरे तो ला देता हूँ ना पानी।
2: जा ढूंढ, आगे GPS लगेगा तब पानी मिलेगा।
1: जाने कैसी कैसी कहानियाँ बनाती है, कैसी बाणी है तेरी।
2: याद रखियो, पानी बाणी और कहानी बचा कर रखने की चीज है अगली पीढ़ी के लिए।
1: बात तो तेरी काम की लगती है।
2: अच्छा तो फिर एंटर मार दे अपने दिमाग के कंप्यूटर में, फटाफट थोड़ा कंट्रोल कर, थोड़ा सा सेव कर, तभी तो मिलता रहेगा सबको वाटर।
0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। और अब हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है 9 बजकर और कुछ सेकंड शेष हैं 15 मिनट में, यानी कि 9 बजकर 15 मिनट पर आप सुनेंगे गांधी चर्चा। वार्ता का विषय होगा गांधी जी का व्यक्तित्व, वाक्य मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, वार्ताकार अखिलेश आरेंदू। लीजिए सुनते हैं।
3: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है, प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।

0: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में आज की वार्ता का विषय है महात्मा गांधी का व्यक्तित्व वाक्य मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। आलेख एवं स्वर अखिलेश आर्येंदु।
1: महात्मा गांधी को समझने के लिए उनके संपूर्ण व्यक्तित्व जिसमें उनके बचपन किशोरावस्था जवानी प्रौढ़ और जीवन की अंतिम श्वासों तक की उनसे संबद्ध छोटी बड़ी घटनाओं कार्यों व्यवहारों विचारों स्वीकृतियों और अस्वीकारों को सहज रूप से समझना होगा। उनके विराट व्यक्तित्व उनके संघर्षों और सत्य के प्रति उनकी निष्ठा को सूक्ष्मता से समझना होगा। महात्मा गांधी ने कोई ऐसा दर्शन प्रस्तुत नहीं किया जिसे केवल पुस्तकों में पढ़ा जाए और जीवन में उतारना आवश्यक न हो। उन्होंने अपने जीवन को एक ऐसी प्रयोगशाला बनाया जिसमें जीवन के हर पल का सूक्ष्मता से परीक्षण किया। इसलिए महात्मा गांधी के संदर्भ में यह बात अत्यंत सार्थक लगती है कि उनका जीवन ही उनका संदेश है। उनका

देश देश के बाहर सात समुन्दर पार तक गया, जिसकी प्रासंगिकता विश्व भर में आज भी बनी हुई है। यह कौन नकार सकता है कि उनका जीवन अत्यंत संघर्षों से तप कर नहीं निकला था। उनका व्यक्तित्व असाधारण होते हुए भी सामान्य मानव की कमजोरियों और संघर्षों से जुड़ा हुआ था। उन्होंने कभी यह नहीं कहा, वे जो करते कहते और स्वीकारते हैं वह अकाट्य है। उन्होंने अपने जीवन में हुई भूलों को छिपाने के बजाय सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। उनकी यह स्वीकारता उनके व्यक्तित्व को असाधारण बनाती है। वे दूसरों को उपदेश देने से पहले स्वयं पर प्रयोग करते थे। उनका बचपन भारत में अवश्य बीता, लेकिन उच्च शिक्षा उनके इंग्लैंड में हुई, लेकिन उनके ऊपर पाश्चात्य संस्कृति और मत का प्रभाव नहीं पड़ा। सादगी, शाकाहार, स्वच्छता और सत्य के प्रति अनुराग उनमें आजीवन बना रहा। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ होने वाले नस्लीय भेदभाव ने महात्मा गांधी के जीवन की दिशा बदल दी। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका में रेल यात्रा के दौरान जब अमानवीय ढंग से प्रथम श्रेणी के टिकट होने के बावजूद उन्हें बाहर निकाल दिया गया, तब उन्हें अनुभव हुआ नस्लीय भेदभाव किस स्तर तक अंग्रेज करते हैं। यह घटना केवल व्यक्तिगत अपमान नहीं थी, उसने उनके भीतर अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की चेतना को जन्म दिया। यहीं से उन्होंने सत्य, आत्मबल और अहिंसक प्रतिरोध का रास्ता खोजा। दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वे भारत लौटे। इसके बाद भारत को समझने के लिए वे गांव-गांव घूमे, किसानों और मजदूरों की समस्याओं को जाना समझा। इसके बाद भारतीयों के साथ अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अन्याय के खिलाफ आंदोलन के जरिए प्रतिरोध करने का निर्णय लिया। चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के आंदोलनों ने उन्हें भारतीय राजनीति के केंद्र में ला दिया। चंपारण में नील की खेती के लिए किसानों पर होने वाले अत्याचार के विरुद्ध उनका संघर्ष केवल राजनीतिक आंदोलन नहीं था, वह यह था कि गांधी राजनीति को समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति के जीवन से जोड़ना चाहते थे। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय जनमानस को व्यापक रूप से संगठित किया। 1930 का डांडी मार्च विशेष रूप से उल्लेखनीय है। नमक जैसी सामान्य वस्तु को महात्मा गांधी ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध जन प्रतिरोध का प्रतीक बना दिया। यह महात्मा गांधी की राजनीतिक कल्पनाशीलता का उदाहरण था। उन्होंने सामान्य भारतीय के नैतिक जीवन से जुड़ी चीज को राष्ट्रीय आंदोलन का आधार बना दिया। ऐसा महात्मा गांधी ही कर सकते थे। उनके लिए स्वतंत्रता का अर्थ केवल अंग्रेजी शासन से मुक्ति नहीं था, स्वतंत्रता का अर्थ था गरीब, किसान, मजदूर, स्त्री, दलित, पिछड़े, वंचित व्यक्ति के जीवन में सम्मान और अधिकार की स्थापना। वे चाहते तो सुख सुविधाओं वाली जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने देश के सबसे कमजोर व्यक्ति वाला जीवन जीने का फैसला किया, जिससे उनका जीवन हर किसी के लिए प्रेरक बन सका। महात्मा गांधी के व्यक्तित्व का सबसे प्रभावशाली पक्ष उनकी सादगी थी। उन्होंने धीरे धीरे अपने पहनावे और जीवन शैली को आम भारतीय जीवन के अनुरूप बना लिया। यह केवल प्रतीकात्मक राजनीति नहीं थी। उनका मानना था कि जिस देश की जनता गरीबी में जिंदगी बसर कर रही हो, उसके नेता का अत्यधिक वैभव में रहना नैतिक और सामाजिक रूप से उचित नहीं है। इसी तरह चरखा उनके लिए मात्र सूत कातने का उपकरण नहीं था, वह आत्मनिर्भरता, शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा और आर्थिक स्वराज्य का प्रतीक था। वे आधुनिक औद्योगिकीकरण के मौजूदा स्वरूप के विरोधी नहीं थे, लेकिन वे ऐसी अर्थव्यवस्था से चिंतित थे जिनमें उत्पादन का उद्देश्य मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के बजाय असीमित भोग और मुनाफा बन जाए। बढ़ती गैर बराबरी ने यह साबित कर दिया है कि जिस चीज से चिंतित थे वह हमारे सामने उपस्थित है। स्वदेशी उनके आर्थिक चिंतन का आधार बिंदु था। उनका आर्थिक चिंतन आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने विकास को केवल उत्पादन और सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों से नहीं देखा। वे पूछते थे कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है कि नहीं। उनका अंत्योदय का विचार इसी संवेदना से जुड़ा था। निर्णय लेते समय सबसे कमजोर और सबसे अंतिम व्यक्ति के हित को ध्यान में रखना। सत्य के साथ वे अहिंसा को प्रबलता के साथ स्वीकारते थे।
सत्य के प्रति आग्रह उनके व्यक्तित्व की केंद्रीय विशेषता थी। वे सत्य को केवल

0: केवल बोलने तक सीमित नहीं करते थे, सत्य उनके लिए नैतिक साहस का आधार था। इसी तरह अहिंसा महात्मा गांधी के विचारों का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ थी, लेकिन अहिंसा को कमजोरी समझना महात्मा गांधी को समझने की भूल होगी। उनके लिए अहिंसा कायरता नहीं बल्कि साहस की चरम अवस्था थी। महात्मा गांधी का मानना था कि साधन और साध्य को अलग नहीं किया जा सकता है, यानी साधन और साध्य दोनों को वे पवित्र मानते थे। यदि लक्ष्य अच्छा है तो उसके लिए अपनाए गए साधन भी मूल्यपरक होने चाहिए। वे कहते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए यदि समाज हिंसा घृणा और प्रतिशोध को अपना ले तो राजनीतिक स्वतंत्रता मिलने के बावजूद समाज भीतर से स्वतंत्र नहीं हो सकता है। इसी तरह राजनीति के विषय में उनका मत था कि राजनीति सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं समाज की सेवा का साधन होनी चाहिए। महात्मा गांधी का राष्ट्रवाद संकीर्णता नहीं थी। वे भारत की स्वतंत्रता तो चाहते थे लेकिन दूसरों से घृणा के आधार पर नहीं। वे मानते थे कि भारत की स्वतंत्रता का मकसद दुनिया से अलग होना नहीं चाहिए। देश को स्वतंत्र कराने के साथ साथ वे समाज को सुधारना भी चाहते थे, लेकिन उनकी इस संबंध में सोच तत्कालीन अन्य समाज सुधारकों से भिन्न थी। छुआछूत, जन्मगत भेदभाव, जात पात, मंदिर में दलितों के प्रवेश के मुद्दों को उन्होंने राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बना दिया। महात्मा गांधी के व्यक्तित्व और कृतित्व का ठीक ठीक मूल्यांकन तभी होगा जब उनके योगदान के साथ उनकी सीमाओं आलोचनाओं पर भी ईमानदारी से विचार किया जाए। धर्म के विषय में महात्मा गांधी का विचार तत्कालीन समाज सुधारकों से भिन्न था। वे धर्म को परंपराओं से जोड़ते चलते हैं, लेकिन उसे सांप्रदायिकतावाद से अलग करते हैं। वे मानते हैं कि धर्म का उद्देश्य मानव को सत्य, करुणा और नैतिकता की ओर चलना चाहिए। धर्म घृणा, अन्याय, हिंसा, शोषण और असहिष्णुता नहीं सिखाता। उनका आहार विहार, आचार विचार, कार्य नीति, सिद्धांत और व्यवहार लचीला और समझौतावादी था। अहिंसा उनके जीवन का दूसरा सबसे बड़ा वैचारिक और व्यवहारिक हथियार था। आत्म परिवर्तन और ब्रह्मचर्य का परीक्षण उनके जीवन का एक नया प्रयोग था। उन्होंने हर विचार, कार्य और सिद्धांत को जीवन की प्रयोगशाला में जांचा परखा। सबसे बड़ी बात उनके जीवन की यह थी कि उन्होंने अपनी कमियों को भी दुनिया के सामने बगैर छिपाए उजागर किया। उनका जन्म और मृत्यु दोनों विश्व समाज के लिए प्रेरणा के स्रोत बने। आज जब दुनिया संकटों से गुजर रही है, युद्ध, सांप्रदायिकता, कट्टरता, राजनीतिक ध्रुवीकरण, आतंकवाद, आर्थिक असमानता, पर्यावरण संकट, बाजारीकरण और सामाजिक अविश्वास लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में महात्मा गांधी के विचार, कार्य, नीति, सिद्धांत और व्यवहार जनजीवन को प्रेरणा देने का कार्य कर सकते हैं। वे किस तरह के व्यक्तित्व थे के संबंध में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन महात्मा गांधी के 17वें जन्मदिन पर 1939 में कहा था, जो आज भी प्रासंगिक है। आइंस्टीन महात्मा गांधी के संपूर्ण व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए कहा था, आने वाली पीढ़ियों के लिए शायद यह विश्वास करना कठिन होगा कि ऐसा कोई व्यक्ति कभी सचमुच इस धरती पर हाड़ मांस के शरीर में चला था। महात्मा गांधी का सबसे बड़ा संदेश शायद यही है कि विचार तभी प्रभावशाली बनते हैं जब वे जीवन में दिखाई दें।
1: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, जिसका विषय था महात्मा गांधी का व्यक्तित्व वाक्य, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। आलेख एवं स्वर अखिलेश आर्येंदु।

इसी के साथ गांधी चर्चा कार्यक्रम का ये अंक अब संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग श्रीनाथ दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता थे वी के तोमर।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांधी चर्चा। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। और अब समय होने जा रहा है हमारे अगले कार्यक्रम का, वो है मिट्टी दी महक। लीजिए सुनते हैं।

بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها

فألهمها

0: شنوندگان گرامی، الان توجهتان را جلب می نماییم به گفتار ویژه‌ای به مناسبت سال روز تولد مهاتما گاندی، نویسنده و گوینده محمود عالم ملک.
1: मोहनदास करमचंद गांधी यकी आज मिसाली तरीन शख्सियत है ये जहानीज के मुतरादिफ बा अदम खुशूनत और सुलमी बचत उ दर हिंद बेउरवान पिदर मिल्लत दारहारी के दर जहान बेउरवान महात्मा गांधी यानी रूह अजीम सजावार एहतराम गुजारीस सातवान मिलाल मुतहद दोवम अक्तूबर सालूद तवल्लुद महात्मा गांधी रा बेउरवान रूज जहानी अदम खुशूनत बराइए तरवीज व गुसरिश पयाम अदम खुशूनत वसूल जहानी बरगुदारमी नमायत उ मुबारद आज़ादी हिंद मबनी बर उसूल रास्ती व अदम खुशूनत रहबरी नमुदे उगूस के अदम खुशूनत बुजुर्ग तरीन नीरू मीबाशत के दर इख्तियार नौ बशर करार दारा इन कवितर अस कवी तरीन सिलाह तखरीबी ये ईजाद शुदे अस कुवये इब्तिकार इंसान में बशत दर सरासर जहान चंदीन रहबरान किश्वरहा वो जवामे तहते तासीर महात्मा गांधी करार गिरफ्तन फन वसी साजी गांधी बेमरदुम बामौफियत तवसुत चंद जामा मजलूम दर सरासर जहान बेकार गिरफ्ते मार्टिन लूथर किंग दारियालात मुत्तहिदे रहबरे इनकलाबी वियतनाम हुशीमिन वो आंग सान सूची दरमियानमार शहादत फसी बराइये मानवियत मुदावी में महात्मा गांधी मी बचन जंग अलह कम्युनिज्म दर लहिस्तान बे रहबरी ये लखवालसा गांधी ये लहिस्तानी मबनी बर उसूल अदम खुशूनत बूत नहजत नीरू ये मर्दुम फिलिपीनी हा तहत रहबरी ये कार्दिनाल जायमी सैन यक नक्श मुहिमरा दर जवाल दिक्तातूरी प्रेदेन मार्कोस ईफा नमूद मुबारज हाइये अदम खुशूनती हुकूमत शोरवी रात दर चिको सलावा की सरनिकुन सख्ते दर अवाइल दहे रवाद एहतियाज हा व मुगामत मर्दू में गैर खुशूनती अलह तवीज निजादी दर अफ्रीकाई जनूबी मुंजर बे आजादी ये नैलतून मंदेला व इंतखाब रईस जमहूर मिलत गर्दीद रहबरी मंदेला मबनी बर एतकाद कामिल दर अदम खुशूनत गांधी मुशाहदे गर्दीद के तबईज निजादी बेतौर मफ़िक़त आमीज बैरून रफ्त गांधी रूये नहजत कार मैगजीक अमरीकाई वो रहबर हकूक मदनी ये सेजार चावेज व हिमायत उबराइए कारगरान किशावर्दी ये लातिनो तासीर बुजुर्ग दाश्ते बूत अखीरन अदम खुशूनत दर मुबारजा मसालिमत आमीज बराइए डेमोक्रेसी व हकूक इंसानी ये मारूफ बे फसल बहार अरब 2011 मिलादी मुशख्खस गर्दीद तजाहुर कुरंदगान मुसालिमा तामीद बराइए खात्मे दादा ने दहे हाइये हुकूमत इस्तेबदादी जालिमाने दर खावरमियाने व अफ्रीका गिर्द हम आमदन व इसलाहात तगीरात रा दर मंतकये खलीज व आसियाई गरबी आगाज नमूदन तदाउर चियान इन अमरा बे इस बात रसांदे के सुलवा अदम खुशूनत मीतवाना दर कंत्रुल किशमकिश नीरुमंतर व मौसरतर बशत दलाई लामा गुफ्त माँ इमरू दरमियान सुल जहानी वो जंग जहानी दरमियान नीरू ये जहन व नीरू ये मादी दरमियान डेमोक्रेसी व रेजीम हुकूमत मुतमरकिज दरिय कुदरत मरकजी यक जंग बुजुर्ग दरी मार्टिन लूथर किंग जेनेवर ता हद इन सुखन अगर इंसानियत पेशरफ्त में नमायत गांधी गुरीज नापजीरफ वह जिंदगी कर्द फिक्र कर्द फालियत तमूद वो अज दीदगाह इंसानियत दर जहते यक जहान सुल हमांगी इलाहाम गिरफ्त महात्मा गांधी जायजा सुल नोबिल रा दरियाफ न दाश्त अगरचे वह चंदीन बार नामजा शुद अम्मा मुरीदान उ मार्टिन लूथर किंग जुनेवर नेल्थूर मांडेला दलाई लामा आंग सान सूची बराक ओबामा देजमन तूतू व एदुल्फो पारीज इसकेबल अर्जेंटीन जायजा सुल नोबिल रा नसीब खुद साख थे बराबरीन इनाश कारस के महात्मा गांधी बाला तरज जायजा

0: ए सुल्ले नोबिल मी बशद अदम खुशूनत दूर तरद मफहूम महासुल जुई व या फुकदान खुशूनत उमूमी तौरी के तवसुत महात्मा गांधी फहमी दे शुदे बराई निशान दादन इश्क फाल दर हर सूरत मी बशद गांधी अदम खुशूनत रा बेयक दिगर गूनी ये तगियत नहंदे बे मुनासिबात माबैन बशरियत व माहियत मादर मुबद्दल सा इमरूज वक्ती के सुल जहानी दुचार सिलाहा ये उतोमी कादिर बे नाबू साजी ये नस्ल इंसानी तालीमात मोहब्बत व रास्ती ये महात्मा गांधी वो बराई ये एहतराम गुजारी बे हुकूक दीगरान सूद मंतर गर्दी दिया अल्बर्ट आइंस्टीन व गांधी तहसीन कुनंदगा ने यक दीगर बूदे वो बारहा नाम हारा रद्दो बदल कर दन आइंस्टीन गांधी रा यक मुदल नक बराई ये नस्लाही आयंदे तौसीफ नमूद चुनान के इमरूज जहां ने यक सदो पंजाउमीन सालू दे तवल्लु दे महात्मा गांधी राजा श्रमी गीरत यादावरी ये इन कलीमाते आइंस्टीन बेजाखा हदबूद सिताई से महात्मा गांधी दर जहान मामनी वर्षिनासा ये ऊ दरीन जमाने जवाले अखलाकीस ऊ तनहा सियासत मदारबू के असत्य आली तरे रवाबित इंसानी दर जमीन ये सियासी हिमायत मी करद महात्मन बाईस्ती बेदानीम के आयंदे पायदार बशरियत नीज दर रवाबित जहानी इमकान पजीर ख्वाहबू तनहा दर सूरती के तसामीम मबनी बर कानून व अदालत भाषण न के मबनी बर कुदरत खुद सा
1: شنوندگان گرامی الان گوش بدهید به سرودهای محلی به صدای برکت سیدو.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।
1: वहीं

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सत्य और अहिंसा में महात्मा गांधी का अटूट विश्वास, न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और हर व्यक्ति की गरिमा में उनका गहरा विश्वास मानवता को प्रेरित करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी युगों में बापू के आदर्श मानवता के लिए पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विजय घाट स्थित समाधि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, जितेंद्र सिंह और एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित संविधान सदन में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कई सांसद, संसद के वरिष्ठ अधिकारी और विद्यार्थियों ने भी दोनों महान को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल

0: बहादुर शास्त्री की जयंती पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आज के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान तक आगे बढ़ाया है। विदेश मंत्रालय भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई विमान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। सऊदी अरब के तबूक में एक अस्पताल में आरंभिक उपचार के बाद अब उन्हें अबू धाबी भेज दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत ने अस्पताल में कैप्टन मच्छार से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर कैप्टन स्मिथ मच्छार की वीरता और साहस को सलाम किया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में 11 मेट्रो स्टेशन अगले निर्देश तक बंद रहेंगे। इनमें जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, राजीव चौक, सेवा तीर्थ, मंडी हाउस, लोक कल्याण मार्ग, INA, चावड़ी बाजार, रामकृष्ण आश्रम मार्ग और नई दिल्ली स्टेशन शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस, INA, नई दिल्ली और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर मेट्रो की इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता। 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लवलीना ने चीन की बाओ जिए को हराकर भारत के लिए महिला मुक्केबाजी में 12 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। रिकर्व मिक्स्ड टीम तीरंदाजी में भारत ने रजत पदक जीता। कुमकुम महोद और धीरज बोमा देवरा की जोड़ी ने चीन से 3-5 से हारने के बाद रजत पदक हासिल किया। भारत की नेत्रा कुमानन ने एशियाई खेलों में महिला डिंगी नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल ने ओलंपिक चैंपियन को हराकर एशियाई खेलों के 65 किलोग्राम फाइनल में जगह पक्की की। भारत पदक तालिका में 70 पदक के साथ छठे स्थान पर पहुंच गया है। इनमें 12 स्वर्ण, 24 रजत और 34 कांस्य पदक हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi today spoke to brave Indian pilot Captain Smith Machar, whose heroics in thwarting of an attack by his co-pilot saved 180 lives on the Fly Dubai flight from Dubai to Tel Aviv. Captain Machar gave details of his experience to the Prime Minister and spoke of what gave him courage during the incident. The Prime Minister applauded his bravery and wished him a quick recovery. The co-pilot accused of assaulting Captain Smith Machar has been transferred to Abu Dhabi. The Saudi press agency, quoting an official source at the Saudi Ministry of Interior, reported that both pilots left the country for Abu Dhabi after receiving medical clearance. The Indian Embassy in Abu Dhabi had yesterday informed that Captain Machar had been brought to the UAE and was recovering well. As reported by SBA, the aircraft landed safely at Prince Sultan bin Abdulaziz International Airport in Tabuk at 9:45 a.m. on Wednesday with 174 passengers and an 8-member crew, all of whom received necessary logistical and medical assistance. According to SBA, preliminary investigations by Saudi authorities in coordination with a UAE security team revealed that an altercation occurred in which the co-pilot assaulted the captain, resulting in injuries to both individuals. The nation pays homage to the father of the nation, Mahatma Gandhi, on his 157th birth anniversary today. A Sarvdharma Prarthana Sabha was held at Bapu's Samadhi Rajghat in the national capital. President Draupadi Murmu attended the Sarvdharma Prarthana this morning and paid floral tributes to the father of the nation. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Lok Sabha Speaker Om Birla, Union Housing and Urban Affairs Minister Manohar Lal and Delhi Chief Minister Rekha Gupta also paid tributes to Mahatma Gandhi at Rajghat. The nation also is paying homage to former Prime Minister Lal Bahadur Shastri on his 122nd birth anniversary today. He was born on 2nd October 1904 in Pandit Deendayal Upadhyay Nagar, previously known as Mughal Sarai, in Uttar Pradesh. As a teenager, he joined India's freedom struggle and participated in the non-cooperation movement in 1921. Following independence, Shastriji held several important positions.

0: London. घर आंगन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला
1: और मैं हूँ राधा पाठक। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर और एआईआर लाइव न्यूज 24/7 पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं।
0: और दोस्तों, आज का दिन हमें सिर्फ इतिहास याद करने का नहीं है बल्कि अपने भीतर झांकने का मौका भी देता है। आज हम मना रहे हैं राष्ट्रपति महात्मा गांधी की जयंती, जिन्होंने सत्य और अहिंसा को जीवन का सबसे बड़ा हथियार बनाया। गांधी जी के लिए आजादी का अर्थ सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत से मुक्ति नहीं था बल्कि एक ऐसे समाज का निर्माण भी था जहाँ हर इंसान को बराबरी और सम्मान मिले।
1: साथ ही आज सादगी, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के प्रतीक पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी है। मंजुला, शास्त्री जी का व्यक्तित्व जितना सरल था, उनकी सोच उतनी ही मजबूत थी। सादगी, ईमानदारी और कर्तव्य के प्रति समर्पण।

0: उनके जीवन की पहचान रहे। जय जवान जय किसान का उनका दिया हुआ नारा आज भी देश की सुरक्षा और अन्नदाता दोनों के महत्व को याद दिलाता है।
1: और बात अगर गांधी जी के विचारों की हो तो अस्पृश्यता के खिलाफ उनका संघर्ष हमें याद दिलाता है कि इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं उसकी इंसानियत से होनी चाहिए।
0: इसलिए आज ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, एक ऐसी सोच का दिन जो कहती है कि मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद और हिंसा हमारी पहली प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए।
1: तो आज दोस्तों 2 अक्टूबर पर बस एक छोटी सी कोशिश कीजिए, किसी के साथ भेदभाव न हो, किसी की बात सुने बिना उसे खारिज ना करें
0: और जहां तक संभव हो हिंसा की बजाय संवाद को ही चुने।

0: लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत हम सुन रहे थे फिल्म परिवार से।
1: और 2 अक्टूबर एक ऐसी तारीख जो हमें इतिहास के कई महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों की याद दिलाती है। आज सिर्फ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती नहीं, आज ही के दिन महान जन नेता के कामराज की पुण्यतिथि भी है और प्रसिद्ध नाटककार शंकर शेष की जयंती भी है।
0: और 2 अक्टूबर से शुरू होता है राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह। 2 से 8 अक्टूबर तक मनाए जाने वाला ये सप्ताह हमें भारत की जैव विविधता और वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूक करता है। और मंजुला, पता है तुम्हें इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1952 में।
1: बिल्कुल, लेकिन आज वन्य जीव सप्ताह पर बात सिर्फ बाघ हाथी और जंगलों की नहीं, आज बात उन लोगों की भी जिन्होंने हमें समझाया कि प्रकृति को बचाने के लिए हमेशा बड़ी बड़ी मशीनें या करोड़ों रुपए नहीं चाहिए, कभी कभी एक इंसान की जिद ही काफी होती है।
0: यहाँ बिल्कुल सही कहा तुमने मंजुला, क्योंकि असम के जादव मोलाई पयोंग को देख लीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे एक बंजर बालू के टापू से शुरू हुई उनकी मेहनत ने दशकों से लगभग 550 हेक्टेयर में फैले जंगल का रूप ले लिया, जिसे आज मोलाई वन के नाम से जाना जाता है। इस जंगल में हाथी, गैंडे, बाघ, हिरण और अनेक पक्षियों ने अपना घर बनाया। 2015 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया।
1: और उनकी कहानी की सबसे खूबसूरत बात कि उन्होंने प्रकृति को अपने हिसाब से बदलने की कोशिश नहीं की, उन्होंने प्रकृति को मौका दिया कि वो खुद अपना संसार फिर से बना सके।
0: कर्नाटक की सालू मर्दा थिम्मक्का, जिन्होंने वर्षों तक पेड़ लगाए, उनकी देखभाल की। झारखंड की जमुना टूडू, जिन्होंने महिलाओं को साथ लेकर जंगलों की रक्षा की मुहिम खड़ी की।
1: और केरल की देवकी अम्मा, जिन्होंने अपनी जमीन को ही एक समृद्ध हरित संसार में बदल दिया। इनकी कहानियां हमें एक बात बताती है कि प्रकृति को बचाने के लिए आपको प्रकृति प्रेमी कहलाने की जरूरत नहीं, बस प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदार निभाइए जिम्मेदारी। पेड़ सिर्फ

0: ऑक्सीजन की मशीन नहीं है, वे मिट्टी को थामते हैं, जल चक्र में भूमिका निभाते हैं, पक्षियों और कीड़ों को भी घर देते हैं, तापमान को नियंत्रित करते हैं और पूरे पारिस्थितिकी या तंत्र को जीवित रखते हैं।
1: इसीलिए जंगल में सिर्फ कितने पेड़ हैं ये मायने नहीं रखता, ये भी मायने रखता है कि उस जंगल में कितने तरह के पेड़, कितने पक्षी, कीट, जानवर और छोटे छोटे जीव साथ रह रहे हैं। सोचिए इसके साए में कितनी जिंदगियां पल रही हैं, क्योंकि जंगल खत्म होने की शुरुआत हमेशा कुल्हाड़ी से नहीं होती, कभी कभी हमारी उदासीनता भी होती है।
0: और जंगल को बचाने की शुरुआत भी हमेशा किसी बड़े अभियान से नहीं, कभी कभी एक इंसान, एक पौधा और उसे बचाने की जिद ही काफी होती है।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत हमने सुना शतरंज फिल्म से। अब जंगल से वापस आते हैं समाज की तरफ, और समाज को सेहतमंद रखना हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: मैं डॉक्टर विनोद, डिस्ट्रिक्ट लेप्रोसी ऑफिसर, नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 28 सितंबर से लेकर 11 अक्टूबर तक कुष्ठ रोग खोज अभियान जारी है। आपसे निवेदन है कि अगर आपको या आपके आसपास किसी व्यक्ति को इनमें से कोई भी लक्षण हो, जैसे चमड़ी पर सुन्न दाग एवं धब्बे, नसों में सूजन एवं तंत्रिका क्षेत्र में सुनिश्चित सुन्नपन हो, तो घबराए नहीं एवं अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाएं। कुष्ठ रोग जीवाणु से होने वाली एक साधारण बीमारी है। इसका इलाज पूर्णतः संभव है, इसलिए कोई संकोच ना करें। इसका इलाज 6 महीने से लेकर 12 महीने तक चलता है, और समय पर और पूर्ण इलाज लेने से कुष्ठ रोग हमेशा के लिए दूर हो जाता है। इसके लिए आपका सहयोग बहुत जरूरी है। धन्यवाद।
0: मंजुला जी, सुना आपने कि समाज के प्रति जागरूक रहना बहुत जरूरी है, और जो बीमारी अभी डॉक्टर विनोद सर ने बताई उनका उसका इलाज पूरी तरह से संभव है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। कुष्ठ रोग से डरे नहीं, बस समय पर इलाज जरूरी है। स्वस्थ समाज बनाएं। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम घर आंगन, मेरे यानी राधा पाठक
2: और मंजुला के साथ। और आज एक खास सेगमेंट होता है एक कदम बुजुर्गों की ओर। तो दोस्तों, हमारे घरों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास उम्र के साथ साथ अनुभव का खजाना जमा होता है। हम बात कर रहे हैं अपने बुजुर्गों की। दादी नानी की कहानियां, दादा दादी के जीवन के अनुभव, माता पिता के संघर्ष, ये सब हमारे परिवार की ऐसी धरोहर हैं जिन्हें किसी बैंक में जमा नहीं किया जा सकता।
0: आज की पीढ़ी के पास तकनीक है, तेज रफ्तार है, नई जानकारी है, लेकिन बुजुर्गों के पास क्या है? अनुभव। उन्होंने वो समय देखा है जब चीजें कम थी लेकिन रिश्तों के लिए समय ज्यादा था।
2: बिल्कुल राधा जी। और आज अगर घर में कोई बुजुर्ग हमें पुराने समय की कोई बात बताते हैं तो हो सकता है वो हमें कहानी लगे, लेकिन उसी कहानी में जीवन का कोई बहुत बड़ा सबक छिपा होता है।
0: इसलिए आज 2 अक्टूबर के अवसर पर हम छोटा सा संकल्प ले सकते हैं। हमें अपने घर के किसी बुजुर्ग के पास बैठना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए, उनके अनुभवों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए।
2: बिल्कुल, क्योंकि बुजुर्ग परिवार का अतीत ही नहीं होते, वो परिवार के आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक भी हो सकते हैं।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म खानदान से।
1: मंजुला, 2 अक्टूबर के आते ही स्वच्छता का विचार हमारे मन में आ जाता है।
0: बिल्कुल आता
1: लेकिन
0: है।
1: क्या स्वच्छता केवल एक दिन की गतिविधि है? क्या ये हमें रोजमर्रा की आदत नहीं होनी चाहिए?
0: बिल्कुल सही कहा राधा जी। घर की साफ सफाई, रसोई की स्वच्छता, पानी की बचत, कचरे को सही जगह पे डालना और अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना, ये छोटी छोटी बातें मिलकर बहुत बड़ा बदलाव लाती है। और हाँ, यहाँ बुजुर्गों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है,
1: क्योंकि घर के बड़े बुजुर्ग हमें अक्सर बताते हैं कि पहले किस तरह चीजों को दोबारा इस्तेमाल किया जाता था, भोजन की बर्बादी नहीं होती थी और जरूरत के हिसाब से ही सामान खरीदा जाता था।
0: और आज जब हम पर्यावरण और कचरे की समस्या की बात करते हैं तो पुराने समय की कई आदतों से हम सीख सकते हैं, इसलिए स्वच्छता के साथ साथ हमें संसाधनों का सम्मान भी सीखना चाहिए।

0: महेंद्र कपूर और साथियों को आप सुन रहे थे फिल्म उपकार में, और मंजुला बात चल रही थी स्वच्छता की, और आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आप कुछ बहुत जरूरी और खास लेकर आई हैं हमारे श्रोताओं के लिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल राधा जी, तो त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है, दशहरा, फिर दीपावली, और उसके बाद शादियों का मौसम, यानी अगले कुछ हफ्तों तक घरों में खूब रौनक होने वाली है। लेकिन इस बार जरा तैयारी का अंदाज बदलिए, सजावट ऐसी हो जो अगले साल भी काम आए, खरीदारी ऐसी हो जिसकी जरूरत सच में हो, और जश्न

0: ऐसा हो जिसमें खुशियां रहें, कचरा नहीं, और यही है जीरो वेस्ट फेस्टिव प्रिपरेशन।
1: या सबसे पहले बात घर की सजावट की। हर साल नई झालर सजावटी सामान खरीदने की बजाय पुराने सामान को नया रूप दिया जा सकता है। पुराने दुपट्टे, साड़ियाँ, कपड़े की कतरने, ये खूबसूरत वंदनवार झालर या टेबल रनर बन सकती हैं। पुराने कांच के जार में दिए या फूल सजाइए। लकड़ी, बांस, जूट, मिट्टी और कपड़े जैसी चीजें जो है सजावट को खूबसूरत भी बनाती है और बार बार इस्तेमाल भी की जा सकती है।
0: क्या बात है। और दिल्ली में हुए एक जीरो वेस्ट फेस्टिवल में कपड़े की कतरनों से पुनः इस्तेमाल होने वाली झालरें और पुराने गत्ते से सजावटी फ्रेम बनाए गए थे, यानी जिसे हम बेकार समझते हैं वही थोड़ी कल्पना से सजावट बन सकता है,
1: तभी तो होगा हमारा जीरो वेस्ट।
0: क्या बात।
1: और
0: है?
1: अब बात आती है रंगोली की। बाजार में प्लास्टिक की चमकीली सजावट खरीदने की बजाय चावल का आटा, हल्दी, फूलों की पंखुड़ियां, पत्तियां और प्राकृतिक रंगों से रंगोली बनाइए। खूबसूरती भी, परंपरा भी और बाद में आसानी से प्रकृति में लौट जाने का विकल्प भी।
0: और खरीदारी, यहाँ एक छोटा सा नियम बहुत काम आएगा। पहले देखिए कि घर में क्या है, फिर तय कीजिए कि वास्तव में क्या चाहिए। हर साल नए कुशन कवर, नई ट्रे, नए सजावटी सामान लेने के बजाय पुराने सामान को थोड़ा सा बदल कर इस्तेमाल किया जा सकता है। और गिफ्ट्स का क्या राधा जी?
1: हर गिफ्ट का मतलब बड़ा डिब्बा, बहुत सारी पैकेजिंग नहीं होती है। मिट्टी के दिए, स्थानीय हस्तशिल्प, कपड़े के बैग, पौधे, घर में बने खाद्य पदार्थ या किसी स्थानीय कारीगर की बनाई चीज, छोटा उपहार भी यादगार हो सकता है।
0: और एक जरूरी बात, प्लास्टिक की चमक हमेशा त्योहार की खूबसूरती नहीं बढ़ाती। भारत में कई ऐसे सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स पर प्रतिबंध लागू है, इसलिए सजावट और जो आयोजन होता है वो योजना बनाते समय प्लास्टिक और थर्मोकोल की बजाय पुनः इस्तेमाल की जाने वाली प्राकृतिक सामग्री चुनना बेहतर है।
1: तो इस फेस्टिव सीजन एक खूबसूरत संकल्प लेते हैं।
0: बिल्कुल।
1: कम खरीदेंगे, सोच समझ कर खरीदेंगे, पुरानी चीजों को नया जीवन देंगे, एक बार इस्तेमाल होने वाली चीजों से बचेंगे, स्थानीय कारीगरों और स्थानीय उत्पादों को जगह देंगे, और सबसे जरूरी, त्योहार खत्म होने के बाद अपने पीछे सिर्फ यादें छोड़ेंगे, कचरे का पहाड़ नहीं, क्योंकि असली उत्सव वही है जहां घर भी सजे, दिल भी सजे और प्रकृति पर बोझ भी न पड़े।
0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। और दियों की रोशनी रहे, रिश्तों की गर्माहट रहे, त्योहारों की खुशबू रहे, पर बेकार चीजों की भरमार ना रहे।

0: याला याला दिल में।
1: ये गीत आप सुन रहे थे उजाला फिल्म से मन्नाडे और लता मंगेशकर की आवाज में। और राधा जी, हमारे आसपास कोई परेशान हो, कोई नौकरी को लेकर उलझन में हो, रिश्ता टूट गया हो, करियर को लेकर कंफ्यूज्ड हो, या बस मन थोड़ा सा भारी हो, हम तुरंत कह देते हैं कि ऐसा करते तुम्हें पहले ही समझ जाना चाहिए था, मैं तुम्हारी जगह होता तो ये करता, इतना मत सोचो। लेकिन जरा सोचिए, क्या हर परेशानी का समाधान उसी पल चाहिए होता है? कभी कभी इंसान समस्या लेकर नहीं आता, वो बस अपना मन लेकर आता है।
2: और वहां सलाह देने से ज्यादा जरूरी होता है सुनना। एक छोटा सा फर्क समझिए, सलाह कहती है तुम्हें क्या करना चाहिए, मैं बताता हूँ, और साथ कहता है तुम जो भी तय करो पहले मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यही फर्क किसी रिश्ते को सुरक्षित बनाता है।
1: और आपने भी महसूस किया होगा दोस्तों कि जब हम परेशान होते हैं तो कई बार सामने वाला हमारी पूरी बात होने से पहले ही समाधान बताना शुरू कर देता है। और अगर आप किसी के बहुत करीब हैं तो अगली बार उसकी परेशानी सुनते हुए तुरंत मेरी, और अगर आप किसी के बहुत करीब हैं तो अगली बार उसकी बात सुनते हुए ये मत सवाल कहिए कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सलाह दूं या बस तुम्हारी बात सुनूं। यकीन मानिए, ये छोटा सा सवाल रिश्ते में बहुत बड़ी समझदारी ला सकता है।
2: क्योंकि हर बार किसी की जिंदगी ठीक करना जरूरी नहीं होता, कभी कभी बस उसे मुश्किल समय में उसके साथ खड़ा होना ही बहुत होता है। और शायद रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, हमेशा सही शब्द मिल जाए ये जरूरी नहीं, लेकिन सही समय पर किसी का हाथ थामे रहना बहुत जरूरी है।
1: क्या बात है। तो अगली बार किसी अपने को परेशानी में देखें, उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए। सलाह बाद में भी दी जा सकती है, साथ देने का समय शायद अभी है।

0: सुनीता और गीता। इस फिल्म में आप सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार को।
1: और दोस्तों, हमारी पीढ़ी कहती है हमारे समय में ऐसा होता था, नई पीढ़ी कहती है अब जमाना बदल गया है।
0: और यहीं से शुरू होता है पीढ़ियों का संवाद। वास्तव में दोनों पीढ़ियों के पास एक दूसरे को देने के लिए बहुत कुछ है।
1: बिल्कुल।
0: युवा पीढ़ी बुजुर्गों को मोबाइल, इंटरनेट और नई तकनीक सिखा सकती है।
1: और बुजुर्ग युवाओं को सिखा सकते हैं धैर्य, बचत, रिश्तों की अहमियत, मुश्किल समय में हिम्मत और कम साधनों में खुश रहना।
0: इसीलिए दोनों पीढ़ियों के बीच दूरी बनाने की जरूरत नहीं है, जरूरत है एक दूसरे को समझने की। अगर दादी मोबाइल चलाना सीख रही है तो पोती उनकी मदद करे, और अगर पोता नया ऐप समझ रहा है तो दादा भी अपने अनुभव उसे साझा कर सकता है, कोई कहानी सुना सकता है। क्योंकि जो ऐप है आजकल मंजुला, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर आप कहानी का ऐप शुरू करोगे तो आपको बुजुर्गों से सहायता लेनी ही पड़ेगी।
1: और यही तो है घर आंगन की खूबसूरती।

0: हम सुन रहे थे जांबाज फिल्म से सपना और किशोर कुमार की थी आवाजें।
1: और दोस्तों, कार्यक्रम अपने समाप्ति की ओर है, तो जाते जाते क्यों ना एक टिप बताया जाए। अगर अभी फेस्टिव टाइम है तो काजल को स्मज होने से बचाना चाहती हैं, तो सबसे पहले अच्छी तरह से काजल लगाएं, उसके बाद उसी कलर का आई शेडो उस पर अप्लाई कर लें। काजल पूरा दिन टिका रहेगा और आपका लुक बहुत ही तरोताजा नजर आएगा।
0: और अब सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत, जो हमने लिया त्रिशूल फिल्म से लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजें। और उम्मीद है कि आज की प्रस्तुति आप सबको पसंद आई होगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, या दीजिए मुझे यानी राधा पाठक और
1: मंजुला को इजाजत। नमस्कार
0: और सुनते रहिए ये गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार से बात की। उन्होंने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट में अपने सह पायलट के हमले को नाकाम करते हुए 180 लोगों की जान बचाई थी। कैप्टन मच्छार ने प्रधानमंत्री को अपने अनुभव के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि इस घटना के दौरान उन्हें किस बात से साहस मिला। प्रधानमंत्री ने उनकी बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की और सबसे बड़ी बात 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में संबंधित देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। फ्रांस के विदेश व्यापार और आर्थिक मामलों के मंत्री निकोलस पोरिसिये के साथ बैठक में श्री गोयल ने व्यापार और निवेश बढ़ाने, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने तथा विमान निर्माण, यूपीआई के एकीकरण और संयुक्त नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। कृतज्ञ देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विजय घाट स्थित समाधि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और एल मुरुगन सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने आज नई दिल्ली स्थित संविधान सदन में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कई सांसद, संसद के वरिष्ठ अधिकारी तथा विद्यार्थियों ने भी दोनों महान नेताओं को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक शांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से की गई सराहना से प्रत्येक भारतीय को अपार गर्व महसूस होता है। श्री शाह ने कहा कि महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आया

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है दोपहर के 1:11 और ये हुए पूरे 28 सेकंड, और ये समय है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। और आज की इस फिल्म का जो जिक्र हम आपके साथ करेंगे उसका नाम मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूंगी, लेकिन हाँ पहले ये बता दूं कि आपके साथ आज इस सफ़र में रहूंगी मैं, आपकी साथ आपकी रेडियो हम सफ़र सोनाली। कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार। तो आज की जो फिल्म है वो 1981 में बनी एक हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे टीनू आनंद ने लिखा और निर्देशित किया है, और इसके जो निर्माता हैं वो इकबाल सिंह है। अब देखिए ये फिल्म बनी है 1981 में। अब वो दौर किसका था? वो दौर था एंग्री यंग मैन का। तो आप समझ गए, इतना क्लू तो मैंने आपको दे दिया, लेकिन हाँ फिल्म कौन सी है ये आप मुझे बताएंगे। तो अब मैं आपको ये पहला गाना आपके सुपुर्द करती हूँ, गाना सुनिए और फिर मुझे बताइए कहाँ बताएंगे। जी हाँ, ipradiodelhi@gmail.com इस पे आप हमें बताएंगे हमारी फिल्म कौन सी है और इस फिल्म से जुड़े आपके कौन सी यादें हैं, कौन सी गाना आपको इस फिल्म का पसंद है, कौन हीरो हीरोइन आपको इसमें नजर आते हैं, जरा बताइए। तो बस आइए सुनते हैं ये पहला गाना।

तो इधर हमने गाना चलाया और उधर हमारे इतने जानकार दोस्तों की मेल्स की बाढ़ आ गई। मतलब इस बाढ़ की तो खैर हमें हमेशा प्रतीक्षा रहती है। अब लोग इतने प्यार से, इतने अपनेपन से और इतनी बाखुशी हमें अपने साथ अपनी बातें साझा करते हैं ना कि सच में कार्यक्रम करने का आनंद आप लोग दो गुना कर देते हैं। तो बस आपने बिल्कुल सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं फिल्म कालिया की। जी हाँ, जिसमें है अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिका में, और वैसे एंग्री यंग मैन बोलने से तो आप समझ ही गए थे ना कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। साथ में कौन थी? जी हाँ, परवीन बाबी, आशा पारेख, कादर खान, प्राण, अमजद खान, के एन सिंह और जगदीप, है ना। और संगीत संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने, और गीत किसने लिखे थे? जी हाँ, मजरूह सुल्तानपुरी ने। तो ये ना जो फिल्म है, ये फिल्म एक गुस्से वाले नौजवान युग की क्लासिक फिल्म थी, है ना। यह फिल्म अपनी क्लासिक जोशीले गीत, हमारा जो पहला गीत था, उसके लिए बहुत ज्यादा याद की जाती है। मतलब ये गाना, ये म्यूजिक चला और हमको पता है कि हम कालिया की बात कर रहे हैं। और अच्छा, कालिया के साथ में आपको याद है

मेट्रॉन में कालिया कालिया कालिया ऐसा लगातार चलता था जैसे ही अमिताभ बच्चन बाहर आते थे तो। और ये ना आज भी हर जगह, हर जैसे कोई भी पार्टी हो जहाँ पे डांसिंग नंबर कोई चाहिए हो, ये जहाँ तेरी ये नजर है जरूर बजता है। और ना इसे उस दशक के सबसे प्रतिष्ठित गीतों में से ना एक माना जाता था। खैर, ये तो हुई हमारी बातें इस बारे में, कालिया फिल्म के बारे में। अब मैं आपकी जरा मेल साहब के बारे में बता दूं कि कौन कौन जुड़ा है हमारे साथ। देखिए, ये हमारे साथ है हीरामणि वर्मा जी, दतरंगी भाटापारा से लिख रहे हैं। एक ही फिल्म में आज हम कालिया से जुड़ी बातें करेंगे, बिल्कुल उसी की बातें करेंगे। फिर हैं छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा। उन्हें प्रस्तुति अच्छी लगी, पहला गीत वो सुन रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर ये हैं हरजिंदर सिंह, हरजिंदर छिंदा जी हैं, गांव नथाना पंजाब से, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता के साथ। ये कह रहे खुश रहो, खुशियां बांटो, बिल्कुल। फिर गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से हैं, और आप हमें गांधी जयंती और लाल बहादुर जी की जयंती की शुभकामनाएं दे रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं धर्मेंद्र छिपा जी। देखिए, आज आपका वो चिर परिचित जो अंदाज है वो कहाँ गायब हो गया, कहाँ है जानकारी। खैर, जो भी है वो यही है कि एक ही फिल्म है आज की कालिया, और ये आप भोपालगढ़ राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं। उनके साथ हैं कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार। फिर ये हैं वडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा और सुदर्शन मुखी जी, अनीता मुखी और सिमरन मुखी के साथ जुड़े हैं शांतिनगर से, और बता रहे हैं कालिया फिल्म है क्या बात है। देखिए, अब लोग इतने प्यार से तो हमारी पहेलियाँ बुझ गए, तो अब मैं आपको इस फिल्म का दूसरा गाना सुनाती हूँ जो मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है। और बस आप इस गाने को सुनिए और हम फिर इस फिल्म के बारे में आगे बातें करेंगे।

जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फ़िल्म कालिया का आप ये गाना सुन रहे थे। अब अगर हम फिल्म की कहानी की बात करते हैं ना दोस्तों, तो फिल्म की शुरुआत कल्लू से होती है। कल्लू एक सीधा साधा, अल्हड़ और थोड़ा बेफिक्र नौजवान है जो अपने बड़े भाई शामू और भाभी शांति के साथ रहता है। शांति की भूमिका आशा पारेख ने निभाई थी और शामू का किरदार कादर खान ने। कहानी ना तब करवट लेती है जब शामू जिस मिल में काम करता है वहां एक हादसे में उसके दोनों हाथ चले जाते हैं, नौकरी छूट जाती है और इलाज के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। कल्लू अपने भाई के मालिक शाहनी सेठ से मदद मांगता है लेकिन शाहनी सेठ पैसे देने से साफ इनकार कर देता है। मजबूरी में कल्लू उसके पैसे चुराने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ा जाता है और जेल पहुंच जाता है। यहीं से एक मासूम कल्लू के भीतर का कालिया जन्म लेता है। जेल में उसका सामना अपराध की दुनिया से होता है। वहां वह धीरे धीरे बदलता है और जेल से निकलने के बाद शानी सेठ से बदला लेने की ठान लेता है। लेकिन कहानी सिर्फ बदले की नहीं है दोस्तों, आगे चलकर ना शानी सेठ के पुराने अपराध और शालिनी के अतीत की परतें खुलती हैं। शालिनी कौन? जी हाँ, हमारी हीरोइन जो है परवीन बाबी। और यही प्राणी यहाँ पर जो माफ़ कीजिएगा, जो प्राण हैं वो जेलर की भूमिका में नज़र आते हैं। उनका नाम है रघुवीर सिंह। तो यानी जो कालिया फिल्म है एक साधारण आदमी की परिस्थितियों से टूटकर बदल जाने की कहानी है जिसमें परिवार, अन्याय, अपराध, बदला और इंसाफ सब एक साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ अब मुझे आप ये बताइएगा कि इस फिल्म में ना एक ऐसी महिला किरदार है जिनका जन्मदिन भी है और उनके ऊपर ना अगला कार्यक्रम हम उन्हीं पर करने वाले हैं, एक ही कलाकार। तो जरा मुझे बताइए मैं किन की बात कर रही हूँ। तब तक आप इस गाने को सुनिए।

आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म कालिया का आप एक बहुत प्यारा सा गाना सुन रहे थे। और देखिए, हमने पूछा और वहाँ पर आपके जवाब ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल आ गए ना आपके जवाब। देखिए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अच्छा ये तो इन्होंने सिर्फ हमें यहाँ पर जुड़े हैं, बताया है कालिया के बारे में, ये लिख रहे हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, PS नाहवकर, निर्मला नाहवकर, विशाल नाहवकर, सोपान तावड़े, और फिर ये है खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटो, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुक्कू भाविक सिक्का। और शुक्रिया, आपको अच्छा लग रहा है, ये हमें भी जानकर अच्छा लगता है। देखिए, सही जवाब किसने दिया कि आज किसका जन्मदिन है, मैंने आपसे पूछा था, जो इस फिल्म में भी है। बिल्कुल, ये देखिए, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र जी ने हमें बता दिया है कि आज आशा पारेख का जन्मदिन है। और आपको पता है, बहुत अलग बात है, बहुत रोचक सी बात है कि इस फिल्म में अमिताभ के साथ हमें आशा पारेख नजर आती हैं, और ये इन दोनों की एकमात्र फिल्म है जिसमें ये दोनों

नजर आते हैं, लेकिन ये इसमें उनकी ना नायिका है नहीं है, जबकि वो उनके बड़े भाई जो कादर खान है उनकी पत्नी की भूमिका में इस फिल्म में नजर आती हैं। और इस फिल्म में एक और बहुत प्यारी जोड़ी है दोनों दोस्तों की। अब वो देखिए निजी लाइफ में वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, और इस फिल्म में वो एक ऐसे किरदार में उनके वो दोस्त नजर आते हैं जिनसे कालिया बाद में बहुत बदला लेता है। जी हाँ, मैं शानी सेठ की बात कर रही हूँ। शानी सेठ का किरदार निभाया था कादर खान ने, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अमजद खान ने। और अमजद खान बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं अमिताभ बच्चन के। तो अब देखिए हमारे साथ कौन है, ये है स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह। और फिर हमारे साथ हैं भूषण खेड़ा जी, फजिलका पंजाब खेड़ा से, इनके साथ इनका पूरा परिवार है, जिसमें है विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, शालिनी खेड़ा और तिवानशी खेड़ा, भागवानी खेड़ा, आरबी खेड़ा, जीवन सिंह, बुक समिस्त खेड़ा परिवार। और माफ़ कीजिएगा, ये आपने जो फरमाइश की है फरमाइशी फिल्मों का कार्यक्रम नहीं है, माफ़ी चाहूँगी आपसे। तो संदीप मक्कर जी हमारे साथ हैं, भरत मक्कर, कमल शाहनी, पिंगा वाला चौक, गोरैया जालंधर से हैं, बसंत कुमार सिंह हमारे साथ हैं, सिन्हा जी हमारे साथ हैं, ये हमारे साथ इनके साथ है रेखिया रेखा देवी शॉ, अजय कुमार, रिम्मी, तनुश्री गुप्ता और भी इनके परिवार के सदस्य हैं। फिर हमारे साथ यहाँ पर हैं धर्मेंद्र शिपा जी का नाम ले चुकी हूँ मैं, और ये हैं फारूक अली खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुदर्शन मुखी जी का मेल ले चुकी हूँ, और शुक्रिया, आपको अच्छा लग रहा है जानकर, बहुत अच्छा लगा, कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। फिर यही बात हमारे संग नीतू मल्होत्रा जी का परिवार भी कह रहा है, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इस फिल्म का एक और गाना मैं आपके साथ साझा करूँगी, उसके पहले आपको बस इतना बता दूँ कि ये जो फिल्म है तीनू आनंद का निर्देशन था, आर डी बर्मन का म्यूजिक था, और जो इस फिल्म को सबसे ज़्यादा ख़ास बनाता है वो है कि कालिया से कल्लू से कालिया बनने की कहानी है, और ये बहुत खूबसूरत तरीके से इस कहानी को गुथा गया है और एक बहुत अच्छा संदेश भी देती है ये समाज को। तो हम आपको इस फिल्म का एक और गाना सुनाते हैं, इस फिल्म में गाने ज़्यादा नहीं थे लेकिन जो भी थे बहुत ज़्यादा कहानी के संग न्याय करने वाले गाने थे। तो आइए सुनते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म का ये एक और गाना।

दोस्तों आप सुन रहे थे आज एक ही फिल्म्स में फिल्म कालिया के बारे में, और ये सफर आपने तय किया आपकी रेडियो हम सफर सोनाली के साथ। तो आपको इस गीत के साथ छोड़े जा रही हूँ, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी दोपहर, जी हाँ 2:30 बजे, लेकर के कार्यक्रम एक ही कलाकार।

0: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे पंजाबी में समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन दे नाल मैं यादविंदर सिंह। पहला सुनो बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज बहादुर भारती पायलट कैप्टन समित मछार नाल गलबात की। समित ने दुबई तो तेल अवीव जाने वाली उड़ान उत्ते किए गए हमले नूं नाकाम करके 180 लोगों की जान बचाई सी। देश अज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और साबका प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री उन्होंने जन्म वरेगंढ उत्ते श्रद्धांजलि भेंट कर रहा है। वणज और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमरीका विच फ्रांस, कैनेडा, साउदी अरब और दक्षिणी कोरिया के व्यापार मंत्रियों नाल व्यापारक संबंधों को मजबूत करने लई दुवलियां मीटिंगां कीतियां। कैनेडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने कहा है कि कैनेडा ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजा और एयरोस्पेस खेतरां विच भारत नाल मिल के काम करना चाहता है। एशियाई खेडा च मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाइन ने 75 किलोग्राम वर्ग विच इतिहास रचदिया सोने का तमगा अपने नाम किया। हुण खबरां विस्थार दे नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज बहादुर भारती पायलट कैप्टन समित मछार नाल गलबात की। उन्होंने दुबई तो तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान दौरान अपने सह पायलट वालों किए गए हमले नूं नाकाम करके 180 मुसाफरां की जान बचाई सी। कैप्टन मछार ने प्रधानमंत्री नाल अपने तजर्बे बारे विस्थार नाल गलबात की ते दस्या कि उस घटना दौरान उन्होंने किस चीज़ तो हिम्मत मिली।
2: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने, यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं हैं, जान बचाने वाले लोग हैं। और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता
1: हूं। कैप्टन समित मछार ते हमला करने वाले मुलजम सह पायलट नू अबू धाबी भेज दिता गया है। साउदी प्रेस एजेंसी SPA ने साउदी गृह मंत्रालय के अधिकारित सूत्रों का हवाला दिंदिया दस्या है कि दोवें पायलट डाक्टरी जांच तो बाद अबू धाबी लई रवाना हो गए। अबू धाबी विच भारतीय दूतघर ने कल जानकारी दी कि कैप्टन मछार नू संयुक्त अरब अमीरात UAE लिया गया है अते उन्हां दी सेहत विच सुधार हो रहा है। SPA मुताबक UAE की सुरक्षा टीम के सहयोग नाल साउदी अधिकारियों वालों की गई मुढ़ली जांच तो पता लगा है कि एक झगड़ा होया सी जिस दौरान सह पायलट ने कैप्टन उत्ते हमला कर दिता जिस दे नतीजे वजो दोवें जख्मी हो गए। देश अज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नूं उन्हां दी 157वीं जयंती उत्ते श्रद्धांजलि भेंट कर रहा है। इस मौके ते देश भर विच अते विदेशां विच भारतीय मिशनां वल्लों भी कई प्रोग्राम करवाए जा रहे ने। गांधी जयंती दे मौके ते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नूं श्रद्धांजलि भेंट कीती। उन्हां कहा कि महात्मा गांधी दे जीवन अते आदर्शां दा दुनिया भर विच सत्कार कीता जांदा है। राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया दे कई हिस्सों विच जंग अते टकराव दे संदर्भ विच गांधी जी दा शांति ते अहिंसा दा संदेश पहलां नालों किते ज्यादा प्रसंगक हो गया है। उप राष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने भी महात्मा गांधी नूं श्रद्धांजलि भेंट कीती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती मौके नवी दिल्ली विच महात्मा गांधी दी समाध राजघाट उत्ते फुल्लां नाल श्रद्धांजलि भेंट कीती। राजघाट उत्ते सर्वधर्म प्रार्थना करवाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा दे स्पीकर ओम बिरला अते केंद्रीय मंत्री राजनाथ

0: भारत के तमगों की कुल तादाद 71 हो गई है। इनमें सोने के 12, चांदी के 25 और कांसे के 34 तमगे शामिल हैं। और आखिर में खास खास खबर एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फ्लाई दुबई के पायलट कप्तान सुमित मछार से बातचीत की। उन्होंने उनकी बहादुरी की तारीफ की और जल्द सेहतयाबी की दुआ की। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने G20 के तिजारत से मुतालिक वजीरों की मीटिंग से अलग फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और जनूबी कोरिया के अपने हमनसब वज़रा से दोतरफा मीटिंग्स की। मुल्क ने बाबा कौम महात्मा गांधी और साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को आज उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi speaks to pilot of Fly Dubai Captain Smit Machar, applauds his bravery and wishes him a quick recovery. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal holds bilateral meetings with his counterparts from France, Canada, Saudi Arabia and South Korea on the sidelines of the G20 trade ministers' meeting to strengthen trade relations. Nation pays homage to father of the nation, Mahatma Gandhi, and former Prime Minister Lal Bahadur Shastri on their birth anniversary today. IMD forecasts heavy rainfall over Arunachal Pradesh for today, says conditions are favourable for further withdrawal of southwest monsoon from northwest India. And in Asian Games, Lovlina Borgohain clinches gold medal in women's boxing 75kg category. Total medal tally rises to 72, including 12 gold. Prime Minister Narendra Modi today spoke to brave Indian pilot Captain Smit Machar, whose heroics in thwarting of an attack by his co-pilot saved 180 lives on the Fly Dubai flight from Dubai to Tel Aviv. Captain Machar gave details of his experience to the Prime Minister and spoke of what gave him courage during the incident. The Prime Minister applauded his bravery and wished him a quick recovery. Mr. Modi said the whole country is praying for him. He said Captain Smit's courage, presence of mind and composure saved many lives. The Prime Minister lauded Smith's spirit, saying that the country can proudly say that Indians are not those who take lives, but those who are willing to risk their lives to save others. During the interaction, an emotional Smith shared that PM Modi is his biggest idol and expressed how special and proud he felt to receive the call.
2: Aapki himmat ne, aapke dhairya ne, aur aapki soojbooj ne. अने फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं हैं, जान बचाने वाले लोग हैं। और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपनी जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ। अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
3: सर, मेरे लिए मैं सर से भी बोल रहा था, आप मेरे सबसे बड़े एक्टर से और मेरे को इनसे कॉल करके मेरी हौसलाफजाई कर रहे, मुझे बहुत बहुत बहुत गर्व फील हो रहा है।
1: The co-pilot accused of assaulting Captain Smit Machar has been transferred to Abu Dhabi. The Saudi press agency SBA, quoting an official source at the Saudi Ministry of Interior, reported that both pilots left the country for Abu Dhabi after receiving medical clearance. The Indian embassy in Abu Dhabi had yesterday informed that Captain Machar had been brought to the UAE and was recovering well. The nation is paying homage to the father of the nation, Mahatma Gandhi, on his 157th birth anniversary today. A Sarvadharma Prarthana Sabha was held at Bapu's Samadhi in Rajghat in the national capital. President Draupadi Murmu attended the Sarvadharma Prarthana this morning and paid floral tributes to the father of the nation. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Lok Sabha Speaker Om Birla, Union Housing and Urban Affairs Minister Manohar Lal, and Delhi Chief Minister Rekha Gupta also paid tributes to Mahatma Gandhi at Rajghat. The nation is also

0: In 75-kilogram category, total medal tally rises to 72, including 12 gold. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार से बात की। उन्होंने कैप्टन की बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया के समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। कृतज्ञ देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। मौसम विज्ञान ने आज अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। दक्षिण पश्चिम मानसून के कमजोर पड़ने की संभावना। एशियाई खेलों में लवलीना बोरगोहाइन ने महिला मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 12 स्वर्ण सहित पदकों की संख्या बढ़कर 72 हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार से बात की। उन्होंने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट में अपने सह पायलट के हमले को नाकाम करते हुए 180 लोगों की जान बचाई थी। कैप्टन मच्छार ने प्रधानमंत्री को अपने अनुभव के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि उस घटना के दौरान उन्हें किस बात से साहस मिला। प्रधानमंत्री ने उनकी बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने कहा कि पूरा देश उनकी कुशलता के लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रधानमंत्री ने स्मिथ के जज्बे की सराहना करते हुए कहा कि देश गर्व से कह सकता है कि भारतीय वे नहीं हैं जो जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं।
2: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
1: बातचीत के दौरान भावुक कैप्टन स्मिथ ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी उनके सबसे बड़े आदर्श हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री का फोन आने पर अपनी खुशी और गर्व का अनुभव किया।
3: उस मोमेंट में सर मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था। मैं एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैंने कुछ नहीं किया, जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब मुझे एहसास हो रहा था कि एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा है और बाकी सबकी भी उतनी उसमें रोल था। बट जान के मैं सर मैं एक सिर्फ पॉजिटिविटी में मैं जब भी मेरे को डांस होता है मुझे एक ही चीज आती है, मैं सिर्फ हनुमान चालीसा बोलता हूँ। उस टाइम पे भी मैं सिर्फ हनुमान चालीसा ही बोल रहा था।
1: वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में संबंधित देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
4: फ्रांस के विदेश व्यापार और आर्थिक मामलों के मंत्री निकोलस फोर्सिए के साथ बैठक में श्री गोयल ने व्यापार और निवेश बढ़ाने, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने तथा विमान निर्माण, यूपीआई के एकीकरण और संयुक्त नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ बैठक में दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर जारी वार्ता की समीक्षा की और इसे जल्द आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने मार्च में इस समझौते की शुरुआत की थी। इसका लक्ष्य 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। सऊदी अरब के वाणिज्य मंत्री माजिद बिन अब्दुल्ला अल कसाबी के साथ बैठक में श्री गोयल ने भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए जारी बातचीत की प्रगति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अनुपम मिश्र।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए श्री मोदी के विचार बहुत अच्छे हैं। एक सार्वजनिक मंच पर राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के कूटनीतिक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया।

0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक शांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से की गई सराहना से प्रत्येक भारतीय को अपार गर्व महसूस होता है। श्री शाह ने कहा कि महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आया पुतिन का ये बयान दर्शाता है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक शांति के लिए एक विश्वसनीय आवाज बनकर उभरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सत्य और अहिंसा में महात्मा गांधी का अटूट विश्वास, न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और हर व्यक्ति की गरिमा में उनका गहरा विश्वास मानवता को प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी युगों में बापू के आदर्श मानवता के लिए पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। महात्मा गांधी की जयंती आज वैश्विक स्तर पर भी मनाई जा रही है। कई देशों में भारतीय राजनयिक मिशनों ने इस अवसर पर गांधी जी की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की और सत्य, अहिंसा तथा शांति के उनके संदेश को याद किया। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। इसे अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने विजय घाट स्थित समाधि पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और एल मुरुगन सहित कई अन्य मंत्रियों, सांसदों तथा विद्यार्थियों ने आज नई दिल्ली स्थित संविधान सदन में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी दोनों महान नेताओं को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। गांधी जयंती के अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज गोयल ने आज नई दिल्ली में खादी महोत्सव का उद्घाटन किया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12-13 वर्षों में खादी ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं।
1: खादी युवाओं के लिए फैशन स्टेटमेंट बन गया है। आज खादी के देश भर में फैशन शो हो रहे हैं। युवा मोदी जैकेट पहन रहा है, मोदी कुर्ता पहन रहा है। युवा हमारी खादी की कॉस्मेटिक खरीद रहा है, खादी के ग्रामोद्योग उत्पाद खरीद रहा है। खादी की कुर्ती हो, जैकेट हो, वो उत्पाद जो कभी गांव गलियों से बाहर नहीं निकल पाते थे, आज वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खादी अपना जलवा पूरे देश में बिखेर रही है। पिछले 12-13 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खादी कई गुना बढ़ी है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज थिरू के कामराज की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति भवन में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि थिरू के कामराज ने अपना जीवन राष्ट्र सेवा और आम जनता के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक

0: सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको अटल सुरंग के माध्यम से इस दृष्टि को साकार रूप देने का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।
1: विश्व प्रसिद्ध रोहतांग दर्रे के नीचे कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में निर्मित अटल टनल आधुनिक इंजीनियरिंग और सीमा सड़क संगठन की तकनीकी क्षमता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। देश की महत्वपूर्ण आधारभूत और सामरिक परियोजनाओं में शामिल अटल टनल, जहां प्रदेश के कुल्लू व जनजातीय जिला लाहौल स्पीति को वर्ष भर हर मौसम में जोड़े रखती है, वहीं आज हिमाचल प्रदेश के विकास, पर्यटन और सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पहचान बन चुकी है। समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित 9 किलोमीटर से अधिक लंबी अटल टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को किया था। इस पर करीब 3,200 करोड़ रुपए की लागत आई है। अटल टनल के बन जाने से क्षेत्र के लोगों के जीवन में उल्लेखनीय सकारात्मक बदलाव आया है। लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलांग निवासी सोनम जांगपो ने बताया कि अटल टनल स्थानीय लोगों के लिए परिवहन, व्यापार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुँच को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने इस ऐतिहासिक सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है।
2: अटल टनल जो खुलने से पहले हमें रोहतांग टॉप होके कुल्लू मनाली जाना पड़ता था, जिससे हमें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जैसे ही टनल खुला, उसके बाद स्वास्थ्य सुविधाएं भी हम इजिली, इमरजेंसी कभी भी कुछ भी रहता है, हम इमीडिएट 1-2 घंटे के अंदर कुल्लू पहुंच जाते हैं। हमारे जो फसलें हैं, जो किसान भगवान भाई है, उन सभी के लिए भी बहुत ज्यादा आसानी हो गई है। हम केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
1: अटल टनल रोहतांग के बनने से जहां हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिला है, वहीं इसके माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों, खासतौर पर लेह लद्दाख के लिए वर्ष भर आवागमन और अधिक सुगम हो गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में पंजाब के हॉकी ओलंपियन राजेंद्र सिंह सीनियर के प्रयासों की सराहना की थी। एक रिपोर्ट।
3: ओलंपियन राजेंद्र सिंह 1980 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली इंडियन हॉकी टीम का हिस्सा थे। उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 1982 चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था, जिसे इंडिया ने राजेंद्र सिंह द्वारा 3 पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान से जीता था और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। वह 1990 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई से जुड़े और अपना कोचिंग करियर शुरू किया। उनके समय में सब जूनियर और जूनियर हॉकी टीमों ने कई नेशनल अवार्ड जीते। उन्होंने आकाशवाणी को बताया कि राउंड ग्लास अकादमी पंजाब में 60 हॉकी अकादमियां चला रही है, जिसमें 6 से 8 साल की उम्र के लड़कियों समेत 3,000 खिलाड़ी इस राष्ट्रीय खेल की बारीकियां सीख रहे हैं।
4: मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने मन की बात में मेरा जिक्र किया और मुझे मेरे काम की सराहना की। मैं पिछले 5 वर्षों से राउंड ग्लास स्पोर्ट्स अकेडमी के साथ युवाओं को हॉकी को आगे ले जाने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी के ये प्रेरणादायी शब्द सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे जैसे और साथी कोचेस ओलंपियन को भी प्रेरणा दें।
3: उन्होंने भारत के लिए मजबूत हॉकी टीम बनाने के लिए काबिलियत वाले युवाओं को कोचिंग देते रहने का भरोसा दिया। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
5: जापान एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लवलीना ने चीन की बाउ जी को हराकर भारत के लिए महिला मुक्केबाजी में 12 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। ये एशियाई खेलों में महिला मुक्केबाजी में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक है। भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। हालांकि पुरुष रिकर्व टीम को फाइनल में दक्षिण कोरिया से हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। पुरुषों की सेपक टकरा के सेमीफाइनल में भारत को जापान से हारकर कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। भारत पदक तालिका में 72 पदकों के साथ 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। इनमें 12 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सभी पदक विजेताओं को बधाई दी है।
0: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों और गुजरात तथा मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए मौसम की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मित मच्छार से बात की। उन्होंने कैप्टन की बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। कृतज्ञ देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। एशियाई खेलों में लवलीना बोरगोहाई ने महिला मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम

0: वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीने वीव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है। लेकर आई हूँ मैं आपकी रेडियो हमसफर कार्यक्रम। जी हाँ, एक ही कलाकार। और आज आपके साथ, जिस तरह मैंने आपको बताया, मैं हूँ आपकी रेडियो हमसफर सोनाली। और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसी एक्ट्रेस की जो 60 और 70 के दशक की बला की खूबसूरत हसीना, जिसने अपने करियर में हर तरह के रोल निभाए। हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री बनने के साथ सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किन की। जरा इस गाने को सुने और फिर मुझे बताएं कि मैं किन की बात कर रही हूँ। वैसे ये हिंट मैं आपको दे भी चुकी हूँ पिछले कार्यक्रम में, तो बता दूँ कि इनका जन्म आज ही के दिन 2 अक्टूबर 1942 को मुंबई की सांता क्रूज में हुआ था। तो बस इस गाने को सुनिए और मुझे बताइए मैं किन की बात कर रही हूँ।

फिल्म बहारों के सपने, आवाज लता मंगेशकर की। और हमारी आज की कलाकार, जी हाँ, आशा पारेख। बहुत चुलबुली, शोख और बेहद खूबसूरत हसीना आशा पारेख, जो नृत्य की पारंगत कलाकार है ना। देखिए, इस खूबसूरत हसीना जिसने अपना करियर

ऐसी जगह से शुरू किया जिसमें उनके पहले हीरो थे कौन, शमी कपूर। और देखिए उस वक्त बहुत छोटी थी, लेकिन क्या खूबसूरत लगी हैं वो उस फिल्म में भी। मैं किस फिल्म की बात कर रही हूँ आप मुझे जानते भी हैं और मुझे बताएंगे भी, ये मुझे पूरा यकीन है क्योंकि आप लोग बहुत इन्फॉर्म्ड हमारे लिसनर्स हैं। और जैसे ही मैंने आपसे पूछा कि मैं किन की बात कर रही हूँ, तो बस आप लोग उनके की मेल के ज़रिए मुझे पता चल गया कि आप लोग जान चुके हैं हम आशा पारीख की आज बात कर रहे हैं। और आप सभी के मेल मैं शुमार करूंगी, लेकिन उसके पहले ज़रा सा इन महोदया के बारे में आपको बता दूं। जी हाँ, हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री बनने के साथ इन्होंने सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली। और फिर इसके बाद ना, आपको पता है आशा पारेख का नाम उन कलाकारों में लिया जाता है जिन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई। उनकी अदाकारी, डांस और स्क्रीन प्रेजेंस के लोग ना दीवाने थे। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था दोस्तों जब ना उन्हें एक फिल्म के हीरोइन के तौर पर सिर्फ 11 रुपये साइनिंग अमाउंट मिला था, और कुछ दिनों की शूटिंग के बाद उन्हें फिल्म से ये कहकर निकाल दिया गया कि वह स्टार मटेरियल नहीं है। अजीब नहीं लगता सुनकर? देखिए अब हमारी स्टार है आशा पारेख और आज भी एक चमकता सितारा है। तो हम बात कर रहे हैं उनकी सबसे पहली फिल्म की, तो आइए सुनते हैं दिल देखो फिल्म का ये गाना।

फिल्म दिल देके देखो और आशा भोसले के साथ कौन थे, मोहम्मद रफी। और ये शोख चंचल हसीना आशा पारेख, जिनका आज जन्मदिन है, उनके ऊपर आज हमारा कार्यक्रम केंद्रित है, एक ही कलाकार। और देखिए हमारे साथ कितने सारे दोस्त जुड़ गए हैं, तो आइए देखते हैं ना कौन है। ये हैं तुलसी मस्कीन जी, ये लिख रहे हैं गोवर्धन कॉलोनी बिहार, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से। इनके साथ है वीना मस्कीन, डब्बू सम्राट, चैतन्य मस्कीन। चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। और इन्हें अच्छा लगा ये गाना, बहुत

शुक्रिया। और ये लिख रहे हैं आशा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। शुक्रिया। फिर देखिए ये है मेरठ कैंट दिग्दर्शन गौर, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन गौर और कविता गौर, और इन्हें कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। और देखिए आप बने रहिए हमारे साथ, और भी अच्छे अच्छे गाने हैं इसमें। फिर एक ही कलाकार कार्यक्रम में आज सुप्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारेख जी पर केंद्रित कार्यक्रम में आशा जी की फिल्मी सफरनामा पर रोचक जानकारी के साथ बेहतरीन गीत सुनने को मिला। ये लिख रहे हैं हीरामणि वर्मा दतरंगी भाटापारा से, शुक्रिया। फिर ये है छत्तीसगढ़ पल्हारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, और इन्हें भी प्रस्तुति अच्छी लग रही है, धन्यवाद। फिर है ये वड़िंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, नमस्कार लिख रहे हैं, आपको भी नमस्कार। हरजिंदर छिंदा जी, जसविन जसवीर जस्सी, सीता और गीता, गांव नधाना, और ये है धर्मेंद्र चीपा जी, शुक्रिया। फिर आपने इतना अच्छा अच्छा लिख दिया है हमारे श्रोताओं के लिए भी, तो इसके लिए आपका धन्यवाद। आप भोपालगढ़ राजस्थान से हैं, आपके साथ है कपिल चीपा, ईशान चीपा और पूजा परिहार, और धन्यवाद। फिर है तुलसी मस्किन जी, आपका मेल शुमार हो गया तो धन्यवाद दोबारा करने के लिए। सुदर्शन मुखी जी हैं और आशा पारेख को पहचान गए हैं, इनके साथ अनिता मुखी, सिमरन मुखी। फिर है ये ताज मोहम्मद जी, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से, इनके साथ है गुलाम साबिर राही, मिराज जहां। और देखिए मैं आपको इतना बताऊं, राजकुमार डूडी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, इनके साथ है प्रमोद कुमार डूडी, गांव फरासी, जिला हिसार से। आशा पारेख जी के ना गाने इतने सारे हैं कि किसको शुमार करूं, किसको छोड़ूं, सच में आज ये बहुत जद्दोजहद का मेरे लिए काम था, लेकिन फिर भी कोशिश करके उनके कुछ ऐसे ऐसे गाने आपके लिए लेकर आई हूं जिसमें आपको उनका एक अलग ही किरदार नजर आएगा। एक फिल्म आई थी उनकी, उसमें ये बहुत अलग सा उन्होंने किरदार निभाया था, और इसमें ना वो एक जिद्दी लड़की की भूमिका में थी। देखिए इस गाने को आप सुनिए और फिर याद कीजिए स्टेज का वो परफॉर्मेंस जिसमें आशा पारेख डांस कर रही हैं, और इसमें वो अपना इस फिल्म का जो वो उन्होंने किरदार निभाया था उसमें उनका एक अलग सा ना एक हाथ का एक एक्शन था, तो वो भी उन्होंने किया जिसमें नाक के नीचे से हाथ को ऐसे निकाल के ले जाती है, आपको वो ना नजर आएगा, आपको शायद अगर आपने ये गाना देखा तो याद भी आएगा। तो आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत।

तो याद आया, एस डी बर्मन का म्यूजिक है इस फिल्म में, और फिल्म है जिद्दी, और इसमें एक जिद्दी लड़की की बहुत खूबसूरत भूमिका उन्होंने निभाई थी, और हमेशा एक डायलॉग बोलती थी, बहुत देखे, याद आया। और इसमें जॉय मुखर्जी उनके साथ थे। तो देखिए, अब बहुत सारे गाने हैं, इसलिए हर गाने की ना मैं आपको थोड़ी थोड़ी सी झलक सुनाऊंगी, ताकि हम आशा पारेख जी के बहुत सारे गाने यहाँ पर शुमार कर सकें। तो आपको ये भी बता दूँ हमारे साथ कौन कौन जुड़े हैं। ये हैं संदीप मक्कर और ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, और हमारे साथ ये लोग जुड़े हैं कमाल शाहनी पिंगावाला चौक गुराया जालंधर से। हमारे साथ हैं इसाक मोहम्मद, इनके साथ हैं छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इजहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, निलुफर फातिमा, और फिर उसके बाद में हमारे साथ हैं सुदर्शन मुखी जी की मैं मेल आपको बता चुकी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी हमारे साथ जुड़ी हैं, फिर संजय ढिंगिया जी हमारे साथ हैं, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया, और फिर हमारे साथ हैं आशा पारेख के गाने इन्हें अच्छा लग रहा है, ये कौन है, मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवन्या गोस्वामी, उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, फिर ये है हमारे साथ मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा, और इन्हें ये हमारे संग है पद्मपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से। फिर देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं आशा पारेख जी की, तो एक ऐसी फिल्म तीसरी मंजिल, फिर शमी कपूर, और शमी कपूर के साथ उन्होंने जो जो फिल्म की है, आपको पता है एक इंटरव्यू में वो बता रही थी कि वो शमी कपूर जी को पापा जी कहकर बुलाती थी, लेकिन उनकी हीरोइन का उन्होंने रोल किया है, और वो उनसे उम्र में दोनों का फासला काफ़ी था उम्र का, लेकिन उन्होंने उनके साथ जो भी फिल्में की बहुत बेहतरीन की। हम यहाँ पर आपको तीसरी मंजिल का एक गाना लेकर आए हैं आपके लिए, जिसको आप सुने, और फिर हम दूसरे गाने तक आपको लेके जाएंगे।

जी हाँ, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गाना है, फिल्म है तीसरी मंजिल। और आपको बता दूँ, आज हमारी जो आज की कलाकार हैं आशा पारीख, उन्होंने बहुत कम उम्र में मंच पर नृत्य करना शुरू कर दिया था, और शायद यही वह मंच था जिसने एक दिन उन्हें फिल्मों तक पहुंचा दिया। बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं कि प्रसिद्ध फिल्मकार बीमल रॉय ने उन्हें एक मंचीय कार्यक्रम में नृत्य करते देखा और उनकी प्रतिभा से प्रभावित हुए। इसके बाद ना उन्होंने उन्हें बाल कलाकार के रूप में फिल्म बाप बेटी में रोल दिया। लेकिन आशा पारेख का फिल्मी सफ़र इससे भी पहले शुरू हो चुका था। 1952 की फिल्म आसमान में उन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया था। फिर कुछ और फिल्मों में उन्होंने बाल

भूमिकाएं निभाई, लेकिन शुरुआती अनुभव बहुत आसान नहीं थे उनके लिए। एक फिल्म के असफल होने के बाद आशा ने कुछ समय के लिए फिल्मों से दूरी बनाई और पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। शायद उस समय उन्हें नहीं मालूम था कि यह विराम बहुत लंबा नहीं होगा। किशोरावस्था में ही उन्होंने दोबारा फिल्मों की ओर रुख किया और फिर आया 1959 का साल और फिल्म दिल देके देखो, उसका गाना हमने आपको सुनाया ही है। और फिर इसके बाद में ना इन्होंने नासिर हुसैन के साथ बहुत काम किया। और देखिए हम आपको यहाँ पर एक ऐसा गाना आपका उनका सुनाने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने काम किया था और फिल्म है कारवां। हाँ, याद आया ना, जितेंद्र जी के साथ। अब इस फिल्म के गाने तो सारे बहुत मशहूर हुए, लेकिन आज मैं आपको एक ना ये वाला गाना ज़रूर सुनाना चाहूँगी जो आशा भोसले की आवाज़ में है और इसमें आशा पारेख जी ने बहुत अच्छा ना निभाया है इस गाने को। आप इस गाने को सुनिए, फिर हम बात करते हैं।

याद आया आपको आशा पारिक? और इस गाने में आशा भोसले की रेंज भी, क्या खूबसूरत कंपोजिशन आली बर्मन की फिल्म कारवां। और हमारे साथ कौन जुड़े हैं, ये हैं आशा पारिक, बेहतरीन कलाकार लिख रहे हैं गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से, और बिल्कुल अनडाउटेडली सच में बेहतरीन कलाकार। फिर है पंकज शर्मा, और दीदी जी आज के कलाकार प्रोग्राम सुन रही हैं और गीत बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, नमस्कार कह रही हैं, थैंक यू। आप मॉडल टाउन करनाल से हैं, इनके साथ हैं सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, किरण ठाकुर और डॉक्टर सना इब्राहिम और अच्छा राम जी लिखा हुआ, राम राम आपको भी सर। फिर यहाँ ये हमारे साथ जिला

मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह। और फिर हमारे साथ हैं नावकर परिवार है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, पीएस नावकर, निर्मला नावकर, विशाल नावकर। इनके साथ हैं मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान ताड़े, आशीष मुन्हेकर। अब देखिए हम अपने कार्यक्रम के आखिरी पायदान पर आ गए हैं, तो चलते चलते आपको बस इनके बारे में इतना बता दूं आशा पारिक जी के बारे में कि इन्होंने जो बेहतरीन इनकी फिल्में हैं उनमें हैं जब प्यार किसी से होता है, फिर वही दिल लाया हूँ, जिद्दी, मेरे सनम, तीसरी मंजिल, लव इन टोक्यो, आए दिन बहार के, उपकार, कन्यादान, शिकार, आया सावन, झूम के। और इन्होंने दो बदन फिल्म में इन्होंने राज खोसला के निर्देशन में बहुत अलग ही एक किरदार निभाया था। उसके बाद है इनके इनके बारे में हम बात करते हैं तो का सबसे चमत्कार पड़ाव जो था वो तीसरी मंजिल, लव इन टोक्यो, कारवां और कटी पतंग। और इसके अलावा आप ये भी जानना चाहेंगे और मैं आपको बताना भी चाहूँगी कि इन्होंने दूरदर्शन और टेलीविज़न के लिए निर्देशन और निर्माण भी किया था। कोरा कागज़ इनका एक बहुत अच्छा धारावाहिक था। और इसके अलावा 1998 से 2001 तक आप केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष रहीं। फिर इसके अलावा आपको बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार भी मिले हैं और उनकी आत्मकथा द हिट गर्ल जो 2017 में प्रकाशित हुई है इसमें खालिद मोहम्मद के साथ उन्होंने लिखा है। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि आशा पारेख जी ने अपने जीवन में बहुत बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ इन्होंने अपने जीवन में अकेले संघर्ष भी किया। 1992 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री दिया, 2002 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उन्हें मिला, 2005 में उन्हें 2006 में और 2005 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आईफा से भी मिला और फिर उन्हें 2020 में दादा साहिब फाल्के पुरस्कार मिला। और देखिए 30 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उन्हें 68वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया। तो बस चलते चलते आशा पारिक जी का ये एक गाना आपकी नज़र।

हमारे साथ जो दूसरे दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, संदीप मक्कड़ जी, संजय ढींगिया जी, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, मुकेश कश्यप जी जिला मुरादाबाद से भी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।

जी हाँ दोस्तों, आज हमने बात की एक ही कलाकार में हमारी आज की बर्थडे गर्ल आशा बारिक जी के बारे में, और ये गीत और ये कार्यक्रम आपने तय किया आपकी रेडियो हम सफर सोनाली के साथ। तो इस कार्यक्रम से अब मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।

मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, दोपहर के 3 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

0: सामिन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 2 अक्टूबर है, यानी महात्मा गांधी का यौम पैदाइश। आज ही के दिन हमारे मुल्क के दूसरे वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री का भी यौम पैदाइश है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। हिंदुस्तान की आजादी के अजीम रहनुमा, जिन्हें दुनिया भर में अदम तशद्दुद और अमन की अलामत माना जाता है। सामईन, बाबा कौम महात्मा गांधी हिंदुस्तान की वो अजीम हस्ती हैं जिन्हें हिंदुस्तान की तारीख में आज़ादी वतन के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। आप ही की क़यादत में हिंदुस्तान की आवाम ने अंग्रेज़ों के जुल्म सितम को ललकारा और इन्हें हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आज़ादी की राह में न जाने कितने मुश्किल मरहले पेश आए, लेकिन गांधी जी ने हमेशा हिम्मत और हौसले से काम लेकर अपनी कौम और मिल्लत की आबरू बचाए रखी। वो न सिर्फ बेक वक्त अच्छे और सच्चे सियासतदान थे, बल्कि वो अपने दिल में बिला तफरीक मजहब व मिल्लत और इंसानियत का दर्द भी रखते थे। गांधी जी ने हमेशा अमन व आश्ती और भाईचारे पर जोर दिया। महात्मा गांधी का नजरिया अमन आलम, आइए सामाइन इस मौजू पर सुनते हैं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ की ये तकरीर।
1: महात्मा गांधी भारत ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी फिक्र, फलसफा हयात, मुसबत किरदार और पुरम मजाहरे के लिए जाने जाते हैं। गांधी जी ने अपने गैर मामूली कारनामों से पूरी दुनिया को अपनी जानिब मुतवज्जह किया है। शायद ही कोई मुल्क ऐसा हो जहां उनके नज़रिए की तकलीद न की गई हो, या फिर उसमें पिन्हा राज को समझने की कोशिश न की गई हो। आज भी दुनिया को गांधी जी के उस नज़रिया को समझने और उस पर अमल करने की ज़रूरत है, ताकि अमन का माहौल बरकरार रहे। भारत आने वाले गैर मुल्की सयाह की दिलचस्पी जिस तरह लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार देखने में होती है, उसी तरह वो राजघाट जाकर गांधी जी की समाधि को भी देखते हैं। बड़े बड़े ममालिक के सरबराहान भी गांधी जी की समाधि पर जाकर अकीदत के फूल चढ़ाते हैं और उनके तारीखी इकदाम को याद करते हैं। गांधी जी ने अपनी तकरीरों, तहरीरों में जो बातें कहीं, उन पर अमल भी किया। पहले खुद अमल किया, फिर दूसरों को अमल करने की तलकीन की। देखते देखते उनकी बातें लोगों के दिलों में घर करने लगीं और एक फर्द रफ्ता रफ्ता एक इदारा में तब्दील हो गया। गांधी जी की शख्सियत के हज़ार पहलू हैं और किसी भी पहलू पर ज़खीम किताब लिखी जा सकती है और घंटों गुफ्तगु की जा सकती है। मैं आज गांधी जी के नज़रिया अमन आलम पर मुख्तसर सी गुफ्तगु में वाजह करने की कोशिश करूंगा कि उनका नज़रिया अमन आलम क्या था और मौजूदा अहद में इसकी क्या अहमियत है। गांधी जी के मज़कूरा नज़रिए पर गुफ्तगु से कबल उनकी ज़िंदगी के चंद अहम औराक पलट लिए जाएं तो इससे नज़रिया पर गुफ्तगु भी आसान हो जाएगी और एक दूसरे का सिरा भी मिल जाएगा। क्योंकि किसी भी शख्स का किरदार बहुत पहले से बनना शुरू होता है और उसकी शख्सियत को बनाने में वो छोटे छोटे वाक़यात बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में पैदा हुए। उनके वालिद करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे। उनकी वालदा पुतलीबाई एक मजहबी खातून थी। गांधी जी की तालीम पोरबंदर के ही एक स्कूल से शुरू हुई जो लंदन से बैरिस्टर की डिग्री लेने के बाद ख़त्म हुई। बैरिस्टर की डिग्री हासिल करने के बाद गांधी जी भारत अपने वतन लौटे और मुंबई में वकालत शुरू की। यहाँ तक गांधी जी की ज़िंदगी वैसी ही थी जैसी आमतौर पर लोगों की

0: वो किसी भी कामयाबी को तशद्दुद के जरिए पाने के खिलाफ थे। गांधी जी अपने मजहब पर कामिल यकीन रखने के साथ ही दूसरे मजाहिब का भी एहतराम करते थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी ज़ात, किसी फ़िरका, किसी मजहब के ताल्लुक से कोई ऐसी बात नहीं कही जो किसी को नागवार गुजरी हो। गांधी जी के ताल्लुक से मारूफ मवर्रिख काका कालेकर ने कहा है कि गांधी जी सभी मजाहिब को मानते थे क्योंकि सभी मजाहिब में अलग अलग तरीक़ा से एक ही बात कही गई है। गांधी जी के इन पैगाम और इकदाम में ही नज़रिया अमन आलम पोशीदा है।
1: अभी आपने अमन आलम मौजू पर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ की ये तकरीर सुनी। सामईन, गांधी जी आवाम को बेदार करना चाहते थे ताकि वो अंग्रेज़ों के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा सकें। उन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान को बरतानवी साम्राज्य की ग़ुलामी से आज़ादी नहीं दिलाई, बल्कि पूरी दुनिया को अमन और सच्चाई, सत्याग्रह का एक ऐसा रास्ता दिखाया जो अपनी मिसाल आप है।

उनकी तहरीकों की खास बात ये थी कि इनमें हथियारों का नहीं बल्कि सब्र और पुरअमन एहतजाज का इस्तेमाल किया गया। गांधी जी सादगी पसंद थे, खुद चरखा काटते और खुद कपड़े बनाते। महात्मा गांधी सिर्फ एक सियासी रहनुमा नहीं थे बल्कि एक अजीम फलसफी और इंसानियत के सच्चे हमदर्द थे। उनका यौम पैदाइश 2 अक्टूबर दुनिया भर में आलमी यौम अदम तशद्दुद के तौर पर मनाया जाता है। उनका यह कौल आज भी मशहूर है कि

और ऑल इंडिया रेडियो में बापू स्टूडियो के नाम से जाना जाता है। जब गांधी जी स्टूडियो में दाखिल हुए तो उन्होंने हैरत से कहा कि मैं खुदा की एक मौजाना ताकत देख रहा हूँ। उन्होंने रेडियो को एक ऐसी ताकत करार दिया जो फासलों को मिटाकर दिलों को आपस में जोड़ सकती है। इसीलिए 12 नवंबर का ये दिन गांधी जी के इसी तारीखी खिताब की याद में पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे यानी अवामी नशरियाती दिन के तौर पर मनाया जाता है।

स्वामी हिंदुस्तान के दूसरे वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री का यौम पैदाइश भी 2 अक्टूबर को ही है। उनका दौरे हुकूमत अगरचे बहुत मुख्तसर यानी 18 माह तक रहा, लेकिन ये तारीखी कारनामों से भरपूर था। तो उन्होंने कौम की हौसला अफजाई की। जय जवान जय किसान का मशहूर नारा इन्हीं का दिया हुआ है, जिसने फौज और किसानों दोनों में नई रूह फूंक दी। वो अपनी पूरी जिंदगी सादगी दयानतदारी के साथ जिए। उनकी जिंदगी इस बात का सबूत है कि इख्तदार में रहकर भी किस तरह एक इंसान सादा और ईमानदार रह सकता है। वो मुल्क कौम के लिए एक मिसाल भी थे। वो अपनी पूरी जिंदगी सादगी दयानतदारी के साथ जिए। उनकी जिंदगी इस बात का सबूत है कि इख्तदार में रहकर भी किस तरह एक इंसान सादा और ईमानदार रह सकता है। वो मुल्क कौम के लिए एक मिसाल बने।

तो सामाइन, ये था हमारा आज का खुसूसी प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान फरहीन इकबाल को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।

उर्दू मजलिस कार्यक्रम अभी आपने सुना। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर।

ये आकाशवाणी है। अब हम आपको गांधी स्मृति और दर्शन समिति नई दिल्ली लिए चलते हैं, जहां से आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती के अवसर पर आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा एवं भक्ति संगीत का सजीव प्रसारण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं अशोक श्रृंगारी और पूनम आहूजा। आइए गांधी स्मृति और दर्शन समिति

0: नई दिल्ली चलें।
1: नमस्कार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती एवं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति 5-30 जनवरी मार्ग बलिदान स्थल से मैं अशोक शंगारी अपनी साथी कमेंटेटर पूनम आहूजा और कार्यक्रम अधिकारी प्रदीप अग्रवाल आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं।
2: जी हाँ, तो इस समय हम मौजूद हैं नई दिल्ली स्थित ऐतिहासिक गांधी स्मृति में, जहां आज 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर देश उन्हें श्रद्धा और सम्मान के साथ याद कर रहा है। सच कहें तो गांधी स्मृति का ये परिसर आज एक अलग ही भाव से भरा हुआ है। वातावरण में एक ओर श्रद्धा और शांति है तो दूसरी ओर देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए विशिष्ट अतिथि हम देख पा रहे हैं। गणमान्य व्यक्ति हैं, सम्मानित हस्तियां हैं और इन सबकी उपस्थिति इस अवसर को और गरिमामय बना रही है। श्रोताओं, ये वही धरती है जहाँ महात्मा गांधी ने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए और जहाँ से उनकी स्मृतियाँ आज भी हमें सत्य, सेवा, सादगी और अहिंसा का संदेश देती हैं। और आज इस विशेष अवसर पर हम सभी, पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व कृतज्ञ होकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यानी बापू को याद कर रहा है, उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है।
3: बहुत बहुत शुक्रिया। और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज यहाँ से सजीव प्रसारण लेकर हम आकाशवाणी की ओर से आप सबके समक्ष हैं और बहुत ही एक सुंदर यहाँ वातावरण बना हुआ है। चारों ओर हरा भरा बगीचा, स्कूली बच्चों का उत्साह, बड़ी संख्या में स्कूलों के बच्चे, बड़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं और यहाँ का जो वातावरण है बिल्कुल बहुत सुंदर बना हुआ है। और मैं देख रहा हूँ कि बच्चों ने श्वेत कपड़े पहने हुए हैं, सफ़ेद रंग की टोपी और उस पर बहुत ही जी। तो हम जिक्र कर रहे हैं, यहाँ आज भक्ति संगीत का कार्यक्रम भी होगा जिसे प्रस्तुत करेंगे भाई बलदीप सिंह, सुप्रसिद्ध गायक, उनके भजन होंगे। और थोड़ा सा हम इस परिसर के बारे में आपको परिचय दे दें। ये पहले पूर्व में जीडी बिरला हाउस, जिसे बाद में के बिरला जी ने भारत सरकार को सौंप दिया और महात्मा गांधी जी का ये अंतिम 144 दिन महात्मा गांधी जी ने, हमारे राष्ट्रपिता ने, यहीं पर बिताए। प्रतिदिन यहाँ पर प्रार्थना सभाएं होती थी और ऐसे में ही एक दिन आया, एक पल आया जब शाम को 5:15 पर 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की गोली मारकर नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी थी।
2: तो अशोक जी, हम अपने श्रोताओं को कार्यक्रम की रूपरेखा दे देते हैं कि यहाँ पर दिल्ली और एनसीआर के 50 से ज़्यादा स्कूलों के बच्चे आए हैं संगीत में श्रद्धांजलि देने के लिए और उसके बाद धार्मिक ग्रंथों से प्रार्थना का क्रम रहेगा। सबसे पहले बौद्ध प्रार्थना होगी, फिर बौद्ध प्रार्थना तिब्बती होगी, फिर ईसाई प्रार्थना, पारसी प्रार्थना, बहाई प्रार्थना, यहूदी धर्म प्रार्थना। ये लीजिए, बच्चों ने ये जो क्रम है शुरू कर दिया, बच्चे यहाँ संगीत में श्रद्धांजलि देना शुरू कर चुके हैं। बहुत ही सुंदर मधुर आवाज़ और ये भाव जैसे बापू को अपने मन में बसाया हुआ है। जी, सीताराम, जय सीताराम, मधुर ध्वनि, मधुर स्वर और साथ ही बांसुरी।

0: की ये धुन, आइए इसे सुनते हैं।
1: बिल्कुल पूनम, यहाँ का माहौल बहुत ही सुंदर, वातावरण सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। वातावरण पूरी तरह गांधीमय हुआ है।

0: तुम आशा विश्वास हमारे, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति और शुरुआत इस संगीत में श्रद्धांजलि के इस भजन के साथ, जो मन में विश्वास को फिर से जागृत करता है, उम्मीद को लेकर आता है।
1: स्कूल के बच्चों की ये प्रस्तुति और इसके

0: आज हम अगली प्रस्तुति के साथ अपने श्रोताओं को वाकिफ करेंगे। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता, उनके सपनों का भारत, विकास की नई राह पर चलता भारत, नई राह नई डगर पर हम हैं और आगे बढ़ रहे हैं, यही हमारा आज के दिन संकल्प होना चाहिए।
1: बिल्कुल यही संकल्प होना चाहिए अशोक जी। और ये देखिए अगली प्रस्तुति जो है वो और सुंदर, बच्चे इतने उत्साह से और इतने प्रेम से बैठे हैं, उनके चेहरे पर जो मुस्कान है ये देखते ही

0: On the keyboard we have
1: इंसाफ की डगर पे बच्चों चलो और दिखाओ ये देश है हमारा नेता हो आप सभी के और आने वाला समय इन्हीं बच्चों का है ये देश इनका है इसीलिए गांधी जी जो हैं वो शिक्षा व्यवस्था पर काफी जोर देते थे

0: उनका उद्देश्य था ऐसे नागरिक तैयार करना जो आत्मनिर्भर हों, जिनमें नैतिकता का मूल्य हो, श्रमशील हों और सामाजिक रूप से समाज के प्रति उत्तरदायी हों। गांधी जी की शिक्षा व्यवस्था का मूल आधार नैतिकता और चरित्र निर्माण था। इस शिक्षा व्यवस्था में हाथ, हृदय और मस्तिष्क तीनों के समन्वित विकास पर जोर दिया गया था।
1: बिल्कुल, और यहाँ पर इस समय दिल्ली और एनसीआर के 50 से ज्यादा स्कूलों के बच्चे हैं जो इस संगीत में श्रद्धांजलि के माध्यम से हम सबको याद दिला रहे हैं वही नैतिक मूल्य, वही भाव और जीवन में उसे अपनाना। एक और प्रस्तुति, अगली प्रस्तुति।

0: मीठी सी हवा है जहाँ, फूलों की सभा है जहाँ, वही धूल मेरे लिए सोना है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही मीठे
1: स्वर, रिक्वेस्ट और बहुत ही मधुर गैदरिंग टू काइंडली
0: स्वर में बच्चों ने इसे गाया। ऐसा लग रहा है जैसे सारा वातावरण इनकी आवाज का साथ दे रहा है। पेड़ों से छनकर आती शाम की हल्की धूप, फूलों की सुगंध और शांत परिसर जैसे इस ऐतिहासिक स्थान की स्मृतियों को अपने साथ लिए हुए है। और हर तरफ इन बच्चों के इस मधुर गान के साथ जो अतिथि हैं वो मंत्रमुग्ध नजर आते हैं, जैसे इस आवाज में वो खो गए हैं। बहुत ही शांत वातावरण, श्रद्धा का भाव, साथ ही कुछ लोग आपस में बात करते हुए जैसे अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। कहीं बापू की स्मृतियां हैं, कहीं पर नैतिक चिंतन, और कहीं पर सिर्फ शांत रहकर इन बच्चों को सुनना।
2: जी पूनम, बिल्कुल ऐसा लग रहा है सभी हृदय की गहराइयों से पल पल प्रति पल नमन कर रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को।

0: for this wonderful prayer of peace by the children. I request everybody to kind of...
1: इस समय स्कूल के बच्चों ने वातावरण एकदम संगीतमय कर दिया है. धारा अनंत है, वसुंधरा अनंत है, आकाश अनंत, क्षितिज अनंत, प्रणय अनंत हो, यही है प्रार्थना प्रभु की. विश्व शांति हो, हमें ये आस दो, हमें विश्वास दो. हमारी आस्था, हमारी मानवता डिगे नहीं, झुके नहीं, सदा बुलंद हो.
2: जी बिल्कुल अशोक जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने. बच्चों के चेहरे पर उत्सुकता भी है, कहीं उनके मन में ये जो विचार हैं वो उमड़ते नज़र आ रहे हैं, तो कहीं वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन विचारों को अपने जीवन में ढाला कैसे जाए. पर हर कोना यहाँ का आज एक कहानी कहता महसूस होता है, और ऐसा लगता है कि हर कोई अपने आप से शायद ही प्रश्न कर रहा है कि बापू केवल हमारे इतिहास का हिस्सा है या आज भी हमारे जीवन का हिस्सा है. और आज जब बच्चे ये नमन कर रहे हैं, अतीत को नमन कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे वो उनके मूल्यों को जीवंत रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हम उसी पल में जैसे ठहर गए हों.
1: जी बिल्कुल, भक्ति संगीत के सुरों में यहाँ का वातावरण, जोश और जज्बा बहुत ही सुंदर हो रहा है, और कुछ ही पलों में हमारे आज के गणमान्य माननीय प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और अन्य गणमान्य सभी यहाँ पर पधारने वाले हैं. संगीत में ये वातावरण कुछ ही पलों में भक्ति संगीत में भी डूब जाएगा. भजन प्रस्तुत करेंगे भाई बलबीर सिंह. और अब सभी धर्मों के जो उनके गुरु हैं यहाँ पधार चुके हैं, उनके प्रतिनिधि यहाँ पधार चुके हैं. अब ये वातावरण एक दूसरा रंग, एक दूसरा रूप लेने जा रहा है. यहाँ पर सभी धर्म गुरु अपने अपने धर्म से बहुत ही सुंदर पाठ, ग्रंथ और अन्य संगीतमय भजन प्रस्तुत करेंगे.
2: बिल्कुल ठीक कहा आपने अशोक, और हम सभी जानते हैं, हम सभी इस बात के साक्षी हैं, अनुभवी हैं, कि जहाँ बापू शब्द आत्मीयता को दर्शाता है, अपनेपन का पर्याय है, मर्म है, वहीं महात्मा यानी महान आत्मा एक सम्मान सूचक शब्द है. और इस समय यहाँ पर हम देख
1: जी हाँ,
2: रहे
1: हम
2: हैं,
1: देख रहे हैं हमारे गांधी स्मृति के उपाध्यक्ष श्री विजय गोयल जी अपने कर कमलों से सभी कलाकारों को शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान करते हुए, उनका स्वागत करते हुए.
2: जी हाँ, और ये स्वागत का क्रम जारी है और वो आगे बढ़ रहे हैं. जो प्रसिद्ध गायक भाई बलदीप सिंह हैं, जो आज की यहाँ भक्ति संगीत और रामधुन की प्रस्तुति करेंगे, उन्हें भी उन्होंने सम्मानित किया, और अब उनकी टीम की तरफ आगे बढ़ते हुए सभी, और बहुत ही सौम्य है वातावरण, और प्रोग्राम का ये सिलसिला आगे चलते हुए.
1: बिल्कुल, पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्री विजय गोयल जी.
3: दोस्तों

印度代理广播电台，这次普通话节目播送到这里，谢谢大家收听，再会。

और अभी आप सुन रहे थे, हम सभी साथ में शामिल थे रामधुन के, जो श्री लक्ष्मण आचार्य ने 17वीं शताब्दी में लिखी एक वैष्णव

0: बापू की हर सभा में साक्षी होने वाले राग हैं।
1: और कार्यक्रम समापन की ओर
2: आज की बहुत ही प्रार्थना सभा हम समाप्त करते हैं।
1: भक्तिमय कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी कार्यक्रम में पूरी तरह से तल्लीन है।
0: और अब दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक होते हुए अभिवादन करते हुए, सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए, विनम्रता से सबकी ओर बढ़ते हुए प्रार्थना सभा में जो सम्मिलित थे वो सभी हाथ जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति सभी सम्माननीय धर्म गुरुओं का और साथ ही साथ सभी कलाकारों का, बलदीप सिंह जी का और उनकी सहयोगी टीम की ओर आगे बढ़ते हुए उनको सम्मान देते हुए और सभी बहुत मंत्रमुग्ध हैं। बच्चों का उत्साह आज के इस कार्यक्रम में अलग से बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है।
0: और अब भाई बलदीप जी से कुछ वार्ता करते हुए माननीय प्रधानमंत्री यहाँ पर, बच्चे उत्सुकता से उनका इंतजार कर रहे हैं कि वो इस ओर मुड़ें, उनकी ओर देखें।
1: बिल्कुल पूनम, प्रधानमंत्री जी अब कुछ ही पलों में बलदीप जी और उनके सहयोगी कलाकारों से मिलते हुए आगे बढ़ते हुए और बलिदान स्थल से आगे बच्चों के बीच पहुंचते हुए,
0: बच्चे अपने अपने स्थानों से खड़े हो गए हैं, जैसे कि सभी बच्चे बस एक बार उनके नज़दीक जाना चाहते हैं।
1: जी जी,
0: और अनुशासन बनाए रखने के लिए जो अधिकारी हैं वो बच्चों से कह रहे हैं, लेकिन बच्चे बहुत ही उत्सुक हैं और उनकी ऊर्जा देखने को बनती है।
1: बच्चे एक्चुअली चाहते हैं कि प्रधानमंत्री से सभी मिलने, उनमें होड़ मची हुई है, बहुत लोकप्रिय हैं हमारे प्रधानमंत्री।

0: कोई भी राष्ट्रीय पर्व होता है, उत्सव होता है, कार्यक्रम होता है, सिक्योरिटी के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन प्रधानमंत्री हमेशा बच्चों से रूबरू होते हैं। उसी प्रकार से एक बार फिर हमारे बीच में माननीय प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति।
1: जो देखिए बच्चे बस एक के बाद एक आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नज़दीक पहुंच सके, हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ अभिवादन कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं
0: सभी
1: आगे
0: बच्चों
1: बढ़ते
0: को
1: बढ़ते।
0: शुभकामनाएं देते हुए, उनका अभिवादन करते हुए और साथ ही साथ अभिवादन स्वीकार करते हुए, और बच्चों में अब आवाज़ें आ रही हैं, बच्चे खिलखिला रहे हैं, खुश हो रहे हैं। उनके 2 घंटे के प्रोग्राम में ये पल हमेशा के लिए यादगार बनने जा रहे हैं।
1: बिल्कुल अशोक जी, और ये जो पल है ये हमें याद दिलाता है कि राष्ट्रपिता को सच्ची श्रद्धांजलि हम तभी दे सकेंगे जब हम उनके दिखाए मार्ग पर चल सकें, उनके सिद्धांतों का अनुकरण कर सकें, मानव सेवा को ईश्वर सेवा मान सकें।
0: बिल्कुल ऐसा लगता है बच्चे ना जाने कब से आज 2 अक्टूबर का इंतजार कर रहे होंगे कि आज वो यहाँ आएंगे, अपनी प्रस्तुति रखेंगे और बाद में प्रधानमंत्री जी से उनका मिलना होगा।
1: साथ ही माननीय उपराष्ट्रपति और बच्चे अपने अनुशासन को भूलकर दोनों से मिलने को उत्सुक आगे बढ़ रहे हैं।
0: सुरक्षा अधिकारियों के लिए थोड़ा मुश्किल समय, लेकिन वो भी अपने कार्य में बिल्कुल हमेशा कर्मठ रहते हैं, पराक्रमी हैं, और क्योंकि प्रधानमंत्री एकदम बच्चों के बीच में चले जाते हैं और काफी समय तक उनके बीच में रहते हैं, वही नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है।
1: मुस्कुराते हुए बच्चे, खिले हुए चेहरे, उत्साह और ये यादगार पल।
0: अब विदा लेते हुए और हमारे बीच से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उपराष्ट्रपति माननीय श्री सीपी राधा कृष्णन जी यहाँ से प्रस्थान करते हुए।
1: आज का एक क्षण बार बार याद दिलाता है बापू के सिद्धांतों को, बापू के व्यवहार को, कि उनके एक एक आह्वान पर सौ सौ जन दौड़े आते थे, सत्य अहिंसा दो शब्दों के अद्भुत अस्त्र उठाते थे। वो मौन सत्य का आग्रह था जिसमें हिंसा और रक्त नहीं, मानवता के अधिकारों की थी बात शांति से कही गई।
0: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर 5-30 जनवरी मार्ग बलिदान स्थल पर गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम का आप आंखों देखा हाल सुन रहे थे। तकनीकी सहयोग रहा SD ध्यानी, कमल सिंह, किरण पाल और मोनिका का। अब मैं अशोक शंगारी, अपनी साथी कमेंटेटर पूनम आहूजा, कार्यक्रम अधिकारी प्रदीप अग्रवाल, सहायक केंद्र निदेशक प्रमोद कुमार और अपनी पूरी टीम के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलते हैं।
1: नमस्कार।
2: अभी आप गांधी स्मृति और दर्शन समिति नई दिल्ली से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती के अवसर पर आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा एवं भक्ति संगीत का सजीव प्रसारण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे अशोक शंगारी और पूनम आहूजा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी

0: नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। मैं हूं कविता और मेरे साथ हैं इस वक्त मेरे सहयोगी।
1: मैं हूं आपके साथ विजेता चतुर्वेदी।
0: मैं और विजेता आपके लिए लेकर आए हैं खेल जगत की वो तमाम खबरें जिनको सुनने के इच्छुक आप होते हैं, और हर शाम अपना कार्यक्रम लेकर हम लोग प्रस्तुत हो जाते हैं आप सभी के सामने। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बधाई देंगे और ये भी कहेंगे कि आज का दिन हमारे लिए बेहद खास है, क्योंकि आज हम अपने जो हमारे प्यारे बापू हैं उनकी जो 157वीं जयंती है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमेशा उनके दर्शन, उनके जो मार्गदर्शन है, उनकी सिखाई हुई सीख है, उन पर चलने के लिए हम प्रेरित होते हैं। अहिंसा का पाठ उन्होंने हमेशा हमें सिखाया और उसी के साथ हम आगे भी बढ़ रहे हैं। देश हमारा विकसित हो रहा है, और देश की बात जहां तक है वहां पर मैं आपको कैसे ना बताऊं कि आज इस इतने अच्छे मौके पर हमारे पास बहुत सारी खेल खबरें ऐसी हैं जिन्होंने आज के दिन में बटोरा है अपना आकर्षण एशियन गेम्स में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एशियन गेम्स की, जहां पर आज का दिन हो गया है पूरा ऐतिहासिक। आज एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने कर दिया है कमाल, इतिहास रच दिया है और तिरंगे की बढ़ा दी है शान। तो ये दिन तो नोट हो गया है विजेता आज हमारी डिक्शनरी में, क्योंकि आज के दिन ऐसी मेडल की बारिश हुई है कि उसके साथ हम पूरा जो जश्न है एक वो मना रहे हैं, माहौल वैसा ही है। और मैं चलूंगी आपके पास सीधा और मैं जानूंगी कि आज के दिन में क्या कुछ बड़ा हुआ है, कौन कौन से मेडल हमारे पास आए हैं। एक संक्षिप्त विवरण यहाँ दे देती हूँ। आज भारत ने लिए हैं 5 गोल्ड मेडल और उसके साथ हमारे पास आए हैं 2 सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल भी है हमारे खाते में। लेकिन शुरुआत करेंगे हम सबसे ज्यादा दमदार खेल बॉक्सिंग के साथ, तो जिसमें लगे हैं हमारे गोल्डन पंच। चलते हैं पूरी खबर के लिए विजेता के पास।
1: बिल्कुल, गोल्डन पंचेस लगे हैं कविता, और आज का तो जो दिन है ना वो शुरुआत ही बहुत ही शानदार हुई थी। और यहाँ पर महिला सशक्तिकरण की बात करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि पहला जो हमारा गोल्ड हमारे हाथों में हमारी झोली में आया था वो लेकर आई लवलीना बोरगोहेन, जिन्होंने 75 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। और मजे की बात यह है कि आज उनका 29वां जन्मदिन भी है, और जन्मदिन के दिन उन्होंने ये गोल्ड मेडल अपने और अपने देश के नाम जीता है। लवलीना ने ये मुकाबला 5-0 के यूनानिमस डिसीजन से जीता, यानी कि पांचों जजिस ने लवलीना के पक्ष में फैसला दिया। और दोस्तों बात करें आगे भी, जो राउंड जिस तरह से ये खेला गया, तो उन्होंने पहला जो राउंड था वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहा। बाउजी ने शुरुआत में अटैक करने की कोशिश की और लवलीना ने राउंड 1 को 3-2 से अपने पक्ष में किया, यानी पहले राउंड के बाद लवलीना ने मुकाबले में बढ़त बना ली। दूसरे राउंड में भी बाउ ने फिर से दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन लवलीना ने इस बार ज़्यादा कॉन्फिडेंट तरीके से 4-1 का मार्जिन कर दिया। उसके बाद तीसरे राउंड में भी सभी जजेस ने लवलीना को बढ़त दी और फाइनल डिसीजन आया कि लवलीना बोरगोहेन ने 5-0 से ये मुकाबला जीत लिया। और वुमेन्स 75

0: चाहती हूँ वो ये कि राष्ट्रपिता द्वारा साफ सफाई के सिद्धांतों को समानता और श्रम की गरिमा की व्यापक चर्चा के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया जाना चाहिए। गांधी जी ने साफ सफाई को एक स्वस्थ जीवन की मूलभूत आवश्यकता माना है। गरीबी, दूषित पानी, अस्वच्छ पर्यावरण और खुले तौर पर शौच करना कई बीमारियों का कारण है। इसलिए उन्होंने न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक साफ सफाई को भी बहुत महत्व दिया। उन्होंने महसूस किया था कि हम राष्ट्रीय या सामाजिक साफ सफाई को एक महत्वपूर्ण गुण के रूप में नहीं ले रहे, जिसे हमें साधना और विकसित करना चाहिए। जिस पानी में हम अपने धार्मिक अनुष्ठान, श्राद्ध या किसी धार्मिक समारोह का आयोजन करते हैं या जिस जलाशय में हम स्नान करते हैं और उसे पवित्र मानते हैं, उसे हम दूषित और गंदा करने में हिचकिचाते क्यों नहीं? ये सब हमारी कमजोरी के कारण है कि हमें गांवों और पवित्र नदियों के तटों पर फैली गंदगी के कारण बीमारियां सहना पड़ता है। जगहों में जो कचरा साफ किया जाता है उसे अलग अलग किया जाना चाहिए, जो हमें कंपोस्ट तैयार करने में भी मदद करेगा। उन्होंने जोर दिया कि ये संभव नहीं है कि हम केवल नगर निगम को घनी आबादी वाले शहरों की सकरी गलियों की सफाई का काम सौंप दें। हमें खुद भी इसे करना होगा, तभी शहर भी साफ रह पाएंगे। गांधी के दृष्टिकोण से स्वदेशी का भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान था। गांधी के लिए स्वदेशी का अर्थ सिर्फ स्थानीय उत्पादों का उपभोग करना नहीं था, बल्कि ये हमारे आसपास रहने वाले समुदाय के सदस्यों की आर्थिक जरूरतों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी थी। चरखा और खादी गांधी के स्वदेशी आंदोलन के प्रतीक थे। चरखा के माध्यम से गांधी ने ग्रामीण रोजगार, आर्थिक स्वतंत्रता और श्रम के सम्मान को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। गांधी जी का मानना था कि जब तक स्थानीय कलाकारों और उत्पादकों को कुछ काम नहीं मिलेगा, वे आर्थिक विकास की प्रक्रिया से लाभ नहीं उठा पाएंगे। आज स्वदेशी को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है जो स्थानीय उद्योगों, हस्तशिल्प, हाथ से बुने कपड़े, छोटे पैमाने के और घरेलू उद्योगों, सहकारिताओं और स्थानीय उद्यमता के विकास में मदद करती है। आज के वैश्वीकरण के युग में स्वदेशी का अर्थ है एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण जहां स्थानीय लोगों की उत्पादक क्षमता सुनिश्चित हो। महात्मा गांधी के अनुसार किसी को उसके जन्म, जाति या सामाजिक स्थिति के कारण अपमानित करना नैतिक रूप से गलत है। उन्होंने समाज के हर नागरिक को सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने की इच्छा व्यक्त की। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल पढ़ना और लिखना, सीखना या शिक्षा के माध्यम से पैसे कमाना नहीं था। शिक्षा का असली उद्देश्य मनुष्य का समग्र विकास है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। गांधी के लिए चरित्र निर्माण शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था। शिक्षा उस तरह होनी चाहिए जो एक व्यक्ति को सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, स्वनियंत्रण, अनुशासन और सेवा भाव जैसे मूल्यों को प्रदान करे। गांधी ने यह भी चाहा कि शिक्षा श्रम और उत्पादन से जुड़ी होनी चाहिए। बच्चों को केवल किताबों से पढ़कर ही चीजें नहीं सीखनी चाहिए, बल्कि उन्हें अपने शारीरिक श्रम के द्वारा चीजें सीखनी चाहिए। इससे उनमें श्रम का सम्मान और आत्मनिर्भरता विकसित होगी। गांधी ने नई तालीम की अवधारणा प्रस्तुत की। इसमें किसी उपयोगी और उत्पादक शिल्प या कार्य की शिक्षा का आधार बनाया जाता है तथा अन्य विषयों का ज्ञान उसी व्यावहारिक गतिविधि से जोड़ा जाता है। गांधी का मानना था कि किसी व्यक्ति की मातृभाषा उसके प्रारंभिक शिक्षा का बेहतर साधन बन सकती है। उनके अनुसार बच्चे अपनी मातृभाषा में अपने विचारों को समझने और व्यक्त करने में आसानी महसूस करते हैं। सन 1920 की भारत की नई शिक्षा नीति ने गांधी की नई तालीम और भाषा आधारित शिक्षा के विचारों को खास तौर पर अपनाया है। उनके अनुसार शिक्षा लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर आधारित है, जहां सीखना कार्य और अनुभव के माध्यम से होता है। ज्ञान को प्रयोगों और अभ्यास के माध्यम से ही प्राप्त किया जाना चाहिए। एक व्यक्ति को शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी की तलाश करने वाले छात्रों का निर्माण करना नहीं, बल्कि उनके ज्ञान और मेहनत के कारण स्वतंत्र होना है। गांधी ने शिक्षा को सामाजिक सुधार का एक माध्यम माना था। शिक्षा का उद्देश्य जाति, वर्ग, लिंग और आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव को कम करना और समानता और भाईचारे को बढ़ावा देना है। गांधी के लिए शिक्षा राष्ट्र के विकास से जुड़ी थी। एक शिक्षित व्यक्ति का कार्य एक जिम्मेदार नागरिक होना है, जिसके अंदर राष्ट्र के प्रति सेवा और कर्तव्य की भावना हो। अंत में गांधी के अनुसार शिक्षा का ध्येय केवल प्रतिभा या कौशल होना चाहिए, बल्कि एक नैतिक, संवेदनशील और जिम्मेदार व्यक्ति का निर्माण करना होना चाहिए। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना। गांधी कहते हैं कि शिक्षा महिलाओं को आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर और निर्णय लेने की गुणवत्ता प्रदान करती है। शिक्षा महिलाओं को अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जागरूक बनाती है। उन्होंने महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने की अनुमति दी। वास्तव में कई महिलाओं ने नमक सत्याग्रह, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार आदि जैसे आंदोलनों में गांधी के नेतृत्व में भाग लिया। उन्होंने विश्वास किया कि महिलाएं सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों में सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं। उनका उद्देश्य महिलाओं को बहादुरी, सम्मान और सार्वजनिक मामलों में भाग लेने जैसी गुणवत्ताएं सिखाना था। गांधी ने महिलाओं को शिक्षा को केवल घरेलू गतिविधियों तक सीमित करने से इनकार किया। उन्होंने चाहा कि महिलाएं शिक्षा के माध्यम से समाज में सक्रिय रूप से भाग लें, अर्थात महिलाओं को पुरुष के समान शिक्षा का अधिकार दिया जाना चाहिए। उनका एक स्वतंत्र भारत का सपना तभी पूरा होगा जब महिलाओं को शिक्षा, व्यवसाय, संपत्ति, सुरक्षा, राजनीतिक भागीदारी और आजादी में समानता मिलेगी। महिलाओं की समानता का मतलब सिर्फ उन्हें अवसर देना नहीं है, बल्कि उन्हें ऐसे वातावरण भी देना है जहां उनके निर्णयों और सम्मान किया जाए और उनके अधिकारों का ध्यान रखा जाए।
1: अभी आप सुन रहे थे वार्ता गांधी जी के सपनों का भारत, स्वच्छ भारत। वार्ताकार थी डॉक्टर वर्षा गुप्ता, जो कि प्रोफेसर है राजधानी कॉलेज नई दिल्ली में। और देखिए, उन्होंने अपने इस वार्ता में जिक्र किया कि गांधी जी एक समाज सुधारक के रूप में महिला सशक्तिकरण पर विशेष बल देते थे।
2: जी जी, और समानता की बात हमने सुनी कि समानता के बारे में गांधी जी ने कहा था, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवताय, अर्थात जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी ताकत का लोहा मनवाया है, चाहे वो अंतरिक्ष हो, सेना हो या खेल का मैदान। लेकिन देश की नीति निर्धारण की सबसे बड़ी संस्थाएं यानी संसद और विधानसभाओं में उनकी भागीदारी हमेशा कम रही। इसी असमानता को दूर करने और महिलाओं को उनका वास्तविक राजनीतिक अधिकार देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया।
1: बिल्कुल, और इस अधिनियम के तहत यही निर्धारित करना है कि पंचायत से लेकर संसद तक शासन और निर्णय की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती रहे।
2: साथ में नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमारे देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कानून है। ये कानून संसद राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के 33% आरक्षण देता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब देश के लिए कानून बनाने में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हमारे देश में महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाई है, चाहे वो पढ़ाई हो, खेल हो या व्यापार। लेकिन देश को चलाने और कानून बनाने वाली जगहों में उनकी संख्या हमेशा बहुत कम रही। आजादी के इतने सालों बाद भी वहां महिलाओं की गिनती सिर्फ 14-15% ही थी। इसी कमी को दूर करने के लिए और महिलाओं को उनका असली अधिकार देने के लिए यह नया कानून बनाया गया है। इस कानून की सबसे बड़ी बात यह है कि अब लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में हर 100 सीटों में से 33 सीटें महिलाओं के लिए फिक्स होंगी, और इसके साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के लिए भी इस 33% के अंदर अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह नियम शुरू में 15 सालों के लिए लागू किया गया है, जिसे जरूरत पड़ने पर सरकार आगे भी बढ़ा सकती है। यह कानून देश में अगली नई जनगणना होने और उसके बाद चुनावी क्षेत्रों में सीमाएं दोबारा तय होने के बाद पूरी तरह लागू हो जाएगा।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी। और देखिए, हमारे देश के विकास में न सिर्फ महिलाओं की बल्कि हर वर्ग की और हर धर्म की और हर उम्र के लोगों की भागीदारी होगी, तभी हमारा देश विकास कर पाएगा। और अब आपको सुनवाते हैं बूटा राम और रामकला सैनी की आवाज़ में ये रागनी।

0: अभी आप सुन रहे थे बूटा राम और राम कला सैनी की आवाज़ में ये रागनी, और इसके साथ ही आज का ग्राम संसार कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को
1: राम राम। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक थे शिव नंदन लाल।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 7 बजने को है। अब से कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। जापान में एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। सुजीत कलकल ने अपनी इस जीत को देश के नाम समर्पित किया।
2: मैं सभी देशवासियों को धन्यवाद करता हूं, उनकी दुआओं से ये मेडल आया।
3: यही सोच के उतरे थे मैट पे कि भाई देश के लिए गोल्ड लाना है, और आखिरी तक मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और भगवान की दया से गोल्ड आया देश के लिए। अपने देशवासियों को डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि उनकी दुआ ही सबसे ज्यादा काम आती है।
1: पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुडा ने नियन चेन चेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण जीता। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ 5वें स्थान पर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मछार से बात की। कैप्टन स्मित मछार ने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट में अपने सह पायलट के हमले को नाकाम करते हुए 180 लोगों की जान बचाई थी। प्रधानमंत्री ने उनकी बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भक्ति गीत गाए। विश्वभर में स्थित भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों ने भी आज महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उनके सत्य, अहिंसा और शांति के संदेश को याद किया। चीन में भारतीय राजदूत विक्रम दौरेस्वामी ने भारतीय समुदाय और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ पेइचिंग में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। जापान में भारत की राजदूत नागुमा मलिक और भारतीय समुदाय के सदस्यों ने टोक्यो के एडोगावा में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित। इस कार्यक्रम में अंत्योदय, स्वच्छता और समाज सेवा के उनके आदर्शों को दर्शाया गया। पाकिस्तान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहरीन और दक्षिण कोरिया में भी इसी तरह के स्मृति कार्यक्रम आयोजित किए गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक व्यापार विकृतियों को दूर करने के लिए विश्व व्यापार संगठन WTO के अनुरूप दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया है। श्री गोयल ने अमरीका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन दिवस पर यह बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। उन्होंने कहा कि भारत डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में विश्वसनीय कड़ी है। महाराष्ट्र निवेश शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में 85 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावित निवेश से संबंधित 67 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। श्री फडणवीस ने राज्य को प्रमुख निवेश स्थल बनाने के उद्देश्य से इन्वेस्ट महाराष्ट्र मंच का भी शुभारंभ किया। त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्र सेना रेड्डी नलू ने NCC कैडेट से एकता, अनुशासन और निस्वार्थ सेवा के आदर्शों पर आधारित मजबूत और एकजुट भारत बनाने में योगदान देने का आग्रह किया है। राज्यपाल ने आज नरसिंहगढ़ के TIT संस्थान में विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर वीर विक्रम एकता कैंप का उद्घाटन किया। इसका आयोजन 13 त्रिपुरा बटालियन NCC ने किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुने कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे किसान बहन और भाइयों को राम राम, राम राम। तो प्रियंका बहन, आज है 2 अक्टूबर और पिछले कार्यक्रम ने हमने बात की गांधी जयंती की, साथ ही बात की लाल बहादुर शास्त्री जयंती की। और आज देश अपने पूर्व प्रधानमंत्री और सादगी व स्वाभिमान के प्रतीक स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की 122वीं जयंती मना रहा है। इस अवसर पर राजधानी दिल्ली में यमुना तट स्थित उनके समाधि स्थल विजय घाट पर एक विशेष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने विजय घाट पर पहुंचकर शास्त्री जी की समाधि पर पुष्प चक्र अर्पित किया और राष्ट्र के प्रति उनकी समर्पित सेवाओं को नमन किया। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी विजय घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री को पुष्पांजलि अर्पित की और राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण और दृढ़ नेतृत्व को नमन किया। इसके साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल श्री तरणजीत सिंह संधू और दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने भी समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर शास्त्री जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। साथ ही शास्त्री जी का सादगी से भरा जीवन, उच्च विचार और जय जवान जय किसान का अमर संदेश आज भी हर भारतीय के दिल में राष्ट्र सेवा की अलख जगाता है। आकाशवाणी परिवार की ओर से देश के इस महान सपूत को शत शत नमन।
1: बिल्कुल, किसानों के लिए उनका जो स्नेह था किसी से छुपा हुआ नहीं है और इसी बात की एक विस्तृत जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें बातचीत है जिसका विषय है कृषि के विकास में लाल बहादुर शास्त्री का योगदान। और इसमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अशोक सिंह, पूर्व मुख्य संपादक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से। तो सुनते हैं ये बातचीत।
2: देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था। भारत के इतिहास में लाल बहादुर शास्त्री का नाम एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में लिया जाता है जिन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में देश का नेतृत्व किया। उनका प्रधानमंत्री कार्यकाल जून 1964 से जनवरी 1966 तक लगभग 1.5 वर्ष तक का रहा, लेकिन इस छोटी अवधि में उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, कृषि उत्पादन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता को एक दूसरे से जोड़कर देखने की महत्वपूर्ण दृष्टि प्रस्तुत की। उनके नेतृत्व के समय भारत एक ओर 1965 के युद्ध का सामना कर रहा था तो दूसरी ओर खाद्यान्न की गंभीर कमी, कमजोर कृषि उत्पादकता, सूखा और विदेशी खाद्यान्न पर निर्भरता जैसी समस्याओं से जूझ रहा था। 1964-65 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन लगभग 88.4 मिलियन टन था और उस समय देश को लगभग 7 मिलियन टन खाद्यान्न का आयात करना पड़ता था। 1965-66 में प्रतिकूल मौसम के कारण कृषि उत्पादन पर और दबाव पड़ा। ऐसी परिस्थितियों में शास्त्री जी ने कृषि को केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विषय न मानकर राष्ट्रीय अस्तित्व और आत्मनिर्भरता का प्रश्न बनाया। इसी व्यापक सोच से उनका प्रसिद्ध आह्वान सामने आया, जय जवान जय किसान। इस नारे में उन्होंने सैनिक और किसान को राष्ट्र की सुरक्षा के दो महत्वपूर्ण आधारों के रूप में देखा। सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा करता है जबकि किसान देश के नागरिकों के लिए अन्न पैदा करता है। तत्कालीन परिस्थितियों में यह संदेश केवल राजनीतिक नारा नहीं था बल्कि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का संक्षिप्त सूत्र था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में खाद्य सुरक्षा प्रमुख थी। जनसंख्या बढ़ रही थी, कृषि मुख्य तौर पर मानसून पर निर्भर थी, सिंचाई सीमित थी और उत्पादकता विकसित देशों की तुलना में कहीं कम थी। कृषि में आधुनिक बीजों, उर्वरकों, सिंचाई, कृषि अनुसंधान, भंडारण और संस्थागत मार्केटिंग की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। 1960 के दशक के मध्य तक यह समस्या और गंभीर हो गई। 1964-65 में खाद्यान्न उत्पादन 88.4 मिलियन टन तक पहुंचा था लेकिन 1965-66 में प्रतिकूल मौसम ने उत्पादन को प्रभावित किया। तत्कालीन आर्थिक सर्वेक्षण ने स्पष्ट रूप से कृषि उत्पादन पर मौसम के प्रतिकूल प्रभाव और खाद्यान्न उपलब्धता में कमी की ओर संकेत किया था। इस संकट के बीच भारत को विदेशों से खाद्यान्न आयात करना पड़ता था। अमेरिकी PL 480 कार्यक्रम के माध्यम से गेहूं का आयात भी भारत की खाद्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। बाद में सरकार ने खाद्यान्न आत्मनिर्भरता को राष्ट्रीय नीति का प्रमुख लक्ष्य बनाया। खाद्य निगम की स्थापना और कृषि मूल्य नीति की संस्थागत व्यवस्था इसी व्यापक खाद्य सुरक्षा ढांचे का हिस्सा बनी। ऐसे समय में शास्त्री जी की कृषि दृष्टि का केंद्रीय विचार था कि देश को अपनी खाद्य आवश्यकताओं के लिए अत्यधिक बाहरी निर्भरता से बाहर निकलना होगा। शास्त्री जी की कृषि दृष्टि को चंद शब्दों में ऐसे समझा जा सकता है, आत्मनिर्भरता, किसान का सम्मान, उत्पादन वृद्धि, सहकारिता, अनुशासन, ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय जिम्मेदारी। उनका मानना था कि कृषि केवल किसान का निजी व्यवसाय नहीं है, यह पूरे समाज की खाद्य सुरक्षा से जुड़ी हुई गतिविधि है। यदि किसान उत्पादन करता है तो शहर, उद्योग, सेना और पूरा राष्ट्र उसके श्रम से लाभान्वित होता है। उनकी सोच में किसान को केवल सहायता पाने वाला व्यक्ति नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माता माना गया। प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक संदेशों में किसानों और सैनिकों को एक साथ सम्मान देना इसी दृष्टिकोण का परिचायक था। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शास्त्री स्मारक के उद्घाटन के अवसर पर कहा था कि जय जवान जय किसान के माध्यम से शास्त्री जी ने खाद्य उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता को राष्ट्रीय रक्षा से जोड़ा था। जय जवान जय किसान शास्त्री जी की प्रसिद्ध राष्ट्रीय पुकार बनी। 1965 के युद्ध के दौरान इसका विशेष महत्व था। देश को सैनिकों की आवश्यकता थी और उसी समय खाद्यान्न संकट के कारण किसानों से अधिक उत्पादन की अपेक्षा थी। इस नारे का मूल संदेश था कि राष्ट्र की शक्ति केवल सीमा पर खड़े सैनिकों से नहीं बनती, खेतों में श्रम करने वाला किसान भी राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न अंग है। इस दृष्टि से जय जवान और जय किसान परस्पर विरोधी नहीं बल्कि परस्पर पूरक थे। यदि देश खाद्यान्न के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता तो राष्ट्रीय सुरक्षा भी प्रभावित होती। इसीलिए कृषि उत्पादन बढ़ाना आर्थिक नीति के साथ साथ रणनीतिक आवश्यकता भी थी। बाद के दशकों में जय विज्ञान और फिर जय अनुसंधान जैसे विस्तार हुए, लेकिन मूल जय जवान जय किसान में ही सुरक्षा, उत्पादन और राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण संबंध स्थापित हो चुका था। शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनने के समय भारत खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। 1965 के युद्ध और खाद्य संकट ने सरकार के सामने दोहरी चुनौती खड़ी कर दी थी। ऐसे समय में शास्त्री जी ने खाद्य आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी। उन्होंने नागरिकों से संयम और खाद्य बचत की अपील की। उस समय सप्ताह में एक दिन उपवास अथवा भोजन की खपत कम करने का आह्वान भी इसी संदर्भ में किया गया था। यह केवल जनता को आदेश देने की शैली नहीं थी। शास्त्री जी स्वयं सादगी और अनुशासन के लिए जाने जाते थे। सरकारी स्रोतों में उनके द्वारा अपने परिवार में भी खाद्य संयम के सिद्धांत को अपनाने का उल्लेख मिलता है। इसका व्यापक संदेश था, संकट के समय सरकार और नागरिक दोनों अपनी जिम्मेदारी निभाएं। यह बताने की जरूरत नहीं कि आज खाद्य अपव्यय, जल संकट, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव के संदर्भ में यह विचार फिर प्रासंगिक दिखाई देता है। यह समझना आवश्यक है कि भारत की हरित क्रांति किसी एक व्यक्ति या एक सरकार का अकेला परिणाम नहीं थी। इसके पीछे कृषि अनुसंधान, वैज्ञानिकों, संस्थानों, सिंचाई, उर्वरक, बीज, किसानों की मेहनत तथा बाद की सरकारों की नीतियों का सम्मिलित योगदान शामिल था। शास्त्री जी के कालखंड को उस परिवर्तन के महत्वपूर्ण चरण के रूप में देखा जा सकता है जब खाद्य आत्मनिर्भरता को राष्ट्रीय नीति के रूप में लाया गया। उनके समय में कुछ महत्वपूर्ण संस्थागत कदम उठाए गए, उनमें प्रमुख है भारतीय खाद्य निगम की स्थापना। 1965 में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य खाद्यान्न की खरीद, भंडारण, वितरण और मूल्य समर्थन की व्यवस्था को मजबूत करना था। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार FCI की स्थापना ऐसे समय में हुई जब देश में खाद्यान्न, विशेषकर गेहूं की भारी कमी थी। यह व्यवस्था आगे चलकर भारत की खाद्य सुरक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण आधारशिला बनी। उनकी पहल से ही 1965 में कृषि मूल्य नीति की संस्थागत व्यवस्था के अंतर्गत एग्रीकल्चरल प्राइजेस कमीशन की स्थापना हुई, जिसे बाद में कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस यानी CACP के रूप में जाना गया। इस व्यवस्था का उद्देश्य कृषि उत्पादों की कीमतों के बारे में सरकार को सलाह देना तथा किसानों को उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देने वाली मूल्य व्यवस्था विकसित करना था। इसका महत्व इसलिए था क्योंकि केवल उत्पादन बढ़ाने से किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो सकती, किसान को अपने उत्पाद का उचित आर्थिक प्रतिफल भी मिलना चाहिए। 1960 के दशक के कृषि कार्यक्रमों में उन्नत बीज, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि ऋण और वैज्ञानिक तकनीक को अधिक महत्व मिलने लगा। तत्कालीन आर्थिक सर्वेक्षणों में बेहतर बीज, कीटनाशक भंडारण और उत्पादक ऋण की उपलब्धता बढ़ाने की योजनाओं का उल्लेख मिलता है। यही वह नीति वातावरण था जिसमें बाद की हरित क्रांति का विस्तार का आधार मिला। उनके प्रधानमंत्री काल में खाद्य आत्मनिर्भरता और कृषि उत्पादन बढ़ाने की नीति को निर्णायक प्राथमिकता मिली, जबकि उच्च उपज वाली किस्मों पर आधारित हरित क्रांति का व्यापक प्रसार उनके निधन के बाद हुआ। भारतीय कृषि में हरित क्रांति के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान, उच्च उपज वाली किस्में, सिंचाई, रासायनिक उर्वरक, संस्थागत ऋण और सरकारी खरीद समर्थन जैसे बड़े कारक एक साथ काम कर रहे थे। इसी भारतीय कृषि अनुसंधान प्रणाली ने हरित क्रांति और उसके बाद के कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नीति आयोग भी 1960 के दशक के खाद्य संकट और उसके बाद हरित क्रांति की तकनीक को भारतीय कृषि की उत्पादकता वृद्धि में महत्वपूर्ण मोड़ मानता है। इसीलिए शास्त्री जी को हरित क्रांति के अकेले निर्माता की बजाय उस राष्ट्रीय कृषि आत्मनिर्भरता के महत्वपूर्ण राजनीतिक समर्थक और आधार निर्माताओं में से एक के रूप में देखना अधिक ऐतिहासिक रूप से उचित होगा। शास्त्री जी का किसान से संबंध केवल भाषणों तक सीमित नहीं था। उनकी सार्वजनिक जीवन शैली में सादगी, सामान्य नागरिकों से निकटता और ग्रामीण भारत के प्रति संवेदनशीलता दिखाई देती थी। इसी संदर्भ में गुजरात के आनंद की उनकी यात्रा विशेष महत्व रखती है। अक्टूबर 1964 में शास्त्री जी आनंद गए और वहाँ अमूल के सहकारी मॉडल को देखा। वे इस मॉडल से प्रभावित हुए। उन्होंने किसानों की सहकारी संस्था के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को समझने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में समय बिताया।

0: मॉडल को अन्य क्षेत्रों में फैलाना था। बाद में इसी संस्थागत ढांचे और डॉक्टर वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में ऑपरेशन फ्लड ने भारत की दुग्ध अर्थव्यवस्था में बड़ा परिवर्तन किया। सरकारी विवरण के अनुसार ऑपरेशन फ्लड 1970 के चरणबद्ध रूप से आगे बढ़ा। यह उनके कृषि दर्शन के उस पहलू को दर्शाता है जिसमें छोटे उत्पादकों को सहकारी संगठन के माध्यम से बाजार शक्ति देने की कल्पना थी। शास्त्री जी की कृषि नीति की प्राथमिकताओं में कई आयाम शामिल थे। इनमें खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, खाद्य आत्मनिर्भरता, किसान को उत्पादन के लिए आर्थिक प्रोत्साहन, उन्नत बीज और वैज्ञानिक तकनीक, सिंचाई का विस्तार, कृषि भंडारण एवं वितरण, कृषि उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य व्यवस्था, सहकारी संस्थाओं का विस्तार, दूध उत्पादन और ग्रामीण आय में वृद्धि तथा कृषि को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ना आदि का खास तौर पर उल्लेख किया जा सकता है। शास्त्री जी का निधन 1966 में हुआ। उनके वास्तविक कार्यों और नीतिगत प्राथमिकताओं से उनके कृषि विजन के कुछ मूल सिद्धांत समझे जा सकते हैं। इनमें पहला सिद्धांत है आत्मनिर्भरता, यानी कि देश को अपनी मूल खाद्य आवश्यकताओं के लिए बाहरी निर्भरता कम करनी चाहिए। दूसरा है किसान केंद्रित विकास। उनके अनुसार कृषि विकास का अंतिम उद्देश्य केवल उत्पादन के आंकड़े बढ़ाना नहीं बल्कि किसान की आर्थिक स्थिति सुधारना होना चाहिए। तीसरा है विज्ञान और तकनीक का प्रसार, मतलब यह कि बेहतर बीज, सिंचाई, कृषि अनुसंधान और वैज्ञानिक पद्धति उत्पादन वृद्धि के महत्वपूर्ण साधन है। चौथा है सहकारिता। इसके अनुसार छोटे किसानों की सामूहिक शक्ति बाजार में उनकी स्थिति मजबूत कर सकती है। आनंद का सहकारी मॉडल इसका उदाहरण है। पांचवा है अनुशासन और संसाधन संरक्षण, यानी कि खाद्य संकट में संयम का उनका संदेश आज पानी, मिट्टी और खाद्य संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की दिशा में अहम दिशा निर्देश के रूप में देखा जा सकता है। वर्तमान भारतीय कृषि के संदर्भ में शास्त्री जी की सोच की उपयोगिता क्या है, इस पर भी गौर कर लेते हैं। आज भारत की कृषि 1960 के दशक की कृषि से बिल्कुल अलग है। देश ने खाद्यान्न उत्पादन, सिंचाई, कृषि अनुसंधान, दूध उत्पादन और कृषि बाजारों में लंबी यात्रा तय की है। ICAR के अनुसार 1950-51 से 2021-22 के बीच भारत के खाद्यान्न उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई और कृषि अनुसंधान तथा तकनीकी विकास ने खाद्य एवं पोषण सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर भी नई चुनौतियां सामने हैं। जलवायु परिवर्तन की बात करें तो अनियमित वर्षा, तापमान में वृद्धि, सूखा और बाढ़ कृषि उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए शास्त्री जी की आत्मनिर्भरता की अवधारणा को आज जलवायु अनुकूल कृषि से जोड़ा जा सकता है। शास्त्री जी की किसान केंद्रित सोच आज इस प्रश्न से जुड़ती है कि किसान को केवल उत्पादक ही नहीं बल्कि मूल्य श्रृंखला के सहभागी के रूप में कैसे मजबूत किया जाए। ऐसे ही जब खाद्य एवं पोषण सुरक्षा का जिक्र किया जाता है तो स्पष्ट दिखता है कि आज कृषि का लक्ष्य केवल गेहूं और चावल का उत्पादन नहीं रह सकता। दालें, तिलहन, फल, सब्जियां, दूध, मछली और अन्य पोषक खाद्य भी महत्वपूर्ण हैं। आज जब भारत कृषि क्षेत्र में उत्पादन, किसान आय, जलवायु परिवर्तन, जल संकट, मिट्टी की गुणवत्ता, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा और ग्रामीण रोजगार जैसी नई चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब शास्त्री जी की सोच के मूल तत्व फिर उपयोगी दिखाई देते हैं। उनकी विरासत हमें ये समझाती है कि कृषि केवल अन्न पैदा करने की प्रक्रिया नहीं बल्कि राष्ट्र की आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्थिरता और खाद्य सुरक्षा का आधार है। जय किसान का वास्तविक अर्थ किसान का सम्मान करने के साथ साथ ऐसी कृषि व्यवस्था बनाना है जिसमें किसान उत्पादक भी हो, उद्यमी भी, तकनीक का उपयोगकर्ता भी हो, बाजार में निर्णय लेने वाला सहभागी भी हो और देश की खाद्य सुरक्षा का आधार होने के साथ स्वयं आर्थिक रूप से सुरक्षित भी हो। यही दृष्टि लाल बहादुर शास्त्री की कृषि विरासत को वर्तमान भारत में सार्थक बनाती है। अंत में शास्त्री जी की कृषि दृष्टि का सबसे बड़ा संदेश यही कहा जा सकता है कि राष्ट्र की आत्मनिर्भरता खेत से शुरू होती है और किसान की समृद्धि के बिना कृषि की वास्तविक प्रगति संभव नहीं है।
1: तो प्रियंका बहन अभी हमारे साथ ही सुन रहे थे कृषि में विकास, कृषि के विकास में लाल बहादुर शास्त्री जी का योगदान और बातचीत कर रहे थे डॉक्टर अशोक सिंह, पूर्व मुख्य संपादक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली। और अब प्रियंका बहन सुन लेते हैं एक देशभक्ति रागिनी।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत, और कलाकार थे कोशिंदर खदाना और रविंद्र खिलौर।
1: अभी प्रियंका बहन हम बात कर रहे थे लाल बहादुर शास्त्री जी का कृषि में, कृषि के विकास में कितना बड़ा योगदान था, और वैसे ही उन्हीं की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों के लिए एक सुरक्षा जो है कवच है जो खेती में होने वाली नुकसान की भरपाई करता है। जब कभी सूखा, बाढ़, भारी बारिश, ओले या कीड़ों की वजह से फसल में बर्बादी हो जाती है तो ये योजना किसानों को आर्थिक मदद देकर उन्हें नुकसान से बचाती है। इससे किसान बिना किसी डर के दोबारा खेती कर सकते हैं। ये फसल योजना फसल की बुवाई से लेकर कटाई के बाद के 14 दिनों तक काम करती है। इस योजना में किसानों को बहुत ही कम पैसा यानी प्रीमियम देना पड़ता है। धान और मक्का जैसी खरीफ फसलों के लिए सिर्फ 2%, गेहूं और सरसों जैसी रबी की फसलों के लिए सिर्फ 1.5%, और सब्जियों या कपास जैसी नकदी फसलों के लिए 5% प्रीमियम देना होता है। बाकी का सारा भारी जो खर्च होता है सरकार खुद उठाती है। इससे जुड़ने के लिए किसान के पास आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन के कागजात और फसल बुवाई बुवाई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। योजना में शामिल होने के लिए आप खुद PMFBY पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, या फिर अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर बैंक के कागजात जमा कर सकते हैं। यदि मौसम या आपदा के कारण आपकी फसल खराब हो जाती है तो नुकसान के 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना देना जरूरी है। आप मोबाइल में क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के जरिए नुकसान की फोटो अपलोड कर सकते हो। सरकार के हेल्पलाइन नंबर 1447 पर कॉल करके या अपने नजदीकी कृषि विभाग के दफ्तर में लिखित शिकायत देकर क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद अधिकारी आपके खेत का सर्वे करेंगे और प्रियंका बहन नुकसान का पैसा सीधा किसान भाइयों के बैंक खाते में भेज दिया जाएगा।
0: बिल्कुल ज़रूर। तो अगर आप इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से इस योजना का लाभ ज़रूर लें। अब कार्यक्रम में सुनवाते हैं रोली बरवा की आवाज़ में ये देशभक्ति रागनी।

0: अभी आप सुन रहे थे रोली भरवा सही है देशभक्ति रागनी। और भाई आपको याद दिला दें कि कल है शनिवार, और शनिवार को आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार फोन इन कार्यक्रम है जो कि प्रसारित किया जाता है, जिसमें हमारे श्रोता फोन के माध्यम से हम तक अपनी फरमाइश पहुंचाते हैं। और ये 6:30 पर आप सुन सकते हैं हेलो ग्राम संसार, और 7:05 पर प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम किसान वाणी। तो कार्यक्रम सुनना कल बिल्कुल भी ना भूलें।
1: बिल्कुल
0: इसके साथ ही आज का हमारा कृषि जगत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
1: राम राम। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर, संयोजक थे शिव नंदन लाल।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आपसे कुछ ही पलों में आप सुन सकेंगे आपका फेवरेट प्रोग्राम। हम सुनवाएंगे आज आपको जगजीत सिंह साहब की गाई गजलें।

श्रोताओं, जगजीत सिंह साहब को अभी आपने सुना गजल के इस कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त दीप्ति। और अब अगली गजल फिल्म जॉगर्स पार्क से जगजीत सिंह साहब की आवाज़ में एक बार फिर ये खूबसूरत गजल आप तक।

0: इसी के साथ गजलों के इस कार्यक्रम से दीप्ति को इजाजत दीजिए। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। महात्मा गांधी की 157वीं और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती पर आज राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने गांधी जयंती और स्वच्छ भारत मिशन दिवस के अवसर पर मालचा मार्केट परिसर में विशेष स्वच्छता अभियान का आयोजन किया। गांधी जयंती के अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने नई दिल्ली में खादी महोत्सव का उद्घाटन किया। दिल्ली सहित देश भर में खादी उत्पादों पर विशेष छूट आज से। दिल्ली सरकार ने भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के तहत नॉर्दर्न रिज के लिए फेज वन अधिसूचना को स्वीकृति दी। और एशियाई खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। भारत के 16 स्वर्ण, 25 रजत, 35 कांस्य सहित 76 पदक। अब समाचार विस्तार से। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती पर राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह इस सर्वधर्म प्रार्थना में भाग लिया और राष्ट्रपिता को पुष्पांजलि अर्पित की। गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 197वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का जीवन, उनके आदर्श दुनिया भर में सम्मानित हैं। श्रीमती मुर्मू ने कहा है कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भक्ति गीत गाए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें नमन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी की जीवन यात्रा राष्ट्र और समाज के प्रति समर्पण की विराट साधना थी। एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री का जीवन और राष्ट्र के प्रति समर्पण पीढ़ियों को भारत की सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर सेवा मेरा योगदान अभियान के अंतर्गत आजादपुर में आयोजित स्वच्छता अभियान में सहभागिता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी ने स्वच्छता को स्वस्थ और सभ्य समाज की आधारशिला माना। उन्होंने कहा कि आज से 12 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में शुरू हुआ स्वच्छ भारत मिशन आज देशव्यापी जन आंदोलन बन चुका है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें नमन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया जय जवान जय किसान का नारा वीर जवानों और अन्नदाताओं के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। वहीं उपराज्यपाल ने कहा कि महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा, स्वच्छता और सेवा के उनके आदर्श सभी को सदैव सूर्योदय और राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज महात्मा गांधी की 157वीं जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती पर दिल्ली विधानसभा परिसर में पुष्पांजलि अर्पित की।
1: ने कहा कि महात्मा गांधी ने यह दिखाया कि नैतिक साहस किसी राष्ट्र को दिशा दे सकता है, जबकि भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री ने यह सिद्ध किया कि सादगी, ईमानदारी और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा नेतृत्व के सर्वोच्च मानदंड निर्धारित कर सकती है। उन्होंने कहा कि उनका जीवन सभी को निरंतर यह स्मरण कराता है कि सार्वजनिक जीवन की वास्तविक शक्ति चरित्र, संकल्प और राष्ट्र सेवा में निहित होती है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इसलिए दोनों महापुरुषों की जयंती का एक ही दिन होना केवल स्मरण का अवसर नहीं है, बल्कि उन मूल्यों पर चिंतन करने अवसर भी है जो भारत को लोकतांत्रिक और संस्थागत जीवन को निरंतर दिशा प्रदान करते रहने चाहिए। इस अवसर पर दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट सहित अन्य सदस्यों ने भी दोनों महान विभूतियों को पुष्पांजलि अर्पित की। नितिका गुप्ता के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए दिलनशी आरज़ू।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। प्रोमो
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार में शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने आज महात्मा गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर श्री सूद ने सेवा मेरा योगदान अभियान के अंतर्गत स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े डंप द जंक अभियान में सहभागिता की। यह अभियान आज से 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को इधर उधर कचरा फेंकने से रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि कचरा बेतरतीब ढंग से न फेंका जाए।
3: देखिए, आज से लेकर 17 तारीख तक डंक द जंक युवाओं को, दिल्ली की जनता को अपने साथ लेकर कूड़ा जगह जगह ना फेंकने के लिए ये अभियान हम लोगों ने चलाया है। दिल्ली के 313 गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स को चुनकर हमारा प्रयास होगा कि इसको इस प्रकार से डेवलप कर दें कि अगले दिनों में यहाँ कूड़ा न गिरे।
0: नई दिल्ली नगरपालिका परिषद NDMC द्वारा गांधी जयंती और स्वच्छ भारत मिशन दिवस के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत मालचा मार्केट परिसर में विशेष स्वच्छता और सफाई अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया और स्वच्छता गतिविधियों में शामिल हुए। स्वच्छता अभियान को संबोधित करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि आज का दिन विशेष महत्व रखता है क्योंकि ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी के जीवन और दर्शन में स्वच्छता, अनुशासन और सार्वजनिक दायित्व को राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण आधार माना गया था। श्री राय ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन ने देश में स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण में व्यापक और दृश्यमान परिवर्तन लाया है। सहायक पुलिस आयुक्त पवन कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत स्वच्छता दिवस मनाया गया। उन्होंने बताया कि यह अभियान कई सालों से चल रहा है और इसे बहुत गंभीरता से लिया जाता है। सहायक पुलिस आयुक्त ने कहा कि यह अभियान केवल एक दिन का अभियान नहीं, ये पूरे साल चलता रहेगा और इसके अच्छे नतीजे सभी देख रहे हैं। गांधी जयंती के अवसर पर आज नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन समेत पूरे देश में विशेष छूट अभियान की शुरुआत की गई है। ये छूट आज से 16 नवंबर तक चलेगी। इस दौरान खादी उत्पादों पर 20% और ग्रामोद्योग उत्पादों पर 10% तक की छूट मिलेगी। इस अवसर

0: पर मीडिया को संबोधित करते हुए खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अध्यक्ष मनोज गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर स्वदेशी के आह्वान को जन जन और जेन जी तक पहुंचाने के लिए केवीआईसी लगातार प्रयास कर रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में खादी ने एक नया आयाम प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि आज खादी आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल तथा विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने का सशक्त माध्यम बन रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि खादी केवल वस्त्र नहीं बल्कि करोड़ों कारीगरों और बुनकरों की आजीविका, भारत की सांस्कृतिक विरासत और सतत विकास का प्रतीक है। उन्होंने ये बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र का कारोबार 1,87,00,000 रुपए से अधिक रहा और इससे लगभग 2 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला।
1: खादी युवाओं के लिए फैशन स्टेटमेंट बन गया है। आज खादी के देश भर में फैशन शो हो रहे हैं। युवा मोदी जैकेट पहन रहा है, मोदी कुर्ता पहन रहा है। युवा हमारी खादी की कॉस्मेटिक खरीद रहा है, खादी के ग्रामोद्योग उत्पाद खरीद रहा है। खादी की कुर्ती हो, जैकेट हो, वो उत्पाद जो कभी गांव गलियों से बाहर नहीं निकल पाते थे, आज वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खादी अपना जलवा पूरे देश में बिखेर रही है। पिछले 12-13 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खादी कई गुना बढ़ी है।
0: दिल्ली सरकार ने राजधानी की प्राकृतिक विरासत और हरित क्षेत्र को संरक्षित करने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। दिल्ली सरकार ने भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के तहत नॉर्दर्न रिज के लिए फेस वन अधिसूचना को स्वीकृति दी है। इसके तहत नॉर्दर्न रिज की 112 हेक्टेयर से अधिक यानी 277.56 एकड़ भूमि को आरक्षित वन घोषित किया जा रहा है। ये क्षेत्र अरावली पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है और दिल्ली के महत्वपूर्ण हरित और पारिस्थितिकी क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस संदर्भ में कहा कि नॉर्दर्न रिज दिल्ली की अमूल्य प्राकृतिक विरासत है और इसका संरक्षण शहर के पर्यावरणीय स्वास्थ्य के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि 112 हेक्टेयर से अधिक भूमि को आरक्षित वन घोषित करने के लिए फेज वन अधिसूचना को मंजूरी देना दिल्ली के हर क्षेत्रों को सुरक्षित रखने और राजधानी को अधिक स्वस्थ, हरित और पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रति मजबूत बनाने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि अब नॉर्दर्न रिज की 112 हेक्टेयर से ज्यादा की भूमि अधिसूचित होने के बाद कुल क्षेत्र 5,363 हेक्टेयर से अधिक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नॉर्दर्न रिज जैसे प्राकृतिक क्षेत्रों का संरक्षण, हरित क्षेत्र बढ़ाना और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना दिल्ली को वायु प्रदूषण तथा जलवायु संबंधी चुनौतियों से निपटने में दीर्घकालिक मजबूती देगा। प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
3: Stay connected with AIR News. Follow us on X at AIR News Alerts and visit newsonair.gov.in for the latest updates.
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंप दी हैं। इनमें बाल देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद सहित बनाना, अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश और 2030 तक 5,00,000 शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की ई नीलामी का 8वां चरण 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इस चरण में दिल्ली के विभिन्न पहलुओं को दिखाने वाली 30 यादगार स्मृति चिन्ह शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
4: इन स्मृति चिन्हों में 9 फोटो फ्रेम, 9 यादगार वस्तुएं और 6 मूर्तियां तथा प्रतिमाएं शामिल हैं। इस संग्रह में दिल्ली मेट्रो के 2 मॉडल, खेल से जुड़ी यादगार वस्तुएं, धार्मिक वस्तुएं, एक पेंटिंग, कलाकृतियां और हस्तशिल्प की वस्तुएं भी शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि रोहिणी के एक छात्र से लेकर दिल्ली मेट्रो, विधानसभा और नई संसद तक ये यादगार वस्तुएं पूरी दिल्ली की कहानियां बयां करती हैं। ये नीलामी इन यादों को एक बड़ा सार्वजनिक उद्देश्य भी देती है क्योंकि इससे मिलने वाली राशि नमामि गंगे में जाएगी। नीलामी की तिथियों, इसमें शामिल होने की जानकारी और पूरी कैटलॉग के लिए प्रधानमंत्री यादगार वस्तु ई नीलामी पोर्टल pmmomentos.gov.in पर देख सकते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
5: जापान में एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। पुरुष

0: मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियन चिन चैन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ पांचवें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
1: राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि कल आसमान साफ रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महात्मा गांधी की 157वीं और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती पर आज राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने गांधी जयंती और स्वच्छ भारत मिशन दिवस के अवसर पर मालचा मार्केट परिसर में विशेष स्वच्छता अभियान का आयोजन किया। इस अवसर पर खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने नई दिल्ली में खादी महोत्सव का उद्घाटन किया। दिल्ली सहित देश भर में खादी उत्पादों पर विशेष छूट आज से। दिल्ली सरकार ने भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के तहत नॉर्दर्न रिज के लिए फेस वन अधिसूचना को स्वीकृति दी। और एशियाई खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। भारत के 16 स्वर्ण, 25 रजत, 35 कांस्य सहित 76 पदक। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जनाब मुफ्ती हारून निज़ामी ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की हयात व तालीमात के उन्वान से अपना मकाला पेश किया।
1: हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह बर्रे सगीर की तारीख तसव्वुफ के इन अजीम शख्सियात में से है जिन्होंने मोहब्बत, खिदमत खल्क, मजहबी रवादारी और रूहानी तरबियत को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बनाया। आपको महबूब इलाही और सुल्तानुल मशायख जैसे अलकाब से याद किया जाता है। आपकी खानकाह सिर्फ जिक्र और इबादत का मरकज नहीं थी बल्कि इल्म, इस्लाह, अखलाक और इंसान दोस्ती का ऐसा इदारा थी जहां हर तबके के लोग रूहानी रहनुमाई और कल्बी सुकून हासिल करते थे। आपकी रूहानी तरबियत हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसरूद गंज शकर की सोहबत में हुई। उस नस्बत ने आपके मिजाज में मोहब्बत, जुहद, तवक्कुल और खिदमत खल्क को मजीद पुख्ता किया। हज़रत महबूब इलाही के तालीमात का एक अहम पहलू ये है कि इंसान अपने मुर्शिद से वफादारी के साथ साथ दूसरे अहलुल्लाह की सोहबत और उनके फैज़ से भी फ़ायदा उठा सकता है। असल फैज़ अल्लाह ताला की तरफ से है। औलिया इकराम इस फैज़ को हासिल करने का जरिया व वसीला बनते हैं। यही तसव्वुर जो सिलसिले फैज़ सूफी रिवायत की रूह है वो यानी एक बुज़ुर्ग से मिलने वाला फैज़ दूसरे दिलों तक पहुंचता है, फिर वो इल्म, अमल, सोहबत और तहरीर के ज़रिए अगली नस्लों तक मुंतकिल होता है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो रूहानी विरसा हासिल किया उसे अपनी खानखाही ज़िंदगी के ज़रिए आम किया, जिसकी झलक हमें फ़वायदुल फवाद की कई मजलिसों में नज़र आती है। अपने पीर बाबा फरीद के ज़िक्र के साथ साथ हमें उन बुज़ुर्गों के नाम मिलते हैं जिनसे हज़रत का ना कोई सिलसिले से ताल्लुक़ है ना कुछ और है। यानी अपने पीर के साथ साथ कई और बुज़ुर्गों के नाम मिले जिनके वाक़ियात सुनाकर हज़रत महबूब इलाही ने अपने मुरीदीन की इस्लाह की, उनकी इस्लाह करते रहे, उनको समझाते रहे।
0: महबूब इलाही मकाम व मरतबा, ये उन्वान था जनाब खालिद निज़ामी के मकाले का।
2: जब महबूब इलाही पहली बार अपने पीर मुर्शिद शेख इस्लाम बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह की खिदमत में मुरीद होने की इरादा से पहुँचे तो बाबा साहब ने हुजूर महबूब इलाही से मुखातिब होकर फरमाया कि ए आतिश फराहत दिलहा कबाब करदा, सैलाब इश्तियाहत जहाँ खराब करदा, तेरी जुदाई की आग ने बहुत दिलों को कबाब कर रखा है और तेरे इश्तियाक के सैलाब ने बहुत जानों को खराब कर रखा है। हुजूर महबूब इलाही ने अपने पीर मुर्शिद शेख इस्लाम बाबा फरीदुद्दीन गंज शिकर रहमतुल्लाह से बैत हुए तो बाबा साहब ने हुजूर महबूब इलाही के बारे में इरशाद फरमाया कि मैंने आज एक ऐसा दरख्त लगाया है कि जिसके साए में खल्क खुदा पना लेगी। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का मकाम, उनका मरतबा, उनकी शान और उनकी अजमत तो देखिए कि उनके गुजर खलीफा हज़रत ख्वाजा बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह जो लंगर खाने के मसऊल थे, जिनके जहद तकवा परहेजगारी के बारे में हुजूर महबूब इलाही इरशाद फरमाते थे कि हम भी अपनी सोहबत में गम नहीं पाते हैं, वो इस दर्जे के मुत्तकी और परहेजगार थे। एक रोज़ हज़रत ख्वाजा बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह को कोई मसला दरपेश आया तो इसी कश्मकश में थे कि इस असना में बुजुर्ग तशरीफ लाए और उनको कुरान और हदीस की रोशनी में इस मसले का हल बताकर चले गए। जाते हुए उन बुजुर्ग से हज़रत ख्वाजा बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह ने उन बुजुर्ग से कहा कि हुजूर आप कौन हैं और आपका नाम गिरामी इसमें गिरामी क्या है और अगर मुझे मजीद ज़रूरत पेश आई तो मेरी आपसे कहाँ मुलाकात हो सकती है। जाते हुए उन बुजुर्ग ने हज़रत बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि मेरा नाम ख्वाजा फिजर है और आपसे मेरी मुलाकात हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के लंगर खाने में होगी। वो फिजर जिनका कुरान शरीफ में 4-5 बार जिक्र आया है, वो फिजर जिनको अल्लाह सुबहाना तआला ने वक्त के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना रहबर और रहनुमा बनाकर भेजा था।
0: प्रोफेसर अजीजुद्दीन हुसैन ने हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के बचपन का जिक्र करते हुए फरमाया,
3: हजरत निज़ामुद्दीन औलिया बचपन में उनके वालिद का इंतकाल हो गया, वालिदा और एक बहन, और माशी हालात अच्छे नहीं थे। वालिदा ने जब अर्ली एजुकेशन आज उन्हीं के ऊपर ही

0: किरदार है बधाइयों में मुकम्मल करा ली, तो उन्होंने सोचा कि अगर मुझे अपने बच्चे को तालीम के मैदान में परवान चढ़ाना है या तरक्की हासिल करनी है मेरे बेटे को, तो बधाइयों से हमको हिजरत करनी होगी। हिजरत जो है वो सुन्नत नबवी है कि आप हिजरत कीजिए, लेकिन कैसे हालात में, जब माशी हालात अच्छे नहीं। वो दिल्ली आ गई तो वाजुल फात में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा कि अक्सर ऐसे मौके आते थे कि मेरी वालदा सुबह को कह देती थी कि निज़ाम आज से घर में खाने के लिए नहीं और हम अल्लाह के मेहमान, और तीन तीन दिन ऐसे गुजरते थे कि खाना मैसर नहीं आता था। इसी में हुसूल इल्म किया और वो दर्जा पाया कि दिल्ली में कोई उनका इल्म के मामले में मुकाबला नहीं कर सकता। तो अगर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का हम जिक्र करेंगे तो बीवी ज़ुलैखा का जिक्र लाजमी करना होगा कि उनके पीछे उनको ये दर्जा दिलाने में एक औरत, उनकी माँ का हाथ था जिनके माशी हालात अच्छे नहीं थे। आज हम कहते हैं साहब पैसा नहीं है, तालीम हासिल कहाँ से करें, अरे तीन तीन दिन के फाके, लेकिन तालीम हासिल की और अपने बेटे को उस दर्जे पे पहुँचाया कि बड़े बड़े जो मालदार उलमा थे वो उस दर्जे को नहीं पहुँच सके।
1: डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल राफे ने ख्वाजा हसन सानी निज़ामी पर अपना मकाला पेश किया।
2: फ़ख्र दिल्ली हज़रत ख्वाजा हसन सानी निज़ामी, मशहूर सूफी बुजुर्ग और उर्दू के साहिब तर्ज अदीब और अरबी फारसी के आलिम, नेस मुफस्सिर कुरान व हदीस शम्सुल उलमा, मुसव्विर फितरत हज़रत ख्वाजा हसन निज़ामी दहलवी, सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के पांचवे फर्जंद थे। आपकी इब्तदाई दीनी और मजहबी तालीम खुद हजरत ख्वाजा हसन निज़ामी और इनके आलिम और अदीबा शरीक हयात मोहतरमा ख्वाजा हूर बानो की मरहून मिन्नत है। अंग्रेजी तालीम भी स्कूल जाने की उम्र से ही पहले एंग्लो इंडियन गवर्नेंस के जरिए शुरू करवा दी गई थी, जो रस्मी तालीम के साथ साथ रहन सहन के आदाब भी सिखाती थी। स्कूल और कॉलेज की तालीम के साथ आपको बाद हिंदुस्तान गिर शोहरत के मालिक उलमाए दीन, दीनिया और हदीस व तफसीर के असातिज़ा से शर्फ तिलमस हासिल करने का मौका मिला। हजरत मौलाना मोहम्मद असलम पूरी, मौलाना ख्वाजा अब्दुल हई साहब, रस्मी तालीम के दौरान हजरत ख्वाजा हसन निज़ामी की सरपरस्ती की वजह से इनको मजमून निगारी, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का तजुर्बा चौथी जमात से ही होने लगा। जबकि रेडियो प्रोग्राम पहले से रिकॉर्ड करके नहीं बल्कि डायरेक्ट नशर किए जाते थे। स्कूल से पहले की तालीम की वजह से आपने अपने मशहूर उस्ताद अब्दुल गफ्फार मधुली की किताब एक मुअल्लिम की जिंदगी, जो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों के निसाब में शामिल है, इसकी तसीह और प्रूफ रीडिंग का काम दूसरी जमात की तालीम के दौरान अपने उस्ताद के साथ मिलकर अंजाम दी। पहली जमात से ग्रेजुएशन तक की तालीम जामिया मिलिया इस्लामिया से मुकम्मल की। आज़ादी यानी 1947 के बाद दो तीन बरस सारे ख़ानदान के साथ हैदराबाद मुंतकिल हुए थे और वहीं तालीम भी जारी रखी। आला तालीम के लिए ग्रेजुएशन के बाद मशहूर फ्रांसीसी मुश्तरक प्रोफेसर लुई मीसिनॉन इन्हें तसव्वुफ पर काम करने के लिए अपने साथ फ्रांस ले जाना चाहते थे, लेकिन आपने अपने वालिद की अलालत की वजह से हिंदुस्तान में रहकर अपने वालिद की खिदमत को ज़रूरी समझा और हजरत हसन निज़ामी की मशहूर रिसाले मुनादी को, जो 1926 से जारी था मगर वालिद की अलालत की वजह से 1954 में बंद हो गया था, वालिद की ज़िंदगी में ही जनवरी 1955 से जारी कर दिया, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जारी है।
1: डॉक्टर मोहम्मद अकील ने हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया पर अपना मकाला पेश करते हुए कहा,
3: हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया

सुन्नत का दीदार होने लगा, बागे जन्नत का दीदार होने लगा। ख्वाबों में जब दयारे निजाम आ गया, ख्वाबों में

इनके मंगतों में जब और उसको महबूब ने दी मैं खुसरबी उस

0: के जो भी
1: आप हैं जनाब फखरुद्दीन निजामी।
2: हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही एक बुजुर्ग का वाकया बयान फरमाते हैं कि गजनैन में एक बुजुर्ग थे, नाम उस्मान हर्ब आबादी था। इनका पेशा ये था, चुकंदर वगैरह सब्जी पकाते और लोगों को बेचते। यहाँ तक कि लोग आते और इनको खोटा सिक्का देते, तब भी इनको वो सब्जी देते। जिस तरह इनके पास लोग खरा सिक्का लेकर आते, तब भी इनको वो उसी तरह सब्जी देते, यानी खरे और खोटे में तमीज़ नहीं करते थे। तो खलकत ये समझने लगी थी कि हजरत उस्मान हरबा आबादी को खरे और खोटे की तमीज़ नहीं है। लिहाजा अक्सर लोग इनके यहाँ खोटा सिक्का लेकर आते और उनको देते, तो ये खोटा सिक्का कबूल करते और उनको सब्जी देते। तो लिहाजा जब इनका आखिरी वक्त आया, तो लोगों ने इन्हें देखा कि ये आसमान की तरफ इशारा करके कह रहे हैं, ऐ अल्लाह, तू खूब जानता है कि खलकत मुझे खोटा सिक्का देती थी और मैं इसे वापस नहीं करता था, और मैं इनको इसकी एवज वही खाना देता था जो खरे सिक्के लेकर आए। अब मैं तुझसे ये गुजारिश करता हूँ कि ऐ अल्लाह, अगर मेरी ताक खोटी है, मेरी नमाजें खोटी हैं, तो मेरे मुंह पे दे मत मारना, इसे कबूल कर लेना। क्योंकि अल्लाह ताला ये वादा करा है कि हम जिस तरह खलकत से बर्ताव करते हैं, अल्लाह ताला हमसे वैसी बर्ताव करेगा। हम अगर खलकत से सिला रहमी करेंगे, अल्लाह हमसे सिला। हम अगर अफू व दरगुजर का मामला करेंगे, अल्लाह हमारे साथ अफू व दरगुजर का मामला करेगा।
1: अपने सदारती खुतबे में प्रोफेसर अख्तरुल वासी ने फरमाया,
3: मुझे मुबारकबाद देनी है खुलदाबाद में हजरत

अभी आप महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के 723वें उर्स मुबारक की सहरोजा तकरीबात पर मबनी ये रेडियो रिपोर्ट सुन रहे थे। तरतीब पेशकश थी इंतजार अली सैफी की और आपकी खिदमत में ये रेडियो रिपोर्ट पेश की मोहम्मद अली कमाल ने।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। हेलो, सलाम, नमस्ते एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द प्रोग्राम गीत मालिका। फिल्म संगीत की खूबसूरत सी गीत मालिका की रोलर कोस्टर राइड को लेकर आज हाजिर हूं मैं आपके साथ, आपकी मितवा, आपकी साथी, आपकी अपनी दीप्ति। दोस्तों, कभी मौसम की खुमारी और कभी नजरों की शरारत, कभी यूं ही अचानक ही अपने भीतर की नई रोशनी से मुलाकात। संगीत के रंग भी ना कितने निराले होते हैं, है ना? तो चलिए आज शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जिसमें फूलों की खुशबू है, हवाओं की सरसराहट है और आवारा से भंवरों की अपनी ही मदमस्त सी धुन है। आज हमारी रोलर कोस्टर राइड का पहला स्टेशन है फिल्म सपने का ये गीत, हेमा सरदेसाई और मलेशिया वासुदेवन की आवाजों में।

हाँ जी, और हौले हौले गीत गाते दिल की नजरें जब उनसे यूं ही बेइरादा मिल जाएं तो चलिए अब बात करते हैं उस पल की जब किसी से नजरें मिलना महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक दिलचस्प कहानी की शुरुआत बन जाता है। कभी कभी ना एक छोटी सी मुलाकात भी निगाहों में कितने खूबसूरत से रंग भर देती है ना। आपको सुनवा रही हूँ विपिन सचदेवा साहब की खूबसूरत आवाज में फिल्म सनम बेवफा का ये गीत।

और भी मेरा तो मानना है कि नज़रें इरादे से मिलें या बे-इरादा, कभी-कभी बात ना सिर्फ एक मुलाकात तक नहीं रुकती। अब जरा सोचिए तो, कभी-कभी एक नज़र, एक मुस्कान और बिना कुछ बोले बहुत कुछ कह जाना, है ना? खूबसूरत सा सिलसिला। चलिए बढ़ाते हैं इसी खूबसूरत सिलसिले को थोड़ा सा और आगे।

और बस इसी गीत के साथ आज की रोलर कोस्टर राइड को मैं दीप्ति पाठक निधीश यहीं देती हूँ विराम। बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगी यूं ही किसी संगीतमय मोड़ पर। तब तक आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के संग।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मित मच्छर की बहादुरी की सराहना की। कहा, भारतीय जान लेते नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और एशियाई खेलों में भारत ने 44 वर्ष बाद महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल, मुक्केबाज परवीन हुडा, लवलीना बोरगोहाइन और अंकुश पंघाल ने भी स्वर्ण पदक जीते। भारत 16 स्वर्ण सहित कुल 76 पदकों के साथ पदक तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैप्टन स्मित मच्छर से फोन पर बात की। श्री मोदी ने इसराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन स्मित मच्छर की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वे लोग नहीं हैं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। श्री मोदी ने कैप्टन मच्छर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने पलक झपकते ही जो फैसला लिया, उससे सैकड़ों यात्रियों की जान बच सकी।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया, और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
0: बुधवार को दुबई से तल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, जिनमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अस्पताल से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में कैप्टन मच्छर ने कहा कि 17 वर्ष के फ्लाइंग अनुभव ने उन्हें हालात की गंभीरता को समझने और तुरंत कार्रवाई करने में मदद की। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वे देश से दूर हैं, लेकिन देश की संस्कृति से नहीं। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मित मच्छर के इलाज का इंतजाम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार प्रकट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं कि मन की बात

0: इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है?
1: 2014 अक्टूबर से आकाशवाणी पर शुरू हुए मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से संवाद करते हैं। यह कोई नीतिगत संबोधन नहीं है। इसमें किसी आम नागरिक द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को सामने लाया जाता है, किसी योजना को सरल और सहज भाषा में समझाया जाता है और स्वच्छता, जल संरक्षण या आत्मनिर्भरता जैसे विषयों में लोगों से सहयोग की अपील की जाती है। रेडियो उन जगहों तक भी पहुंचता है जहां संचार का कोई और माध्यम नहीं पहुंच पाता। अप्रैल 2023 में मन की बात के 100वें एपिसोड में अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा था,
2: मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात, मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया।
1: मीडिया से बातचीत में लखनऊ के विभिन्न हिस्सों से श्रोताओं ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को एक दूसरे से और देश से जुड़ने का एक नया माध्यम प्रदान किया है।
3: प्रधानमंत्री जी ने जो भी पहल की है देश के हित में की है, तो हमें उससे भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक घर का गार्जियन जैसे परिवार का गार्जियन को समझाना चाहिए। आप भारत का प्रधानमंत्री हमें समझा रहा है तो हमें उसमें अमल करना चाहिए।
4: देश में बहुत लंबे समय बाद रेडियो की उपयोगिता बढ़ी है। प्रधानमंत्री जी ने रेडियो के माध्यम से अपना संदेश गाँव के उन नौजवानों तक पहुँचाया जो इस सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में पिछड़ गए थे और उनकी बात को कर रहे हैं।
1: आज करोड़ों भारतीय प्रधानमंत्री के इस संबोधन को सुनते हैं। एक आकांक्षी भारत उत्सुकता के साथ उन कहानियों को सुनता है जिनमें बदलाव के वास्तविक अनुभव सामने आते हैं। मन की बात ने सार्वजनिक संचार के स्वरूप को एक नया रूप दिया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर यह बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। एक रिपोर्ट।
5: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने विकासशील देशों को विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी नीतिगत गुंजाइश देने तथा सर्वसम्मति से फैसले लेने की व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। इस बीच श्री गोयल ने ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। आरजू के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भक्ति गीत गाए। विश्व भर में स्थित भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों ने भी आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उनके सत्य, अहिंसा और शांति के संदेश को याद किया। चीन में भारतीय राजदूत विक्रम दोरईस्वामी ने भारतीय समुदाय और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ पेइचिंग में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। जापान में भारत की राजदूत नागुमा मल्लिक और भारतीय समुदाय के सदस्यों ने टोक्यो के

0: इडोगावा में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पाकिस्तान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहरीन और दक्षिण कोरिया में भी इसी तरह के स्मृति कार्यक्रम आयोजित किए गए। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के अध्यक्ष मनोज गोयल ने आज बताया कि नई दिल्ली के क्रॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट आज से 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि निस्वार्थ सेवा भारत की संस्कृति और सभ्यतागत मूल्यों का मूल आधार है। नई दिल्ली में आज आयोजित 11वें संत ईश्वर सम्मान समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश के महान संतों और विचारकों ने लोगों को स्वार्थ की संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठकर दूसरे के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने की प्रेरणा दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहें, X@AIR News हिंदी और Instagram पर AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को शिशु देखभाल अवकाश संबंधी सिफारिशें सौंप दी हैं। इनमें शिशु देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद रहित बनाना, अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश और 2030 तक 5,00,000 शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। आयोग ने ये सिफारिशें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय को सौंपी हैं। एक रिपोर्ट।
2: आयोग ने अनौपचारिक गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी मातृत्व और बाल देखभाल लाभ प्रदान करने की सिफारिश की है। आयोग ने पाया कि 90% से अधिक महिला श्रमिक प्रभावी कवरेज से बाहर हैं। आयोग ने मौजूदा महिला केंद्रित बाल देखभाल अवकाश ढांचे को लिंग भेद रहित बाल देखभाल अवकाश में बदलने की सिफारिश की है, जो दोनों अभिभावकों में से किसी एक को उपलब्ध हो। रिपोर्ट में मौजूदा 730 दिनों के बाल देखभाल अवकाश ढांचे को दोनों कामकाजी अभिभावकों के बीच समान रूप से विभाजित करने का प्रस्ताव है। इसमें प्रत्येक को 365 दिन मिलेंगे या साझा पूल बनाने का प्रस्ताव है, जहां दोनों अभिभावक एक ही संगठन में काम करते हों। 0 से 2 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए रिपोर्ट में प्राथमिक और माध्यमिक देखभालकर्ताओं के बीच 60:40 के रूप में साझा देखभाल मॉडल का भी प्रस्ताव है। इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को सार्वभौमिक और कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार बनाने का भी प्रस्ताव है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मिजोरम में कल दुखद सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले सूचना और प्रसारण जगत के 3 सदस्यों के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये दुर्घटना तब हुई जब अधिकारी आधिकारिक ड्यूटी पर थे और उनका वाहन गहरी खाई में गिर गया। मृतकों में भारतीय सूचना सेवा के 2 वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर इंगम पामे और नामपीबू मरिनमाई तथा केंद्रीय संचार ब्यूरो के कर्मचारी एच लियानवेला शामिल हैं। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
3: जापान में एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया।
4: मैं सभी देशवासियों को धन्यवाद करता हूँ, उनकी दुआओं से ही ये मेडल आया। यही सोच के उतरे थे मैट पे कि भाई देश के लिए गोल्ड लाना है, और आखिरी तक मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और भगवान की दया से गोल्ड आया देश के लिए। अपने देशवासियों को डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि उनकी दुआ ही सबसे ज्यादा काम आती है।
3: पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियन चिनचेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता।
5: बहुत ज्यादा स्पेशल है ये मेडल मेरे लिए, कहीं ना कहीं मैं बॉक्सिंग छोड़ने भी वाली थी, उसके बाद से फिर से मेंटली स्ट्रांग होके आना और जीतना वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात, और मैं सोच के आई थी कि इस बार मुझे बर्थडे पे गोल्ड मेडल ही चाहिए।
3: महिला रिकर्व टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ 5वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
0: दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी है कि दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास

0: 6 गेट खोल दिए गए हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी अब उपलब्ध है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में अगले दो दिनों तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में 5 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। कल लक्षद्वीप, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी की सराहना की। कहा, भारतीय जान लेते नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और एशियाई खेलों में भारत ने 44 वर्ष बाद महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल, मुक्केबाज परवीन हुडा, लवलीना बोरगोहाइन और अंकुश पंघाल ने भी स्वर्ण पदक जीते। भारत 16 स्वर्ण सहित कुल 76 पदकों के साथ पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, this is Akashvani. I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi praises brave pilot Smith Machar for saving hundreds of lives and foiling attempt to crash Israel-bound flight. Asserts Indians are those who risk their lives to save others, not take lives. Commerce Minister Piyush Goyal says India is building manufacturing value chains from design to finished goods as a trusted link in global supply chains. Nation pays homage to father of the nation Mahatma Gandhi and former Prime Minister Lal Bahadur Shastri on their birth anniversary. And in Asian Games, India win first women's hockey gold in 44 years. Wrestler Sujit Kalkal and boxers Parveen Hooda, Lovleen Borgohain and Ankush Pangal also clinched gold medals. India climbed to 5th position in overall medal standings, with tally rising to 76, including 16 gold. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today spoke with Captain Smith Machar over the phone, praising his bravery and presence of mind in foiling an alleged attempt to crash an Israel-bound Fly Dubai flight. The Prime Minister said, Indians are not those who take lives, but those who are willing to risk their own lives to save others. He lauded Captain Machar for taking a split-second decision that helped save the lives of hundreds of passengers.
2: Aapki himmat ne, aapke dhairya ne, और आपकी सूझबूझ ने, यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई। और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं है, जान बचाने वाले लोग। और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ। मित्र, अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
3: मेरे लिए, मैं सर से भी बोल रहा था, आप मेरे सबसे बड़े एक्टर से और मेरे को इनसे कॉल करके मेरी ऑफिसर कर रहे हैं, मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है।
1: On Wednesday, Captain Machar got seriously injured after being stabbed by his co-pilot in the cockpit of Fly Dubai flight travelling from Dubai to Tel Aviv. The flight was carrying 174 passengers, including 27 children. The pilot is currently undergoing treatment at a hospital in the UAE. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has called for a WTO-compliant approach to correcting global trade distortions at the concluding day of G20 Trade Ministers' meeting in Milwaukee, US. Speaking on structural excess capacity and production, Mr. Goyal said that India is the fastest-growing large economy in the world, with a domestic demand-driven economy serving 1.4 billion people. He highlighted that India is building manufacturing value chains from design to finished goods as a trusted link in global supply chains. He said India's manufacturing capacity serves its domestic and global needs

0: standings, the country's medal tally has risen to 76, including 16 gold, 25 silver and 35 bronze medals. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi have congratulated the medal winners. The India Meteorological Department IMD has forecast heavy rainfall over Arunachal Pradesh during the next 2 days. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi praises brave pilot Smit Machar for saving hundreds of lives and foiling attempt to crash Israel-bound flight, asserts Indians are those who risk their lives to save others, not take lives. Commerce Minister Piyush Goyal says India is building manufacturing value chains from design to finished goods as a trusted link in global supply chains. Nation pays homage to father of the nation Mahatma Gandhi and former Prime Minister Lal Bahadur Shastri on their birth anniversary. And in Asian Games, India win first women's hockey gold in 44 years. Wrestler Sujit Kalkal and boxers Parveen Hooda, Lovlina Borgohain and Ankush Pangal also clinched gold medals. India climbed to 5th position in overall medal standings with tally rising to 76, including 16 gold. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बहादुर पायलट स्मित मच्छर की सैकड़ों जाने बचाने और इसराइल जाने वाली परवाज को तबाह करने की कोशिश नाकाम बनाने पर तारीफ की। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय वो होते हैं जो दूसरों की जान नहीं लेते हैं बल्कि दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल देते हैं। तिजारत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आलमी सप्लाई चेन में एक काबिल-ए-एतमाद शराकतदार के तौर पर डिजाइन से लेकर तैयारशुदा अशिया तक मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन तश्कील दे रहा है। मुल्क ने बाबाए कौम महात्मा गांधी और साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। और एशियाई खेलों में भारत ने 44 सालों में खवातीन हॉकी में सोने का पहला तमगा जीता। पहलवान सुजीत कलकल और मुक्केबाज प्रवीण हुड्डा, लोवलीना बोरगोहाइन और अंकुश पंडाल ने भी सोने के तमगे हासिल किए। भारत तमगों की फहरिस्त में 5वें मकाम पर पहुंच गया है। उसने तमगों की मजमू तादाद बढ़कर 76 हो गई, जिनमें सोने के 16 तमगे शामिल हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कैप्टन स्मित मच्छर से फोन पर बात की और इसराइल जाने वाली फ्लाई दुबई की परवाज को हाईजैक करने की कोशिश के दौरान उनकी बहादुरी और हाजिर दिमागी की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारतीय वो लोग नहीं हैं जो दूसरों की जान लेते हैं बल्कि वो हैं जो दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने कैप्टन मच्छर के उस फौरी फैसले को सराहा जिससे सैकड़ों मुसाफिरों की जान बचाने में मदद मिली।
2: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने यानी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं हैं, जान बचाने वाले लोग हैं। और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ। मित्र, अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
3: मेरे लिए, मैं सर से भी बोल रहा था, आप मेरे सबसे बड़े आइडल हैं और मेरे को इनसे कॉल करके मेरी फ्रेंड्स कर रहे हैं, मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है।
1: गुज़श्ता बुध के रोज कैप्टन मच्छर उस वक्त शदीद तौर पर जख्मी हो गए जब दुबई से तेल अबीब जाने वाली फ्लाई दुबई की परवाज के कॉकपिट में उनके साथी पायलट ने उन्हें छुरी मार दी। इस परवाज में 174 मुसाफिर सवार थे जिनमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात के एक अस्पताल में जेरे इलाज हैं। تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے امریکہ کے شہر ملواکی میں G20 وزرائے تجارت کی میٹنگ کے اختتامی دن عالمی تجارت میں پائی جانے والی بے قاعدگیوں اور عدم توازن کو دور کرنے کے لیے عالمی تجارتی تنظیم WTO کے ضابطوں کے مطابق طریقہ کار اختیار کرنے پر زور دیا ہے۔ ڈھانچہ جاتی اضافی صلاحیت اور پیداوار کے موضوع پر خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ بھارت دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی بڑی معیشت ہے اور اس کی معیشت 140 کروڑ لوگوں کی ضروریات پوری کرنے والی

0: कम कीमत पर बैरून मुल्क फरोख्त करने और हरीफों को मार्केट से बाहर करने के लिए जानबूझकर इंतहाई कम कीमत मुकर्रर करने का रुझान पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे खदशात से निमटने के लिए WTA के जाब्तों से हम आहंग इकदाम किए जाते हैं, जिनमें डंपिंग मुखालिफ महसूल और इजाफी दरामदी महसूल शामिल हैं। G7 के रुकन मुमालिक के रहनुमाओं ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक हंगामी मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें आलमी सतह पर डीजल की सप्लाई, ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों और अमरीका और यूरोप के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर तबादला ख्याल किया गया। ये मीटिंग ऐसे वक्त में हो रही है जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह धमकी दी है कि अगर यूरोपीय ममालिक ने अपने स्ट्रेटेजिक जखायर से ईंधन जारी नहीं किया तो अमरीका डीजल की बरामदात रोक सकता है। इसके अलावा यूक्रेन के जरिए रूस की रिफाइनरीज को नुकसान पहुंचाने के बाद रूस ने डीजल की बरामदात पर आयद पाबंदी में तौसी कर दी है, जबकि चीनी रिफाइनरियों ने मुल्की जरूरियात के लिए डीजल की बरामदात मुअत्तल कर दी हैं। ये वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने बुलाई थी ताकि G7 ममालिक के रहनुमाओं को इस बात पर आमादा किया जा सके कि वो बरामदाती पाबंदियां आयद किए बगैर पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी मंडी को मुस्तहकम करने के इकदाम कर सकें। यूरोपीय कमीशन के अहदेदारान ने डीजल की बरामदात पर अमरीका की मुजवजा पाबंदी को मुस्तरद करते हुए मुतनब्बे किया कि इससे काबिल एतमाद शराकत दार के तौर पर अमरीका पर एतमाद को नुकसान पहुंचेगा।
1: तजारत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि G20 ममालिक के साथ भारत की तजारत का इन्हिसार एक शफाफ, गैर इम्तियाजी और कवायद पर मबनी तजारती निज़ाम है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा पसंदीदा मुल्क का दर्जा उस निज़ाम की एक अहम जमानत है, जिसके तहत सबसे छोटे ताजिर और सबसे बड़े ताजिर के लिए यकसां शरायत लागू होती हैं। आलमी सप्लाई चेन में जबरी मशक्क़त के खात्मे के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जबरी मशक्क़त के खात्मे के लिए भारत का अज़्म कतई और गैर मशरूत है। वजीर मौसूफ ने एक बार फिर कवायद पर मबनी मुनसिफाना, मसावी, गैर इम्तियाजी, शफाफ, जामे और कसीर जहती तजारती निज़ाम के लिए भारत के अज़्म का अयादा किया। जनाब गोयल ने ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और जनूबी कोरिया समेत मुतअद्दिद ममालिक के अपने हम मनसबों से मुलाकात भी की। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: मुल्क ने आज बाबा कौम महात्मा गांधी को उनके 157वें योम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया है।

0: कौमी राजधानी में राजघाट पर बापू की समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा यानी सभी मजाहिब के दुआइया जलसे का एहतमाम किया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह सर्वधर्म प्रार्थना में शिरकत की और बाबाए कौम को गुलहाए अकीदत नजर किए। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और दीगर रहनुमाओं ने भी राजघाट पर महात्मा गांधी को गुलहाए अकीदत नजर किए। नायब सदर और वजीर आजम ने आज शाम नई दिल्ली में गांधी स्मृति पर महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश किया। प्रोग्राम के दौरान नामवर गुलकारों के साथ साथ स्कूली तलबा ने रूहानी नगमे गाए। मुल्क ने आज साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को उनके 122वें यौमे पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। वो 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में पैदा हुए, जिसे पहले मुगल सराय कहा जाता था। नौउम्री में वो भारत की तहरीक आजादी में शामिल हुए और साल 1921 की अदम तावन तहरीक में हिस्सा लिया। आजादी के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने उत्तर प्रदेश और उसके बाद मरकजी हुकूमत में कई अहम ओहदों पर खिदमात अंजाम दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साबिक वजीर आजम को आज सुबह कौमी राजधानी में वाक़ उनकी यादगार विजय घाट पर गुलहाए अकीदत नजर किए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अंथक अजम का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत साल 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की खातिर अंथक काम कर रही है। आज अपनी खसूसी सीरीज में हम तस्करा कर रहे हैं कि मन की बात के जरिए इस नजरिए को किस तरह अमली शक्ल दी गई है।
1: आकाशवाणी पर मन की बात महाना रेडियो प्रोग्राम के तौर पर शुरू हुआ था। इसके आगाज के बाद से एक भी महीना ऐसा नहीं गुजरा जब ये प्रोग्राम नशर ना हुआ हो। ये कोई पॉलिसी से मुतालिक खिताब नहीं है। इस प्रोग्राम में आम लोगों के उन कामों को उजागर किया जाता है जो उन्होंने अच्छे तरीके से अंजाम दिए हों।

0: इस प्रोग्राम के जरिए किसी सरकारी स्कीम को आम फहम जबान में समझाया जाता है और सफाई, सुथराई, पानी या खुद किफालत जैसे मामलात में आवाम से ताउन की अपील की जाती है। रेडियो उन लोगों तक भी पहुंचता है जहां कोई और ज़राए इब्लाग नहीं पहुंच पाते हैं। इस प्रोग्राम ने मुल्क के आवाम से बातचीत का एक ऐसा अंदाज पैदा किया है जो ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ना ही इंतखाबी मुहिम। अप्रैल 2023 में मन की बात के 100वें नशरिये के मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मन की बात में जिन मौजूदात या स्कीमों का अहाता किया गया वो अवामी तहरीक की शक्ल अख्तियार कर गईं।
1: मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात, मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया और आप लोगों ने बना दिया।
0: मीडिया से बात करते हुए लखनऊ के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले सामेईन ने कहा कि मन की बात प्रोग्राम के जरिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ आवाम तक पहुंचाया है।
2: प्रधानमंत्री जी ने जो भी पहल की है देश के हित में की है तो हमें उससे भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक घर का गार्जियन जैसे परिवार का गार्जियन को समझाना चाहिए। आभार का प्रधानमंत्री हमें समझा रहा है तो हमें उसमें अमल करना चाहिए।
3: देश में बहुत लंबे समय बाद रेडियो की उपयोगिता बढ़ी है। प्रधानमंत्री जी ने रेडियो के माध्यम से अपना संदेश गांव के उन नौजवानों तक पहुंचाया जो इस सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में पिछड़ गए थे और उनकी बात वो कर रहे हैं।
0: मीडिया से बात करते हुए मारूफ अदाकार आमिर खान ने कहा कि मन की बात प्रोग्राम ने लोगों को काफी मुतासिर किया है। आज करोड़ों भारतीय वजीर आजम के खिताब को सुनते हैं और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से सामने आने वाली हुक्मरानी की कामयाबियों की कहानियां सुनते हैं। उमंगों वाला भारत, बदलती हुई हकीकतों की दास्तानें गहरी दिलचस्पी और जुस्तुजू के साथ सुनता है। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
4: भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आइंदा दो दिन के दौरान अरुणाचल प्रदेश में शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। IMD ने कहा है कि इस महीने की 5 तारीख तक तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। बरतानवी भारतीय शतरंज खिलाड़ी बोधना सिवानंदन के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की जानिब से खवातीन का ग्रैंड मास्टर खिताब WGM जीतने वाली सबसे कम उम्र खिलाड़ी होने का एतराफ किया गया है। इस 11 साल स्कूली तालिबा ने समरकंद उज्बेकिस्तान में मुनक़द 46वें शतरंज ओलंपियाड को जीतकर तारीख रकम की थी जिससे वो बावकार WGM खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गई थी। भारत की सरकर्दा ट्रैप शूटर नीरू ढांडा इतवार को आईची नागोया में होने वाली एशियाई खेलों की इख्तितामी तकरीब में भारत की खवातीन परचम बरदार होंगी। जापान के आईची नागोया में जारी एशियाई खेलों में सोने के तमगे जीतने का सिलसिला जारी है। खेल के 13वें दिन भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए हॉकी, मुक्केबाजी, कुश्ती और तीरंदाजी में 6 सोने के तमगे हासिल किए और अपनी महारत, अज्म और खेल के आला मेयार का मुजाहिरा किया। खवातीन हॉकी के फाइनल में भारतीय टीम ने सख्त मुकाबले में दिफाई चैंपियन चीन को 0-1 देकर सोने का तमगा जीता। लाल रेमेम सियामी ने भारत की जानिब से फैसला कुन वाहिद गोल किया जबकि गोलकीपर सविता पूनिया ने पेनल्टी स्ट्रोक का बचाव करते हुए भारत की बढ़तरी बरकरार रखी और सोने का तमगा जीता। एशियाई खेलों में भारतीय खवातीन हॉकी टीम ने 44 सालों के लंबे इंतजार के बाद पहला सोने का तमगा हासिल किया है। इसके साथ ही भारतीय खवातीन हॉकी टीम ने 2028 के लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक्स खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इससे पहले भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल मुकाबले में शानदार वापसी करते हुए सोने का तमगा जीता। मर्दों के 80 किलोग्राम जुमरे के फाइनल में अंकुश पंघल ने जनूबी कोरिया के किम मिन सियोंग को 4-0 से हराकर सोने का तमगा जीता। भारतीय खातून मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाइन ने 75 किलोग्राम जुमरे के फाइनल में चीन की खिलाड़ी को हराकर जीत हासिल की। इसके साथ ही तमगे की फहरिस्त में भारत 5वें नंबर पर पहुंच गया है। भारत के तमगों की तादाद बढ़कर 76 हो गई है जिसमें सोने के 16, चांदी के 25 और कांसे के 35 तमगे शामिल हैं। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बहादुर पायलट स्मिथ मच्छर की सैकड़ों जाने बचाने और इसराइल जाने वाली परवाज को तबाह करने की कोशिश नाकाम बनाने पर तारीफ की। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय वो होते हैं जो दूसरों की जान नहीं लेते हैं बल्कि दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में

डाल देते हैं। तिजारत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आलमी सप्लाई चेन में एक काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर डिजाइन से लेकर तैयारशुदा अशिया तक मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन तश्कील दे रहा है। मुल्क ने बाबा कौम महात्मा गांधी और साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया और एशियाई खेलों में भारत ने 44 सालों में खवातीन हॉकी में सोने का पहला तमगा जीता। एशियाई खेलों में भारत तमगों की फेहरिस्त में 5वें मकाम पर पहुंच गया है। इसके तमगों की मजमुई तादाद बढ़कर 76 हो गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

كذبت ثمود بطغواها.

بفزع إذا عن أرضنا بعيد.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैप्टन स्मिथ मच्छर से फोन पर बात की। श्री मोदी ने इसराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वे लोग नहीं हैं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। श्री मोदी ने कैप्टन मच्छर की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि पलक झपकते ही जो फैसला लिया उससे सैकड़ों यात्रियों की जान बच सकी।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
0: बुधवार को दुबई से तेल अवीव

0: आ रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, जिसमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अस्पताल से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में कैप्टन मच्छर ने कहा कि 17 वर्ष के फ्लाइंग अनुभव ने उन्हें हालात की गंभीरता को समझने और तुरंत कार्रवाई करने में मदद की। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वे देश से दूर हैं, लेकिन देश की संस्कृति से नहीं। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छर के इलाज का इंतजाम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार प्रकट किया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। कृतज्ञ राष्ट्र ने कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भक्ति गीत गाये। केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से कहा कि वो जहाज निर्माण और समुद्री क्षमता के मामले में भारत को आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में अहम भूमिका निभाए। शिपिंग कॉरपोरेशन के कामकाज के 65 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में श्री सोनोवाल ने भारत की ऊर्जा और व्यापार सुरक्षा को बनाए रखने में शिपिंग कॉरपोरेशन की भूमिका पर जोर दिया। पंजाब में सीमा सुरक्षा बल BSF ने तरन तारण सेक्टर में दो पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। आकाशवाणी संवाददाता ने बताया कि पाकिस्तानी घुसपैठियों ने अवैध रूप से सीमा पार की थी। तैनात सुरक्षाकर्मियों के चेतावनी दिए जाने के बावजूद वे आगे बढ़ते रहे, इसलिए BSF को गोली मारनी पड़ी। जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारत का स्वर्णिम अभियान जारी है। कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में एक एक स्वर्ण के साथ मुक्केबाजी में 3 स्वर्ण पदक भी शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियन चिनचैन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहला स्वर्ण अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ 5वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi yesterday spoke with Captain Smith Mchar over the phone, praising his bravery and presence of mind in foiling an alleged attempt to crash an Israel-bound Fly Dubai flight. The Prime Minister said, Indians are not those who take lives, but those who are willing to risk their own lives to save others. He lauded Captain Mchar for taking a split-second decision that helped save the lives of hundreds of passengers.
2: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने, यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं है, जान बचाने वाले लोग हैं। और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन

जी आकाशवाणी दिल्ली का ये IR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। समय हुआ है 1:10 और 10 सेकंड। श्रोताओं, अब समय है गोल्डन एरा गीत सुनहरे फिल्म संगीत कार्यक्रम का, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं पुराने हिंदी फिल्मों के सुनहरे दौर के गीतों को। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम। लेकर मैं आपके साथ हाजिर हूँ चेतन, और कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म महल से, और गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर।

कार्यक्रम में आगे आइए सुनते हैं लता मंगेशकर को ही, फिल्म मल्हार में। ये जो फिल्म है ये 1951 प्रदर्शित फिल्म रही है और इसकी जो गीत रचना है वो है कैफ इरफानी की और संगीत दिया है रोशन ने।

अभी आप सुन रहे थे तलत महमूद को, फिल्म संगदिल में। इसकी गीत रचना थी राजेंद्र किशन की और संगीत दिया है सज्जाद ने। और कार्यक्रम में आगे ये सुनते हैं तलत महमूद को ही एक और फिल्म में।

ये जो गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म ठोकर में तलत महमूद साहब ने गाया था और इसे संगीत दिया था सरदार मलिक ने। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और गीत फिल्म टैक्सी ड्राइवर से। गायक कलाकार हैं किशोर कुमार और साथी। गीत रचना है शायर लुधियानवी की और संगीत दिया है SD वर्मन ने।

0: हवा निकल गई।
1: जैक लगाओ, क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक, टेपनिंग पहिया, अरे पंपिंग।

कार्यक्रम में आ गया। ये सुनते हैं लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम है मयूर पंख, गीत रचना है हसरत जयपुरी की और संगीत दिया है शंकर जय किशन ने।

कार्यक्रम में आगे आइए सुनते हैं लता मंगेशकर को, फिल्म कुंदन में संगीत दिया है गुलाम मोहम्मद ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे आइए सुनते हैं आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और शमशाद बेगम को। फिल्म का नाम है CID, 1956 प्रदर्शित ये फिल्म है। बहुत ही खूबसूरत गीत है, लेके पहला पहला प्यार। गीत रचना है मजरूह सुल्तानपुरी साहब की और संगीत दिया है OP नैयर साहब ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

0: से न पूछो कि तुम मेरे कौन हो,
1: तो बताओ कि तुम मेरे कौन
2: हो। जी हाँ दोस्तों, या लाइव न्यूज 24/7 पर आप बने हुए हैं चेतन के साथ और सुन रहे हैं पुराने हिंदी फिल्मों के सुनहरे दौर के गीतों का कार्यक्रम गीत सुनहरे गोल्डन एरा फिल्म संगीत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और गीत फिल्म कोहिनूर से, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में। गीत रचना है शकील बदायूनी की और संगीत दिया है नौशाद ने।

और एक कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में आइए सुनते हैं किशोर कुमार और साथियों को। फिल्म का नाम है तीन देवियां। बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, और 1965 प्रदर्शित ये फिल्म रही है। गीत रचना है मजरूह सुल्तानपुरी साहब की और संगीत दिया है SD बर्मन जी ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

0: जी हाँ दोस्तों, इसी गीत के साथ ये आज का पुराने हिंदी फिल्मों के सुनहरे दौर के गीतों का कार्यक्रम गोल्डन एरा फिल्म संगीत सुनहरे गीत अब यहीं संपन्न होता है। ये AIR लाइव न्यू 24x7 चैनल है। मध्यरात्रि के 2 बजने को हैं। कुछ ही पलों में अब आप पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैप्टन स्मिथ मच्छर से फोन पर बात की। श्री मोदी ने इसराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वे लोग नहीं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। श्री मोदी ने कैप्टन मच्छर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने पलक झपकते ही जो फैसला किया उससे सैकड़ों यात्रियों की जान बच सकी।
2: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
1: बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, जिनमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अस्पताल से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में कैप्टन मच्छर ने कहा कि 17 वर्ष के फ्लाइंग अनुभव ने उन्हें हालात की गंभीरता को समझने और तुरंत कार्रवाई करने में मदद की। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वे देश से दूर हैं, लेकिन देश की संस्कृति से नहीं। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छर के इलाज का इंतजाम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकार

0: कारों का आभार प्रकट किया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर यह बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। कृतज्ञ राष्ट्र ने कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भी भक्ति गीत गाये। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि निस्वार्थ सेवा भारत की संस्कृति और सभ्यतागत मूल्यों का मूल आधार है। नई दिल्ली में आयोजित 11वें संत ईश्वर सम्मान समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश के महान संतों और विचारकों ने लोगों को स्वार्थ की संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठकर दूसरों के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने की प्रेरणा दी है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने 3 ऑपरेशन में बारीकी से नक्काशी की गई हाथी दांत की 4 चीजें, 1 तेंदुए की खाल, 2 जिंदा पेंगोलिन, 3 किलो बाघ की हड्डियां और बाघ के 2 केनाइन दांत जब्त किए हैं। इन 3 ऑपरेशन में 11 लोगों को पकड़ा गया है। जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारत का स्वर्णिम अभियान जारी है। कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण के साथ मुक्केबाजी में 3 स्वर्ण पदक भी शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियेन चिन चेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना गोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ 5वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माही में 5 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi yesterday spoke with Captain Smith Machar over the phone, praising his bravery and presence of mind in foiling an alleged attempt to crash an Israel-bound Fly Dubai flight. The Prime Minister said, Indians are not those who take lives, but those who are willing to risk their own lives to save others. He lauded Captain Machar for taking a split-second decision that helped save the lives of hundreds of passengers.
2: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने, यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं हैं, जान बचाने वाले लोग हैं। और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ। मैं अब आपसे सुनना चाहूंगा।
3: मेरे लिए, मैं सर से भी बोल रहा था, आप मेरे सबसे बड़े आइडल से और मेरे को इनसे कॉल करके मेरी ऑफिस में मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है।
1: On Wednesday, Captain Machar got seriously injured after being stabbed by his co-pilot in the cockpit of Fly Dubai flight traveling.

जी आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइन न्यूज 24/7 चैनल है। समय हुआ है 2:10 और 13 सेकंड। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं गीत बिहार फिल्म म्यूजिक नॉन स्टॉप। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म का नाम है सूरज, गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी। तो अब से लेकर सुबह 3 बजे तक आप लगातार नॉन स्टॉप फिल्म संगीत सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम नॉन स्टॉप फिल्म संगीत, फिल्मी गीतों का कार्यक्रम।

0: और इसी गीत के साथ आज का नॉनस्टॉप फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। 3 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैप्टन स्मिथ मच्छर से फोन पर बात की। श्री मोदी ने इसराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वे लोग नहीं है जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। श्री मोदी ने कैप्टन मच्छर की प्रशंसा करते हुए उन्होंने पलक झपकते ही जो फैसला लिया उससे सैकड़ों यात्रियों की जान बच गई।
2: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
1: बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, जिसमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अस्पताल से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में कैप्टन मच्छर ने कहा कि 17 वर्ष के फ्लाइंग अनुभव ने उन्हें हालात की गंभीरता को समझने और तुरंत कार्रवाई करने में मदद की। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वे देश से दूर हैं, लेकिन देश की संस्कृति से नहीं। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छर के इलाज का इंतजाम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार प्रकट किया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर यह बात की। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि निस्वार्थ सेवा भारत की संस्कृति और सभ्यतागत मूल्यों का मूल आधार है।

0: नई दिल्ली में आयोजित 11वें संत ईश्वर सम्मान समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश के महान संतों और विचारकों ने लोगों को स्वार्थ की संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठकर दूसरों के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने की प्रेरणा दी है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के जरिए चल रहे तस्करी के एक रैकेट का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने लगभग 12 करोड़ 64 लाख रुपए कीमत का 8 किलोग्राम से ज्यादा 24 कैरेट विदेशी सोना और लगभग 1 करोड़ 9 लाख रुपए कीमत के 1168 कैरेट से ज्यादा हीरे जब्त किए हैं। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एयरपोर्ट का एक कर्मचारी, 6 ट्रांजिट यात्री और विदेश जाने वाला एक भारतीय यात्री शामिल है। जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारत का स्वर्णिम अभियान जारी है। कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण के साथ मुक्केबाजी में 3 स्वर्ण पदक भी शामिल है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाज के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियन चिनचेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण अफ्रीका को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माही में 5 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। आज लक्षद्वीप, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi yesterday spoke with Captain Smit Machar over the phone, praising his bravery and presence of mind in foiling an alleged attempt to crash an Israel-bound Fly-Dubai flight. The Prime Minister said, Indians are not those who take lives, but those who are willing to risk their own lives to save others. He lauded Captain Machar for taking a split-second decision that helped save the lives of hundreds of passengers.
2: Aapki himmat ne, aapke dhairya ne, और आपकी सूझबूझ ने यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं है, जान बचाने वाले लोग हैं। और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ। मैं आपसे सुनना चाहूंगा,
3: मेरे लिए, मैं सर से भी बोल रहा था, आप मेरे सबसे बड़े आइडल से और मेरे को इनसे कॉल करके मेरी ऑफिसाई कर रहे, मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है।
1: On Wednesday, Captain Machar got seriously injured after being stabbed by his co-pilot in the cockpit of Fly Dubai flight travelling from Dubai to Tel Aviv. The flight was carrying 174 passengers, including 27 children. The pilot is currently undergoing treatment at a hospital in UAE. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has called for a WTO-compliant approach to correcting global trade distortions at the concluding day of G20 Trade Ministers' meeting in Milwaukee, US. Speaking on structural excess capacity and production, Mr. Goyal said that India is the fastest-growing large economy in the world, with a domestic demand-driven economy serving 1.4 billion people. He highlighted that India is building manufacturing value chains from design to finished goods

आज के इस कार्यक्रम में हम आपको श्री कृष्ण भक्ति रचनाएं सुनवा रहे हैं। पहले प्रस्तुत है त्यागराजा की एक तेलुगु रचना, सुनिए सहगान रूप में।

अब हम आपको श्री स्वाति तिरुनाल की एक भक्ति रचना सुनवा रहे हैं, जिसे स्वर दिया है महाराजापुरम संतानम में।

नाद ब्रह्म कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने उषा विजय कुमार द्वारा बजाए गोटू वाद्यम पर राग चारुकेशी सुना। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 3 अक्टूबर 2026। सुबह के 4:54 और 2 सेकेंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए अब आपको आगे प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। पांच बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। आज इस कार्यक्रम में आप जानेंगे उष्ट्रासन और योग से संतुलित जीवन किस तरह से हो सकता है उसके बारे में। 5:20 पर आप देशभक्ति गीत का आनंद उठा सकते हैं।

5:30 का वक्त होगा कार्यक्रम स्वर रंजनी का, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे विपुल छाबरा द्वारा गाया राग भैरव। 6:00 का वक्त होगा हिंदी में समाचार का, जबकि 6:05 पर आप सुन सकते हैं अंग्रेजी में समाचार। छह बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदना, जबकि 6:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चिंतन। इसके अलावा 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रामचरित मानस।

0: सुबह के 5 बजने को है, ये सुनते हैं समाचार।
1: कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैप्टन स्मिथ से फोन पर बात की। श्री मोदी ने इसराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन स्मिथ मच्छार की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वो लोग नहीं हैं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार रहते हैं। श्री मोदी ने कैप्टन मच्छार की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने पलक झपकते ही जो फैसला लिया उससे सैकड़ों यात्रियों की जान बच सकी।
2: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
1: बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, जिनमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छार के उपचार का प्रबंध करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार व्यक्त किया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवाकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। पंजाब में सीमा सुरक्षा बल BSF ने तरनतारण क्षेत्र में 2 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। आकाशवाणी संवाददाता ने बताया कि पाकिस्तानी घुसपैठियों ने अवैध रूप से सीमा पार की थी। तैनात सुरक्षाकर्मियों के चेतावनी दिए जाने के बावजूद वो आगे बढ़ते रहे, इसलिए BSF को गोलीबारी करनी पड़ी। भारतीय नौसेना का जहाज INS त्रिशूल 30 सितम्बर को स्पेन के वालेंसिया बंदरगाह पहुंचा। यह भूमध्य सागर, अटलांटिक और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में उसकी तैनाती का हिस्सा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान INS त्रिशूल स्पेन की नौसेना के साथ क्रॉस डेक भ्रमण, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को बाल देखभाल अवकाश संबंधी सिफारिशें सौंप दी हैं। इनमें बाल देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद रहित बनाना, अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश और 2030 तक 5 लाख शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना है। आयोग ने ये सिफारिशें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय को सौंपी हैं। आयोग ने अनौपचारिक गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी मातृत्व और बाल देखभाल लाभ प्रदान करने की सिफारिश की है। आयोग ने पाया कि 90% से अधिक महिला श्रमिक प्रभावी कवरेज से बाहर हैं।

0: खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के अध्यक्ष मनोज गोयल ने बताया कि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। इस दौरान खादी उत्पादों पर 20% और ग्रामोद्योग उत्पादों पर 10% तक की छूट मिलेगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी है कि दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार खोल दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी अब उपलब्ध है। जापान में एशियाई खेलों में भारत का स्वर्णिम अभियान जारी है। कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण के साथ मुक्केबाजी में 3 स्वर्ण पदक भी शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक सहित 76 पदकों के साथ 5वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi yesterday spoke with Captain Smit Machar over the phone, praising his bravery and presence of mind in foiling an alleged attempt to crash an Israel-bound fly-Dubai flight. The Prime Minister said, Indians are not those who take lives, but those who are willing to risk their own lives to save others. He lauded Captain Machar for taking a split-second decision that helped save the lives of hundreds of passengers.
2: Aapki himmat ne, aapke dhairya ne, aur aapki sujbujh ne, and a fraction of second mein itne nirnay kar liye aapne, aur itne logon ki jaan bachayi. Aur aaj pura desh garv se keh sakta hai ki hum Hindustani jaan lene wale log nahi hain. जान बचाने वाले दो और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता। मित्र, अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
3: मेरे लिए बोल रहा था, आप मेरे सबसे बड़े एक्टर से और मेरे को इनसे कॉल करके मेरी फ्रेंड कर रहे हैं, मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है।
1: On Wednesday, Captain Machar got seriously injured after being stabbed by his co-pilot in the cockpit of Fly Dubai flight travelling from Dubai to Tel Aviv. The flight was carrying 174 passengers, including 27 children. The pilot is currently undergoing treatment at a hospital in the UAE. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has called for WTO-compliant approach to correcting global trade distortions at the concluding day of G20 Trade Ministers' meeting in Milwaukee, US. Speaking on structural excess capacity and production, Mr. Goyal said that India is the fastest growing large economy in the world, with a domestic demand-driven economy serving 1.4 billion people. He highlighted that India is building manufacturing value chains from design to finished goods as a trusted link in global supply chains. He said India's manufacturing capacity serves its domestic and global needs, and India does not have structural excess capacity in the sectors identified by the G20 presidency. Union Minister for Ports, Shipping and Waterways, Sarbanand Sonowal, yesterday called on the Shipping Corporation of India to play a leading role in making India self-reliant and globally competitive in shipbuilding and maritime capacity. Addressing a ceremony to mark SCI's 65 years of operation, Mr. Sonowal highlighted SCI's role in safeguarding India's energy and trade security, particularly during the recent Strait of Hormuz crisis. In Punjab, Border Security Force BSF has neutralized 2 Pakistani intruders yesterday in Tarantaran sector. Quoting BSF sources, Akashwani correspondent reports that they illegally crossed over to the Indian side of the border. Despite giving warnings by the deployed security personnel to stop, they continued advancing, forcing BSF to open fire. Directorate of Revenue Intelligence, DRI, has seized 4 elephant ivory articles

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी शोखंत, आपकी योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे कि किस आसन को करने से आप अपनी दृष्टि दोष में लाभ पा सकते हैं। इसके लिए आज हम करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन जिसका नाम है ऊष्ट्रासन। ऊष्ट्र का अर्थ होता है ऊंट। तो आइए सीखते हैं कि किस प्रकार ऊष्ट्रासन किया जाता है। घुटनों को जमीन पर टिकाते हुए अपने दोनों पैरों की जांघ और पंजों को आपस में मिला लीजिए। पंजों को बाहर की तरफ रखते हुए जमीन पर फैला दें। घुटनों और पंजों के बीच 1 फुट की दूरी रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकने का प्रयास। इस बात का ध्यान रहे कि पीछे झुकते समय गर्दन में किसी भी प्रकार का कोई झटका ना लगे। पीछे की ओर झुकें और धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाएं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें। अंतिम स्थिति में जांघ को जमीन पर लंबवत रखते हुए सिर को हल्का सा पीछे की ओर खींचकर रखें। अगर संभव हो तो पूरे शरीर का भार अपनी भुजाओं और पैरों पर टिकाए रखें। यह हमारी ऊष्ट्रासन की स्थिति होती है। बहुत लोगों में देखा गया है कि वह ऊष्ट्रासन नहीं कर पाते, तो इसके लिए आप अर्ध ऊष्ट्रासन का भी प्रयास कर सकते हैं। अर्ध ऊष्ट्रासन के लिए आपको कुछ नहीं, बस अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर टिकाएं और धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन और वक्षस्थल के भाग को पीछे की ओर ले जाएं और उस स्थिति में कुछ क्षण रुके और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ही आगे सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। तो यह अर्ध ऊष्ट्रासन की अभ्यास विधि है। ऊष्ट्रासन दृष्टि दोष में अत्यंत लाभदायक होता है, पर इसके लिए आपको ऊष्ट्रासन का अभ्यास प्रतिदिन करना जरूरी है और एक दिन एक सेशन में आप ऊष्ट्रासन का अभ्यास 3 से 4 बार अवश्य दोहराएं। ऊष्ट्रासन करने के बाद आप विश्राम स्थिति में वापस आ जाएं और कुछ क्षण वहीं रुकें। विश्राम स्थिति या तो आप वज्रासन में बैठ सकते हैं या आप दंडासन में भी विश्राम कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि किस प्रकार आप प्रतिदिन ऊष्ट्रासन करने के अभ्यास से अपने दृष्टि दोष को कैसे दूर कर सकते हैं और अपनी आई साइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।

किसी भी पोजीशन में और किसी भी काम को 20 मिनट से ज्यादा की अवधि में ना करें, 30 सेकंड का ब्रेक लेकर के आंखों को रिलैक्स किया, अपनी सांस को थोड़ी देर देख लिया, यानी थोड़ा आपे में आ जाना है, क्योंकि जो आपे में नहीं है फिर वो स्यापे में रहता है। तो हमें स्यापे में नहीं रहना हमें आपे में जीवन जीना है। और हमारे गुरुदेव कहते हैं लैप जो है ना वो बच्चे को रखने के लिए होती है, टॉप को रखने के लिए नहीं होती है ना। तो एक तो इसे लैपटॉप को लैप में नहीं रखना, पहली चीज। अभी तो बहुत अच्छी अच्छी बेड टेबल्स भी आ जाती हैं, उनको रख के, यानी जब आप गोद में लैपटॉप को रखते हैं तो ये आपके जितने भी प्रजनन अंग हैं उनको इफेक्ट करता है एडवर्स रूप में। तो गोद में या जेब में मोबाइल फोन रखना, इससे बचें। और सर्वाइकल, जहाँ हम सर्वाइकल की बात करते हैं, चाहे वो सर्वाइकल स्पैज्म हो जाता है कुछ लोगों को, कुछ को स्पॉन्डिलाइटिस है या सर्वाइकल पेन है, तो ऐसी में बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि विजुअली तो हम नहीं दिखा सकते यहाँ रेडियो के माध्यम से, बस ये समझ लें कि हमें कॉन्शियसली अपने पॉस्चर को सही रखना है। और